मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख महीने की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई 2026 है। प्रातः के लगभग 5:57 होने को हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी

0: अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वतंत्र कुमार ओझा की आवाज़ में देशगान के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कृष्णा भजन नितिन मुकेश की आवाज में। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में कृष्णा भजन।

प्रातः के 6:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है मन ही बंधन और मुक्ति। संकलन एवं वाचन स्वर हैं अक्षय के।

जीवन को यदि थोड़ा ठहर कर और ध्यान से देखा जाए तो एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है कि हमारी अधिकांश समस्याएं बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से उत्पन्न होती हैं। परिस्थितियां अक्सर वैसी ही रहती हैं पर उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता रहता है। यही दृष्टिकोण कभी जीवन को कठिन बना देता है और कभी उसी जीवन को सहज बना देता है। इसलिए कहा गया है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। दैनिक जीवन में कई बार ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अशांत रहता है। कोई विशेष कारण नहीं होता, फिर भी भीतर एक अनकही बेचैनी बनी रहती है। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि मन के भीतर चलने वाली विचारों की निरंतर धारा होती है। कभी बीते हुए समय की स्मृतियां मन को घेर लेती हैं तो कभी भविष्य की अनिश्चितताएं चिंता का कारण बन जाती हैं। इसके साथ ही दूसरों से तुलना करने की आदत भी मन को असंतोष की ओर ले जाती है। यही विचार धीरे धीरे एक जाल का रूप ले लेते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं ही उलझता चला जाता है। मन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी चंचलता है। यह एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। यदि एक समस्या समाप्त होती है तो मन तुरंत दूसरी समस्या खोज लेता है। इस कारण व्यक्ति को कभी पूर्ण संतोष का अनुभव नहीं हो पाता। हमें हमेशा यह लगता है कि कुछ न कुछ अधूरा छूट गया है और कुछ प्राप्त करना आवश्यक है। यही अधूरापन और निरंतर चाह ही बंधन का कारण बन जाती है। बंधनों का यह स्वरूप बहुत सूक्ष्म होता है। यह किसी भौतिक वस्तु की तरह दिखाई नहीं देता पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जैसे किसी व्यक्ति की कही हुई बात को बार बार मन में दोहराना, किसी घटना को भूल ना पाना या किसी अपेक्षा के टूटने पर लंबे समय तक दुखी रहना, ये सभी मन के बंधन हैं। व्यक्ति बाहर से स्वतंत्र दिखाई देता है परंतु भीतर से वह इन विचारों और भावनाओं से बंधा हुआ होता है। इसी

0: सत्य को इस सरल श्लोक में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, मन एव मनुष्याणा कारणा बंध मोक्षयो, अर्थात मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। यह श्लोक इस विचार को अत्यंत स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है कि जीवन की वास्तविक स्थिति मन की अवस्था पर निर्भर करती है, परंतु यही मन जब समझा जाने लगता है तो वही मुक्ति का माध्यम भी बन जाता है। जब व्यक्ति यह देखना आरंभ करता है कि हर विचार आवश्यक नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती, तब उसके भीतर एक दूरी बनने लगती है। वह अपने विचारों को केवल देखना सीखता है, उनसे चिपकना नहीं। यही समझ धीरे धीरे उसे भीतर से हल्का करने लगती है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या शेष न रहे। समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, परंतु जब मन उन समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, तब एक प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं पर आकाश उनसे बंधा नहीं होता, वैसे ही यदि मन विचारों और भावनाओं को आने जाने दे तो वह उनसे बंधता नहीं है। मन की दिशा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि ध्यान निरंतर कमी, असफलता या नकारात्मकता पर केंद्रित रहे तो वही अनुभव प्रबल हो जाता है, और यदि ध्यान स्वीकार, संतुलन और वर्तमान के क्षणों पर टिके तो जीवन में सहजता आने लगती है। यह परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का गायन भाग 57। गायन स्वर है सुरेश वाडेकर के। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानी हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपत्ति की आंखें जैसे आघातीन ना थीं। दंपत्ति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मन चाह वरदान प्राप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात।
1: किसान भाइयों और बहनों, आज की खेती की एक बहुत बड़ी समस्या है कीट और रोग, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है हमारे समाधान का तरीका। आज हम कीट का जवाब रासायनिक दवा से लेने लगे हैं, पर क्या आपने कभी गौर किया है, हर साल दवा की मात्रा बढ़ रही है, लागत लगातार बढ़ रही है और फिर भी कीट खत्म नहीं हो रहे। इसका मतलब साफ है, हम समस्या को नहीं सिर्फ लक्षण को दबा रहे हैं। अब समय है खेती को प्राकृतिक संतुलन की ओर ले जाने का। इसलिए कीट दुश्मन नहीं है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें एक सोच बदलनी होगी। हर कीट नुकसानदेह नहीं होता, कुछ कीट फायदेमंद भी होते हैं जो दूसरे कीटों को खाते हैं। अगर हम हर कीट को खत्म कर देंगे तो प्राकृतिक संतुलन टूट जाएगा और समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए कीट नियंत्रण, ना कि पूर्ण नाश। प्रमुख जैविक उपाय कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि नीम आधारित समाधान, जिसे प्राकृतिक रक्षा कवच कह सकते हैं। नीम को यूं ही प्राकृतिक कीटनाशक नहीं कहा जाता, यह कीटों के अंडे देने की क्षमता को कम करता है, खाने की प्रक्रिया को बाधित करता है और उनके जीवन चक्र को तोड़ देता है। इसके उपयोग का तरीका बड़ा आसान है। 5 मिलीलीटर नीम तेल, उसमें 1 लीटर पानी मिलाइए, हल्का साबुन मिलाकर छिड़काव करें। हर 7 से 10 दिन में एक छिड़काव बहुत प्रभावकारी होता है। दूसरा उपाय है लहसुन, मिर्च, अदरक घोल। यह तीखा सुरक्षा तंत्र कहलाएगा। यह घोल कीटों के लिए बहुत तीव्र होता है, लेकिन फसल के लिए सुरक्षित रहता है। इसकी तैयारी की जा सकती है। लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को एक साथ मिलाकर पीसें, पानी में मिलाकर 24 घंटे रखें, छान कर छिड़काव करें। यह रस चूसने वाले कीटों पर असर करता है। तीसरा उपाय है छाछ यानी मठा और गौमूत्र। छाछ फफूंद रोगों को रोकता है, गौमूत्र पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए 1 लीटर छाछ में 10 लीटर पानी मिलाइए या 1 लीटर गौमूत्र में 10 लीटर पानी मिलाइए। नियमित छिड़काव से पौधे मजबूत होते हैं और रोग कम लगते हैं। जैविक घोल जीवामृत या दशपर्णी अर्क से

भी हम समाधान कर सकते हैं। ये सिर्फ कीटनाशक नहीं बल्कि मिट्टी और पौधे दोनों को मजबूत करने वाले घोल हैं। दशपर्णी अर्क बनाने के लिए 10 पत्तियों से बना हुआ अर्क बनाया जाता है। जीवामृत गौमूत्र गोबर गुड़ बेसन से तैयार किया जाता है। ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे कीटों का असर अपने आप कम हो जाता है। पांचवी तकनीक है ट्रैप तकनीक, यानी कीटों को फंसाने से। इसमें जो तकनीक उपयोग में लाई जाती है, पहला है पीले स्टिकी ट्रैप, सफ़ेद मक्खी माहू को पकड़ते हैं। दूसरा उपाय है फेरोमोन ट्रैप, नर कीटों को आकर्षित कर प्रजनन रोकते हैं। इससे कीटों की संख्या शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित हो जाती है। छठवां उपाय है मिश्रित खेती और सह फसल। एक ही फसल एक ही तरह का कीट का हमला, ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर हम मक्का और दाल या कपास और मूंग जैसे

0: आकर्षित कर प्रजनन रोकते हैं। इससे कीटों की संख्या शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित हो जाती है। छठवां उपाय है मिश्रित खेती और सह फसल। एक ही फसल एक ही तरह का कीट का हमला, ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर हम मक्का और दाल या कपास और मूंग जैसी मिश्रित खेती करते हैं तो कीट भ्रमित होते हैं और फैलाव कम होता है। इसके अलावा एक और उपाय है लाभदायक कीटों का संरक्षण। लेडी बर्ड बीटल, ट्राइकोग्रामा, ये कीट हानिकारक कीटों को खाते हैं। रासायनिक दवा इनको भी मार देती है, इसलिए जैविक खेती में इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। किसान भाइयों और बहनों, हर 2 से 3 दिन में खेत का निरीक्षण करें। अगर कीट शुरू में ही दिख जाएं, तो हल्के उपाय से नियंत्रण हो जाता है। देर होने पर ही महंगी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा नाइट्रोजन देने से कीट ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा पानी से भी रोग बढ़ते हैं, इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए आपको आज के शेष कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षणों से रूबरू करा दें।

हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 10 बजे वक्त होगा रागों पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम राग प्रधान का। हमारे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे दोपहर 1:40 एवं रात्रि के 9:30 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00। शाम 7:05 पर वक्त होगा सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। हमारे युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन सकेंगे शाम 5:00। दोपहर 2:30 पर वक्त होगा गैर फिल्मी गीतों व गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:10 पर। दोपहर 12:30 पर वक्त होगा शीर्षक गीतों के कार्यक्रम चयन का। श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री आप सुन सकेंगे प्रातः 11:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने आप सुन सकेंगे सुबह 10:00।

जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं डोमकेच गीत सादरी लोक गायक अमृत मिंज एवं साथियों की आवाज़ में।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम गूंजे जंगल में अब लीजिए सुनिए झूमर गीत, भोजपुरी लोक गायक हीराचंद पटेल एवं साथियों की आवाज में।
3: मई हर नगर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम गूंजे जंगल की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं खेमटा कर्मा गीत सरगुजिया लोकगायक निर्मल दास एवं साथियों की आवाज में।

सरगुजिया लोक गायक निर्मल दास एवं साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे खेमटा कर्मा गीत। कार्यक्रम गूंजे जंगल बस यहीं तक। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में ये गज़ल। शब्द रचना है वल्ली अस्सी के।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम सुगम संगीत में अब लीजिए सुनिए मेहंदी हसन की आवाज में ये गजल। शब्द रचना है तस्लीम फाजली के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं हसन कमाल की शब्द रचना के साथ पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल।

0: पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम सुगम संगीत बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी रितिका।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मंचली फिल्म का ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार एवं लीना चंद्रावरकर की। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।
5: क्या हुआ?
6: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
5: अच्छा जी,

कलेक्टर कार्यालय मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आयोजित चयन परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा 10 मई 2026 रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की रिपोर्टिंग प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे तक निर्धारित की गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी संबंधित वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में कम से कम एक घंटा पहले पहुँचना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज के 2 फोटो लाना अनिवार्य रहेगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परीक्षार्थियों को आधार कार्ड अथवा विद्यालय परिचय पत्र जैसे फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं फिल्म जबरदस्त का ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

0: आज फोन नहीं लगेगा।
1: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इनका प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
2: पर आरती, रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
1: रेडियो एकदम सही सेट है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
0: अच्छा, और फोन नंबर क्या है?
1: नंबर है 231-917 और 231-918। कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना? gharangan@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन। मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: मनेंद्रगढ़ विकास खंड के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने एक सराहनीय पहल की है। अब ऐसे गांव जो अपने निकटतम उप स्वास्थ्य केंद्र से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित हैं, वहां नियमित रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभाग की इस योजना के तहत प्रत्येक गुरुवार को चिन्हित गाँव में स्वास्थ्य सेवाएँ सीधे ग्रामीणों तक पहुँचाई जा रही हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है जो दूरी, परिवहन की कमी या अन्य कारणों से समय पर प्राथमिक उपचार नहीं प्राप्त कर पाते। विशेष रूप से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। शिविर की प्रमुख विशेषताएं, इन स्वास्थ्य शिविरों में ग्रामीणों को कई तरह की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सामान्य एवं मौसमी बीमारियों की जांच अनुभवी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जाती है, साथ ही मरीजों को आवश्यक परामर्श भी दिया जाता है। जांच के बाद जरूरतमंद मरीजों को दवाइयाँ भी पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं अब गांव के द्वारा इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्र तक आने की मजबूरी को कम करते हुए सेवाओं को सीधे उनके गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी बल्कि अधिक से अधिक लोग समय पर उपचार भी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे के अनुसार इन शिविरों के माध्यम से केवल उपचार ही नहीं बल्कि संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह नवाचार फिलहाल मनेंद्रगढ़ विकास खंड में प्रारंभ किया गया है, जिसे भविष्य में पूरे जिले में विस्तार देने की योजना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं छोटी सी बात फिल्म का ये गीत। आवाज़ है यशुदास एवं आशा भोसले की, संगीत निर्देशन है सलील चौधरी का और गीतकार हैं योगेश।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी, मुझे तो फोन पर बात कर...

जिले में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 2026 का आयोजन खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य एवं मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेल विधाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, जिसमें कबड्डी, फुटबॉल, कराटे, क्रिकेट, बैडमिंटन खेल शामिल हैं। फुटबॉल क्रिकेट का प्रशिक्षण आत्मानंद विद्यालय मनेंद्रगढ़, कबड्डी का प्रशिक्षण खेलो इंडिया लघु केंद्र बंजी, बैडमिंटन का प्रशिक्षण बैडमिंटन हॉल नई लेदरी तथा कराटे का प्रशिक्षण वार्ड क्रमांक 9 पेंड्रा दफाई मनेंद्रगढ़ में किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 14 मई 2026 से 3 जून 2026 तक प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक किया जाएगा। शिविर में भाग लेने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीयन तथा पालक सहमति अनिवार्य है। ऑफलाइन पंजीयन फॉर्म कार्यालय जिला खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण तथा जिले के समस्त विकास खंडों के विकास खंड नोडल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण जिला MCB से प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश हेतु आयु सीमा सब जूनियर, जूनियर वर्ग की बालक बालिकाओं को शामिल किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला प्रशासन एवं खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गोलमाल से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है RD बर्मन का और गीतकार हैं गुलजार।

जिले के सुदूर एवं पहाड़ी कोरवा वसाहतों में पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब इन क्षेत्रों में कुल 113 हैंडपंप एवं बोरवेल की खुदाई की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को पारंपरिक स्रोतों से पानी लाने की मजबूरी से राहत मिलेगी। विगत दिनों मुख्यमंत्री ने सरगुजा जिले में पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को तत्काल प्रभावी कार्रवाई की निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि शासन की योजनाओं, खासकर बुनियादी जरूरतों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में सरगुजा कलेक्टर एवं जिला खनिज संस्थान न्यास अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद तत्काल कार्यवाही करते हुए संबंधित विभागों को एक माह के भीतर सभी 113 हैंडपंप एवं बोरवेल कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि स्थलीय सर्वे पहले ही कर लिया गया है। जिले के लुंड्रा में 34, बतौली में 6, लखनपुर में 22, अंबिकापुर में 11, सीतापुर में 16, मेनपाट में 20 तथा उदयपुर में 4, इस तरह इन विकासखंडों में DMF मद से 113 हैंडपंप एवं बोरवेल खनन

की जाएगी। 24 अप्रैल को आयोजित जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक में पर्यटन मंत्री लुंड्रा विधायक सहित अन्य सदस्यों की सहमति से इस कार्य को स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 8 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज़, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा

0: विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर एम जे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: अपने क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का

0: विश्व भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
1: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टुगेदर।
2: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
3: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान

0: श्रोताओ नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, चूंकि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, यहाँ की प्रमुख बोली छत्तीसगढ़ी है और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं।
1: श्रोताओ, हमारा छत्तीसगढ़ यूं तो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ कई तरह की बोली और भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ की प्रमुख बोली छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2007 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा को सरकारी कामकाज के रूप में मान्यता दी गई है। छत्तीसगढ़ी का प्राचीन व्याकरण एवं समृद्ध साहित्य है। छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार, शोध और अनुवाद का लक्ष्य सुनिश्चित कर 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया।
0: इसी कार्य से जुड़े हुए हमारे साथ आज इनसे मिले कार्यक्रम में उपस्थित है प्रभात मिश्रा जी, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं, और इनसे आज हम जानेंगे इनके बारे में और जानेंगे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में। साथ ही छत्तीसगढ़ में इनके कई और भी कार्य हैं, तो इनसे आज हम जानेंगे इस बारे में। प्रभात जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद रमाशंकर जी, स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
2: ऐसे है, पहले सभी श्रोता साथी मंडला में जोहार करता हूँ और आकाशवाणी रायपुर के भी मैं हृदय ले आभार प्रकट करता हूँ, और साथ ही साथ जो आज विषय पे हमार मन के गोड बात होने हैं वहाँ विशेष रूप से जो चीज ला आप अभी पूछे हो मोर से, तो का है कि छुरिया राजनांदगांव मोर जन्म है और वहाँ के संस्कारधानी में जो हमन संस्कार पाए हैं ओला पा के हमन हाँ अपन ये आज के ये जो हमारे दायित्व है जो आयोग के मिले है, तो वो ओला आगे और ओकर जो उद्देश्य है ओला हमन आगे बढ़ात हन, और साथ ही साथ हमार मन के जो प्राथमिक शिक्षा है सब हमार रायपुर में हो है, और ओकर आगू के जो शिक्षा है महाविद्यालय शिक्षा वो दुर्गा महाविद्यालय से हो है, और जो मैं परा स्नातक जो करे हूँ वो है रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला रायपुर से करे हूँ। तो ये मेरा एक संक्षिप्त जो शैक्षणिक जो परिचय है वो इस प्रकार से है कि हम चूंकि अपने छत्तीसगढ़ महतारी के जो कर अमन हाँ ओकर द्वारा जो प्रदत्त हमारे जो संस्कार है ना ओकर छाँव में जो हमन पले बढ़े हैं, तो वही भाखाला हमन हाँ यहाँ विस्तार दे के प्रयास करत हन पूरा प्रदेश में। तो इस विषय को

0: करके बस इतना ही यहाँ पे अपने श्रोता साथियों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो राजभाषा जो हमारी जो छत्तीसगढ़ी है ये विधानसभा में एक अधिनियम पारित हुआ था, उसको उसका भी उल्लेख मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। और वो है 2007 में वो पारित हुआ था, और वो जो अधिनियम है वो छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 के सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ी को हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, और विधानसभा में पारित होने के फलस्वरूप यह जो है राजभाषा के रूप में और राजभाषा के स्वरूप के साथ आज पर्यंत तक और आगे भी इस पे हम लोग काम करते आ रहे हैं और काम करते रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए राजकीय जो प्रयोजन होते हैं उसके लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी के अतिरिक्त इसे अंगीकृत करने के लिए उपबंध किया गया है। तो मतलब आयोग जो है उनका जो मुख्य उद्देश्य है वही कि हमारी जो भाषाई जो समृद्धि है, भाषाई जो हमारी विरासत है उसको समृद्ध करना, संरक्षण देना और संवर्धन देना, जिसमें सरगुजा से लेकर के हमारा जो नीचे जो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, आदिम बोलियां जो हैं, उनका संरक्षण संवर्धन हमारा आयोग का मुख्य हेतु है।
1: छत्तीसगढ़ी भाषा को संरक्षित और संगठित करने में आपका क्या योगदान रहेगा?
0: देखिए, इसमें हमारी आयोग की जो महती भूमिका है वो जिसमें भाषाई जो विरासत है उसका दस्तावेजीकरण करना, उसको समृद्ध करना, और प्रकाशन की जो स्थिति है उसको यहाँ हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो साहित्य जो समूह है उनके द्वारा लिखी जाने वाली छत्तीसगढ़ी में पुस्तकें जो हैं उसका प्रकाशन करना, ये आयोग का महती उद्देश्य है। और आयोग इस कार्य में सतत लगा हुआ है, प्रकाशन के द्वारा लेखकों को छत्तीसगढ़ी भाषा में वो जो लिख करके जो अपना साहित्य चाहते हैं कि वो जनमानस में वो जाए आयोग के माध्यम से, तो इसके लिए आयोग जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में ओकरमन के प्रकाशन करा थे साहित्य के, और ओला पाठक तक कैसे पहुँचाए, पढ़िया मन तक कैसे पहुँचाए, और हमारे जो अध्ययन करने वाला छात्र छात्रा मन हैं, और हमारे बहुत सारा हमारे आम जनता तक वह कैसे सर सुलभ हो गए, एक लिए भी हम यहाँ चिंता करा था। और आयोग है छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से लेखक बन के जो कृति है वह प्रकाशित करके वह सुलभ और उपलब्ध कराते, ये वहाँ आयोग है सतत लगे हुए है। साथ ही साथ जो एक जो बहुत मुख्य जो औ एक वो है कि राजकीय कार्य में कैसे हम और अच्छे से छत्तीसगढ़ी भाषा के हम कैसे उपयोग करें, ओकर लिए आयोग है समय समय पे शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालय में जो मन पदस्थ है अधिकारी मन है कर्मचारी मन है वो मन ला भी प्रशासनिक कार्य व्यवहार में छत्तीसगढ़ी के लिए जो प्रशिक्षण है वो है आयोग देते।
1: तो प्रभात जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, तो क्यों ना प्रभात जी हम कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम लें और आपकी पसंद का एक गीत सुने।
0: मेरी पसंद का एक गीत जो मुझे अभी याद आ रहा है और सर्वाधिक पसंदीदा गीतों में से एक है किशोर कुमार का, फिल्म नमकीन राह पे रहते हैं, वो हमारे श्रोता साथियों को आप सुनाइए।
1: जी जी, बहुत अच्छा गीत है। तो आइए श्रोताओं, प्रभात मिश्रा जी की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोता इनसे मिलिए कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम इनसे मिलिए कार्यक्रम में बात कर रहे हैं प्रभात मिश्रा जी से, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं और वेटलैंड संरक्षण से भी जुड़े हुए हैं। तो प्रभात जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ी को संरक्षण करने का जो एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो इसके साथ ही आप कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं। तो जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता में निष्पक्षता को आप कैसे देखते हैं?
1: पत्रकारिता में निष्पक्षता की जो बात आपने पूछा है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निष्पक्षता जो है पत्रकारिता की एक अनिवार्य शर्त है। हमको इस बात के लिए कृत संकल्पित रहना चाहिए कि पत्रकारिता का जो मुख्य उद्देश्य

0: उद्देश्य है वो पाठकों तक और उस विषय को यथा स्थिति स्वरूप में तथ्य के साथ उसे प्रस्तुत करना, और उसमें जो भी हमारा जो दृष्टिकोण है और उस विधा में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना चाहिए या ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब हम पत्रकारिता हम जब कर रहे हों और पत्रकारिता में जिस प्रकार की हम निष्पक्ष पत्रकारिता की जब हम बात कर रहे हों तो उस विषय के साथ और उस रिपोर्टिंग के साथ हमारा वो भाव दिखना चाहिए हमारी भाषा में, हमारी प्रस्तुति में, हमारे उसमें शब्दों में कि वह विषय वस्तु के साथ न्याय करते हुए वो दिखाई दे। न्याय के जिम्मेदारी तो खैर हम एक तरह से समझ लीजिए कि हम अपनी जनता जनादन पे छोड़ते हैं, क्योंकि वो पाठक वो तय करेगा, लेकिन एक पत्रकार को ये हम कहना चाहिए उसका वो दायित्व है कि वो विषयों को यथा स्थिति यथा स्वरूप में वैसा का ही वैसा प्रस्तुत करे। शेष जो है उसका निर्णय क्या होना है क्या नहीं होना है वो पाठक पर निर्भर करता है।
1: तो प्रभात जी, पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो इसके कई आयाम हो सकते हैं, तो आप इसे किस तरह देखते हैं कि पत्रकारिता के कौन कौन से प्रमुख आयाम हो सकते हैं?
0: देखिए, पत्रकारिता के जहाँ तक आयाम की हम बात करते हैं तो पत्रकारिता का एक बहुत ही व्यापक एक संसार है, और उस व्यापक संसार में पत्रकारिता की जो हम बात करते हैं तो वो मूल्यों की पत्रकारिता की हम बात करते हैं, जिसमें कहना चाहिए वैल्यू बेस्ड वैल्यू की हम बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, और हम एक तरह से पत्रकारिता को एक प्रकाश स्तंभ की तरह लेते हैं, एक मशाल की तरह लेते हैं कि जिसके प्रकाश में हम सब जो है एक जो हमारा समाज का जो हमारा एक आदर्श जो मार्ग है समाज को पुष्पित पल्लवित करने का, जिसमें समाज जीवन के सारे रंग सारे आयाम बहुत व्यवस्थित ढंग से हों, उसमें व्यवस्था बनी रहे, और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसमें यदि हम देखें तो पत्रकारिता जो है अपना एक अहम योगदान देते हुए दिखाई देती है, और पत्रकारिता ने ऐसा बहुत कुछ किया भी है कि आज समाज में समाज को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए एक अच्छी रचना करने के लिए इस हेतु समाज में जिस प्रकार की पत्रकारिता हमारे अभी हमारे समाज में हमारे देश में हमारे प्रदेश में हुई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहना चाहिए सार्थक लाभ जो है समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो व्यक्ति खड़ा है उस तक जो है पत्रकारिता का जो संदेश है मूल्याधारित पत्रकारिता की मैं बात कर रहा हूँ उसका संदेश जो है बहुत अच्छा गया है, और उन कार्यों की परिणति जो है समाज हित में भली भांति दिखाई देती है। क्योंकि हम यदि हम बात करते हैं अपने व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए तो कार्यपालिका है व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है, और उसी परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता को मतलब एक चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का।
1: जी जी जी जी प्रभात जी, तो प्रभात जी हम आप चलते हैं फिर से एक बार राजभाषा हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा की तरफ। तो पारंपरिक विविधताएं हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी हैं, तो इन विविधताओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा को स्थान दिलाना कितना आवश्यक है?
0: बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की बात करते हैं 2020 की तो उसमें भी इस बात का आग्रह किया गया है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले उनको भी जो है कहना चाहिए कि उनको उनकी मातृभाषा में उनको दिया जाए। तो इसका आशय क्या है कि मातृभाषा में जब बच्चा पढ़ेगा तो वो उन चीज़ों को अच्छे से समझेगा, और अच्छे से समझेगा तो उन चीज़ों को अच्छे से वो अभिव्यक्ति दे पाएगा, और अभिव्यक्ति देगा तो वो कहना चाहिए अपनी जो सांस्कृतिक जो समझ है अपने प्रदेश की जो सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी जो और भी जो हमारी पहचान है अपनी अस्मिता है उससे वो सीधे कनेक्ट हो पाएगा सीधे संबंधित हो पाएगा। तो हम ये मानते हैं कि जो भी हमारी जो मातृभाषा है उसमें उसको जो है उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है उसको मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। विशेषकर जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम ये देते हैं मातृभाषा में तो

0: अच्छा जो होता है वो बेहतर, वो आत्मविश्वास के साथ अपने स्वयं को समझता है और जिस शिक्षा को वो ग्रहण करने जा रहा है उसको भी अच्छे से समझ पाता है और संस्कृति से भी वो अच्छे से जुड़ पाता है।
1: तो प्रभात जी, जब हम बात करते हैं राजभाषा की, तो वो किसी प्रादेशिक स्थान होते ही उसकी जो प्रमुख होती है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रादेशिक भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। तो हम जब छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ अगर हम राजभाषा को महत्व देते हैं, इसमें कहीं हम हिंदी को ना खो दे, ऐसा आपको क्या लगता है?
0: नहीं, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी विषय कहीं कुछ भी नहीं है खोने का। देखिए, होता यह है कि हमारा जो भाषाई जो संसार है वो बहुत समृद्ध है और आप देखते भी होंगे कि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है भारत, वो बहुभाषीय कहना चाहिए राष्ट्र है। बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं और भाषाओं के साथ साथ बोलियां भी बहुत सारी यहाँ पे बोली जाती हैं। तो हमारे यहाँ भाषाओं का जो स्वरूप है और भाषाई जो रचनात्मक

0: और आप देखते भी होंगे कि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है भारत, वो बहुभाषी कहना चाहिए राष्ट्र है। बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं और भाषाओं के साथ साथ बोलियां भी बहुत सारी यहाँ पे बोली जाती हैं। तो हमारे यहाँ भाषाओं का जो स्वरूप है और भाषाई जो रचनात्मकता है वो समन्वयकारी है और समन्वय के साथ साथ समरसता लिए हुए है। इसका आशय इस ढंग से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि भाषाई जो संसार है वो अस्तित्व और सह अस्तित्व के आधार पर हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ समन्वय है भाषाओं को लेकर के, और इसी समन्वय के मार्ग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको हमको समझना होगा और इसको समझते हुए आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं, समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, और भाषाई जो समृद्धि है, जो हमारी भाषाई विरासत है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदी हो, हमारी अन्य जो भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है, इन सब में एक जैसे बड़ी बहन और छोटी बहन का एक परिवार जो होता है उस प्रकार का संबंध लिए हुए है, और जो कहना चाहिए परिवार में जो एक भाव होता है उस भाव के आधार पे ये हमारा जो भाषाई जो है आचार विचार जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं, निर्विवाद रूप से बढ़ रहा है और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ बढ़ रहा है, सांस्कृतिक चेतना के साथ बढ़ रहा है, एक समाधानकारी विषयों को लेकर बढ़ रहा है और काफी कहना चाहिए अस्तित्व और सह अस्तित्व का भाव लिए बढ़ रहा है।
1: अब हम आपसे जानना चाहेंगे वेटलैंड क्या है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है।
0: देखिए बाहर जो है भीषण गर्मी है, तपिश है और एक तरह से कहना चाहिए गर्म हवाओं के जो झोंके हैं, थपेड़े हैं, वो हम सबको ये एहसास करा रहे हैं कि गर्मी कितने चरम पे है और उसका सीधा प्रभाव हम जलचर, थलचर और नभचर जो हमारा जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, उस पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो हम जब बात कर रहे हैं वेटलैंड की, तो वेटलैंड का आशय जो है हिंदी में वो ये है कि हम उसे नम भूमि बोलते हैं, जलोद भूमि भी बोलते हैं, दलदली भूमि भी बोलते हैं, और किसी भी कहना चाहिए क्षेत्र में किसी भी पर्यावरणीय संतुलन के लिए वेटलैंड का जलोद भूमि, नम भूमि का होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जितने भी हमारे वेटलैंड हैं वो जब अपने प्राकृतिक स्वरूप में होते हैं तो उससे एक प्रकार की जैव विविधता बनी रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करते हैं, जो हमारा भूगर्भ जो जल का जो स्तर है उसको भी वो बना के रखते हैं, साथ ही साथ वो बाढ़ को भी रोकने का काम करते हैं जब बाढ़ आती है तो, और इसके अतिरिक्त हमारे वातावरण को वो इतना कहना चाहिए वो अच्छा बना के रखने का प्रयास करते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो परिशुद्ध भी करते हैं
1: जी जी।
0: तो वेटलैंड जो है एक साथ अपनी कई भूमिकाओं में हमारे आसपास के जनजीवन को सकारात्मक रूप से हमें प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप से हमें संजीवनी प्रदान करता है और साथ ही साथ हम लोगों को एक आजीविका भी उपलब्ध कराता है। तो वेटलैंड जो है उसकी जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत विस्तार लिए हुए है। ये अलग बात है कि हम वेटलैंड के महत्व को जितना जल्दी हम समझ जाएं उतना ज़्यादा हम मानवीय दृष्टिकोण से और मानव समाज के लिए हितकारी होगा। इस बात को और मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि एक वेटलैंड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है नेचुरल वेटलैंड और एक होता है मैन मेड वेटलैंड, यानी मानव निर्मित वेटलैंड और एक प्राकृतिक रूप से वेटलैंड होते हैं। तो मानव निर्मित वेटलैंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित वेटलैंड जो हैं वो तालाब होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं और बना करके हमारे पूर्वजों ने हमारे छत्तीसगढ़ में, ये बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में तालाबों की संस्कृति रही है। तालाब हमारे यहाँ आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि हमारे नगरों में तालाब जो हैं अपने उस वैभव के साथ हैं और उस वैभव का कहना चाहिए जब हमारे पूर्वजों ने इन तालाबों का निर्माण किया था तो उसका जो है आज भी हमें लाभ मिल रहा है। आज देखिए तालाब जहाँ जहाँ हैं वहाँ प्राकृतिक रूप से जो उसके जल स्रोत हैं वो बने हुए हैं और उन तालाबों को मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम यदि इतिहास में हम यदि जाएं

0: एक इकाई होती थी
1: जी।
0: तालाब बनाने वालों की और एक तालाब बनवाने वालों की
1: जी।
0: तो ये दो इकाइयां मिलकर के तालाब बनाती थी और बनवाती थी। कोई अपने माता पिता की स्मृति में भी बनाता था, कोई परोपकार के भाव से तालाब खुदवाता था, कहीं पे राजा जो है तालाब खुदवाते थे, कहीं पे रंक भी जो होते थे वो तालाब खुदवाते थे। और पुण्य का काम यदि कोई माना जाता था हमारे भारतीय संस्कृति में तो वो तालाब खुदवाना माना जाता था।
1: जी, जी।
0: उनको ये मालूम था कि ये जो वेटलैंड है ये न केवल हमको जीते जी हमको बचा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, अपितु आने वाली पीढ़ी को भी ये संरक्षित करेंगे, संवर्धित करेंगे और उनका जो जीवन है इससे कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन भी होगा।
1: प्रभात मिश्रा जी, कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि समाज, परिवार और प्रकृति, इन तीनों का जो समन्वय है जिसकी आधारशिला हमारे यहाँ प्रारंभ से ही रखी गई है हमारी संस्कृति में, और उस संस्कृति में इस बात का हमेशा से ध्यान रखा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये पूरी वसुंधरा और पूरे सभी लोगों को सुख और शांति देने का जो भाव हमारी भारतीय संस्कृति में निहित है, उसी भाव के अनुरूप हम अपने समाज को, अपने परिवार को और प्रकृति को जितना ज़्यादा हो सके संरक्षित करें, संवर्धित करें, ताकि ये वसुंधरा जो है बहुत अपनी उस स्वाभाविकता में, उसी स्वरूप में रहे जिस स्वरूप में वो हमें प्राप्त हुई है, जिस स्वरूप में हम उसमें जीवन जी रहे हैं, क्योंकि और कोई दूसरी वसुंधरा हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक ही वसुंधरा है, एक ही वसुधा है, एक ही पृथ्वी है। उसे यदि हम जितना हो सके हम बचा के रखें, संरक्षित करके रखें, तो हमारा मानव जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। श्रोता साथियों, मेरा आप सभी से ये अनुरोध रहेगा, जब हम गर्मी की तपिश को हम एक तरह से झेल रहे हैं और वो हमें बहुत ही प्रभावित कर रही है, आप जहाँ जहाँ पे वेटलैंड देखते हैं वहाँ वहाँ आप उन चीज़ों को लेकर के हमारे वेटलैंड को संरक्षित करें, उसको संवर्धित करें, क्योंकि यही वेटलैंड जो है हमको बचाएंगे, और क्योंकि यदि ये बचेंगे तब वो हमको बचाएंगे
1: जी।
0: तो वेटलैंड को आप जहाँ भी देखें उसको संरक्षित करें, और इसके लिए जो भी प्रयास हो, शासकीय स्तर पर हो चाहे वो नागरिक स्तर पर हो, आप अपनी तरफ से ऐसा प्रयास कीजिए कि वेटलैंड को कोई नष्ट ना करे, वेटलैंड को लोग एक ऐसा जो हमारे लिए वो जीवन दायिनी है, है ना, वो हमारे लिए जीवन प्रदाता है, वो हमको जीवन हमें देता है। तो आप जहाँ भी रहें वेटलैंड को बचाने के लिए सक्रिय रहें, अपने नज़दीक के किसी भी ऐसे अथॉरिटी के पास जाएं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे और कोई ऐसी व्यवस्था हो, वहाँ जा करके आप वेटलैंड को बचाने के सारे उपाय करें। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं आज जहाँ भी मैंने वेटलैंड पे मैंने काम किया है उसके लिए जो भी हमारे लोकतांत्रिक हमारे अधिकार हैं, साथ ही साथ हमारे जो कर्तव्य हैं, उसके अंतर्गत वेटलैंड को बचाने का जो हमने प्रयास, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। शासन स्तर पर भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, शासन के साथ साथ प्रशासन में भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप एक पहल करें, और उस पहल में आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि केवल हमारा उद्देश्य है वेटलैंड संरक्षित हो।
1: प्रभात जी, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्कार।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे रमा शंकर। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर हम आकर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में मैं रितिका आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज 8 मई है और आज पूरी दुनिया विश्व रेड क्रॉस दिवस मना रही है। ये दिन उन निस्वार्थ सेवकों को समर्पित है जो युद्ध, आपदा या किसी भी मुसीबत के समय जात पात और सरहदों से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत की सेवा करते हैं। रेडक्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का मानना था कि हर इंसान के भीतर मदद करने का एक जज्बा होता है। युद्ध हो या शांति, हर मरहम लगाने वाले हाथ का कोई मजहब नहीं होता, उसकी सिर्फ एक ही पहचान होती है, इंसानियत। दोस्तों, चाहे रक्तदान के जरिए किसी की जिंदगी बचाना हो या घायलों की सेवा करना हो, रेडक्रॉस के स्वयंसेवक हमेशा पहली पंक्ति में खड़े मिलते हैं। आज हम उन सभी हीरोज को सलाम करते हैं जो खामोशी से दुनिया को बेहतर बना रहे हैं, और आइए आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आप और हम भी ये संकल्प लें कि हम भी अपने स्तर पर हर किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ी कोई बंदगी नहीं। इंसानियत के इसी जज्बे के नाम आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म लक्ष्य से। आवाज़ है शंकर महादेवन, सोनू निगम और हरिहरन की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में लक्ष्य फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे और बातें चल रही थी इंसानियत की, जिंदगी की, निस्वार्थ भाव से किए किसी के लिए उठाए गए उस कदम की जो किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वैसे दोस्तों, बात जब इंसानियत और ज़िंदगी की होती है तो हमारा ये हिंदी सिनेमा भी इससे अछूता नहीं है। जैसे फिल्मों के गीतों की गुंजन हमारे मन पर गहरे छाप छोड़ती है, ठीक वैसे ही हमारी हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ फेमस डायलॉग्स और संवाद भी सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि ज़िंदगी जीने की वजह बन जाते हैं। इसीलिए आज गुंजन के इस अंक में मैं लेकर आई हूँ फिल्मों के उन मशहूर संवादों को, उन मशहूर डायलॉग्स को जिन्होंने हम सबको और हमारे जीवन को बड़ी गहराई से प्रभावित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सिनेमा के संवादों और तरानों का ये खूबसूरत सा सफ़र।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: संदेश के पहले आप सुन रहे थे रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गीत, आवाज थी सोनू निगम की, संगीत निर्देशन सलीम सुलेमान का और गीतकार थे जयदीप साहनी। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस गीत में सारे फिल्मों और गीतों के नाम शामिल थे। जी हाँ, फिल्मों के संवादों का सफ़र शुरू हो चुका है। बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में एक बार फिर से मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। और बातें चल रही थी हिंदी सिनेमा के कुछ मशहूर संवादों की, डायलॉग्स की, जिनकी छाप हमारे दिलो दिमाग और जीवन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म आनंद के फेमस डायलॉग की। डायलॉग था, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। कुछ याद आया दोस्तों? जी हाँ, साल 1971 में फिल्म आनंद में राजेश खन्ना जी के कहे ये शब्द आज भी उतने ही सच हैं और दशकों बाद साल 2016 में यही डायलॉग फिर से गूंजा जब फिल्म नीरजा में सोनम कपूर ने उस बहादुर बेटी नीरजा भनोट का किरदार निभाया, जहां आनंद के किरदार में राजेश खन्ना अपनी बीमारी से लड़ते हुए मुस्कुरा कर कह रहे थे कि दिन गिनने से बेहतर है हर पल को जी लिया जाए। वहीं नीरजा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सैकड़ों लोगों को बचाकर आनंद फिल्म के इस डायलॉग को सच कर दिखाया। नीरजा भनोट असल में इस फलसफे की जीती जागती मिसाल बनी कि उम्र चाहे छोटी हो लेकिन आपके कर्म उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि दुनिया आपको युगों युगों तक याद रखती है। फिर मंजिल मौत ही क्यों ना हो, पर सफ़र शानदार होना चाहिए, यादगार होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नीरजा से। आवाज़ है कविता सेठ की, संगीत निर्देशन है विशाल खुराना का और गीतकार हैं प्रसून जोशी।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 और FM 100.2 MHz पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918, कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना, gharanganair@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन, मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन, बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 और FM 100.2 MHz पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में आज बातें हो रही हैं हमारे हिंदी सिनेमा के कुछ फेमस डायलॉग्स की, कुछ खास

संवादों की जिनकी छाप बहुत गहरी होती है। और बातों की इस गुंजन में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी रितिका। दोस्तों, अब याद कीजिए फिल्म पीके का ये डायलॉग, जहाँ पीके अपनी मासूमियत भरी समझ और भाषा में भी हमें भगवान की वास्तविकता से रूबरू करा देता है। पीके फिल्म का वो डायलॉग है, ई गोला पर दुई भगवान हैं, एक ऊ जिसने हम सबों को बनाया है और एक ऊ जिसे तुम लोगन ने बनाया है। जो तुम लोगन वाला भगवान है ना, वो एकदम तुम्हारे जैसा है, झूठ बोलता है, दिखावा करता है और अमीर गरीब में फर्क करता है। तो तुम सब अपने वाले भगवान को छोड़ो और उस भगवान पर भरोसा करो जिसने हम सबों को बनाया है। देखा दोस्तों, कितने ही सहज ढंग से पीके धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड पर चोट करता है। सच भी तो है ना दोस्तों, असली ईश्वर तो निराकार और भेदभाव से परे होते हैं। ईश्वर तो हमें ये कभी नहीं कहते कि हम मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों के लिए इंसानों का खून बहाएं, आपस में लड़ें। किसी भी धर्म या किसी भी धर्म का ईश्वर या कोई भी धर्म ग्रंथ हमें ये कभी नहीं सिखाता। फिल्मों के खास संवादों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है कार्यक्रम के अगले गीत का। आइए सुनते हैं पीके फिल्म का ये गीत। सोनू निगम की आवाज़ है, संगीत निर्देशन है शांतनु मोइत्रा का और गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बातों और गीतों की कार्यक्रम गुंजन के आज के इस अंक में। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी रितिका, और बातें चल रही हैं हिंदी सिनेमा के कुछ खास संवादों की जिनकी छाप हमारी जिंदगी में बहुत गहरी होती है। दोस्तों, फिल्म जब तक है जान का एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है। याददाश्त की अजीब फितरत है और सच तो ये है कि ये बड़ी मनमर्जी करती है। हम इंसानों का इस पर कोई बस ही नहीं चलता। आपने भी महसूस किया होगा ना दोस्तों, कि जिस बात को, जिस पल को हम बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, वो दिमाग के किसी कोने में जाकर छुप जाती है, याद ही नहीं आ पाती। वहीं दूसरी तरफ ज़िंदगी के वो मोड़, वो बातें और वो पुरानी यादें जिन्हें हम हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं, जिनसे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कमबख्त वही यादें बार बार आँखों के सामने घूमती रहती हैं। वैसे भी दोस्तों, याददाश्त का खेल निराला होता है। जिन यादों को दिमाग से निकालना चाहो वो दिल में घर कर लेती हैं, और जिन्हें संभाल कर रखना चाहो वो हाथ से रेत की तरह फिसल जाती हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीत के उस पार सिनेमा के खास संवादों का सफर यूं ही जारी रहेगा।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं ए दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउर ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की यदि ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा तो
0: राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही।
1: हे
0: तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला ए दे सुन सकत है।
1: हाँ अब ये तो शुरू है कि सहे।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

संदेश के पहले आप सुन रहे थे जब तक है जान फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की। संगीत निर्देशन था AR रहमान का और गीतकार थे गुलजार। बातों और गीतों की कार्यक्रम गुंजन में आज बातें चल रही हैं हिंदी सिनेमा के कुछ संवादों की, कुछ फेमस डायलॉग्स की, जिनकी एक खास जगह है हमारी जिंदगी में। आज कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं रितिका। दोस्तों, ये जवानी है दीवानी फिल्म का वो डायलॉग याद है आपको, जहाँ नैना बनी से कहती है, जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो अच्छा है जहाँ है वहीं का मज़ा लेते हैं। ये जवानी है दीवानी फिल्म का ये डायलॉग हमें फोमो यानी कुछ छूट जाने के डर इस भावना से बाहर निकालता है और वर्तमान में संतुष्ट रहना सिखाता है। ये डायलॉग ये सिखाता है कि हम सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते, इसलिए जो पास है, जो साथ है, उसकी कद्र करें। फिल्म के इस संवाद से ये जो खूबसूरत सीख हमें मिली है, उसके बाद आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत। आवाज़ है अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की, संगीत निर्देशन है प्रीतम का और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में आज बातें हो रही हैं हिंदी सिनेमा के फेमस डायलॉग्स की। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं रितिका। दोस्तों, बचपन से हमें दूसरों की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन अपनी कहानी के बारे में क्या? फिल्म तमाशा हमें यही आईना दिखाता है। तमाशा फिल्म का ये डायलॉग, वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, तमाशा बीच बाजार, क्यों वही घिसी पिटी कहानी, अपनी कहानी खुद लिख, क्यों तू, क्योंकि तू वही है जो तू होना चाहता है। दोस्तों, तमाशा फिल्म का ये डायलॉग हमें अंदर तक झकझोर कर रख देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दुनिया के बनाए रास्ते पर चलो, वही पढ़ो जो सब पढ़ रहे हैं, और बस इन्हीं वजहों से हम दूसरों की कहानी के पात्र बनकर रह जाते हैं। लेकिन फिल्म का ये डायलॉग हमें याद दिलाता है कि हम कोई रोबोट नहीं हैं, बल्कि जीते जागते इंसान हैं। हमारे भीतर भी एक हुनर है, एक जुनून है। ज़रूरी नहीं कि आप वही मजनू बने जो दुनिया चाहती है। अपनी कहानी के लेखक आप खुद भी बन सकते हैं। अपनी मौलिकता को मत खोइए, क्योंकि आपकी असली जीत खुद को पहचानने में ही है। चलिए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म तमाशा से। आवाज़ है मोहित चौहान की, संगीत निर्देशन है AR रहमान का, और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

मोहित चौहान की आवाज़ में फिल्म तमाशा का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। तो दोस्तों, ये थे हमारी हिंदी सिनेमा के वो संवाद जो कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया दिखाते हैं। उम्मीद है कार्यक्रम गुंजन की आज की ये कड़ी आपके दिल के करीब रहेगी। और अब अपनी रेडियो साथी रितिका को दीजिए कार्यक्रम से इजाज़त। जल्द ही कार्यक्रम गुंजन की अगली कड़ी में हम फिर साथ होंगे।

बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2,300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। सभी जोड़े अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करेंगे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह आयोजन सामाजिक समानता, सम्मान और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग ने इन समारोह के लिए सभी जिलों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में अब से कुछ देर बाद करीब 10:30 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 2,000 से अधिक छात्र छात्राएं, स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। समूह नृत्य, नाटक, प्रहसन और चित्रकला के माध्यम से रक्तदान, अंगदान, नशा मुक्ति और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर जागरूकता संदेश दिया जाएगा। वहीं शाम 4:30 बजे आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विजेताओं को सम्मानित करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और यह आज भी देश के सबसे विश्वसनीय प्रसारण माध्यमों में से एक है। इस दौड़ के माध्यम से आकाशवाणी अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने के साथ साथ फिटनेस, एकता और संपर्क के संदेश को भी बढ़ावा देगा। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट से बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वनमंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी। जहां समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए, वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज 20 से अधिक स्थानों पर बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने, बिजली गिरने और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। इधर गुरुवार को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार।

अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है तापमान संबंधी सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान संबंधी सूचना के बाद आइए एक नज़र डालें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर।

हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 10 बजे वक्त होगा रागों पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम राग प्रधान का। हमारे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे दोपहर 1:40 पर तथा कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। सोशल मीडिया पर प्राप्त हमारे श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00। शाम 7:05 पर वक्त होगा सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनी गंधा का। हमारे युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन सकेंगे शाम 5:00। दोपहर 2:30 पर वक्त होगा गैर फिल्मी गीतों व गजलों के कार्यक्रम गीत गंधा का। हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:10 पर। दोपहर 12:30 पर वक्त होगा शीर्षक गीतों के कार्यक्रम चयन का। श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री आप सुन सकेंगे सुबह 11:05 पर।

श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:03 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, नए तराने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: संदेश के पहले आप सुन रहे थे केसरी फिल्म का गीत, आवाज थी अरिजीत सिंह एवं असीस कौर की, संगीत निर्देशन था तनिष्क वागजी का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत कोई जाने ना फिल्म से, आवाज़ है लखविंदर वाडली एवं नीति मोहन की, संगीत निर्देशन है रोचक कोहली का और गीतकार हैं मनोज मंतसर।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: कार्यक्रम नए तराने में अब लीजिए सुनिए मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ये गीत। आवाज है मोहम्मद फैज की, संगीत निर्देशन है जानी का और गीतकार हैं समीर।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: कार्यक्रम नए तराने की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं स्त्री 2 फिल्म का ये गीत। आवाज है अमिताभ भट्टाचार्य, सचिन जिगर एवं शिल्पा राव की।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:15 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं दबंग 3 फिल्म से। आवाज़ है सलमान अली एवं मुस्कान की, संगीत निर्देशन है साजिद वाजिद अली का और गीतकार हैं समीर।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918, कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना, घरांगन@gmail.com।
3: समझ गए।

0: शनिवार को मेल और रविवार को फोन।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर घर आंगन, मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर।
0: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
2: कार्यक्रम नए तराने में लीजिए सुनिए अगला गीत, टाइगर जिंदा है फिल्म से। आवाज़ है आतिफ असलम की, संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

कार्यक्रम नए तराने में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ में फिल्म दिलवाले का ये गीत। संगीत निर्देशन है प्रीतम का और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

0: कार्यक्रम नए तराने में आइए अब सुनते हैं सूरमा फिल्म का ये गीत। आवाज़ है दलजीत दोसांझ की, संगीत निर्देशन है शंकर महादेवन एवं एहसान नूर का और गीतकार हैं गुलजार।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
2: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ,

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम नए तराने में आइए अब सुनते हैं शेरशाह फिल्म का ये गीत। आवाज़ है ज़ुबैन नौटियाल एवं असीस कौर की। संगीत निर्देशन एवं गीतकार हैं तनिष्क वागची।

0: है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कार्यक्रम नए तराने में अब लीजिए सुनिए भारत फिल्म का ये गीत। आवाज है आकाशा सिंह, नीति मोहन एवं कमाल खान की। संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का और गीतकार हैं इरशाद कामिल।
2: Thank you.

0: Ja.
1: कार्यक्रम नए तराने में अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में दम लगा के हईशा फिल्म का ये गीत। आवाज़ है कुमार सानू एवं साधना सरगम की, संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और गीतकार हैं वरुण ग्रोवर।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में दम लगा के आयशा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम नए तराने बस यहीं तक। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीपन दास गुप्ता, कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदेशालय ने बताया कि पीड़ितों द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित कई FIR कंपनी के खिलाफ दर्ज है। निदेशालय ने कल कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और कंपनी के 3 संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई को 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में हिस्सा लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी हमेशा से लोगों के दिल की धड़कन रहा है।
2: आकाशवाणी भारत की धड़कन था।
1: IPL क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मिडवीप और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। लिए श्रोताओं सुनिए चिट्ठी पत्री कार्यक्रम।

कार्यक्रम चिट्ठी पत्री सुनने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को स्नेह से परिपूर्ण नमस्कार। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण। दोस्तों, आज हमारा स्टूडियो आपके स्नेह की खुशबू से महक रहा है, क्योंकि मेरे सामने रखे आपके पत्र और ईमेल्स जो सिर्फ कागज़ नहीं

0: बल्कि आपके दिल के वो आईने हैं जिन्हें बड़ी मेहनत के साथ शब्दों से सवार कर आप हम तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों, आपके इन्हीं एहसासों को मुकम्मल जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं उपस्थित प्रमेंद्र जी। प्रमेंद्र जी, आपको मेरा सादर नमस्कार।
1: नमस्कार तरुण जी, और साथ ही साथ चिट्ठी पत्री सुन रहे हमारे तमाम श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा, बड़े ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर शब्दों से सजाकर हमारे श्रोताओं ने ढेर सारे पत्र हमें लिख भेजे हैं
0: जी।
1: और यह कहना सही नहीं होगा कि हम आपके पत्रों का जवाब देने के लिए हाजिर हैं, बल्कि हम आपके पत्रों पर चर्चा करने के लिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से स्टूडियो में उपस्थित हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो देखते हैं क्या कुछ लिख भेजा है हमारे श्रोताओं ने। तो सबसे पहला पत्र आज आप किनका ले रहे हैं कार्यक्रम में?
0: सबसे पहला पत्र हमें लिख भेजा है मामाया प्रसाद ओझा ने
1: जी।
0: ये पत्र आया है मिशन चौक विशाल मेगा मार्ट अंबिकापुर जिला सरगुजा से। ये लिखते हैं, सादर निवेदन है कि आकाशवाणी अंबिकापुर का प्रसारण वर्षों से मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ पर किया जा रहा है। अप्रैल से आपके केंद्र पर यह प्रसारण एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर भी प्रारंभ किया गया है, जो श्रोताओं के लिए अत्यंत सुखद एवं सराहनीय पहल है। पूर्व में मीडियम वेव पर प्रसारण की ध्वनि गुणवत्ता अपेक्षाकृत स्पष्ट नहीं रहती थी और प्रातःकाल से कई बार आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती थी, किंतु अब एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारण प्रारंभ होने से ध्वनि की गुणवत्ता अत्यंत स्पष्ट, मधुर और प्रभावशाली हो गई है। इससे श्रोताओं को कार्यक्रम सुनने में विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में आपके केंद्र द्वारा प्रसारित फिल्मी गीतों एवं विविध मनोरंजक कार्यक्रमों की प्रस्तुति अत्यंत उत्कृष्ट लग रही है। यदि रात्रिकालीन समय में सदाबहार गीतमाला जैसे कार्यक्रम भी प्रारंभ किए जाए तो निश्चित रूप से श्रोता अन्य रेडियो स्टेशनों के स्थान पर अधिकाधिक आकाशवाणी अंबिकापुर को सुनना अधिक पसंद करेंगे। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारण प्रारंभ करने हेतु आपको एवं आपके समस्त तकनीकी तथा प्रस्तुति दल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
1: प्रिय श्रोता बंधु ओझा जी, आपको आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेहिल नमस्कार। एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे प्रसारण को लेकर आपने जो आत्मीय पत्र भेजा है उसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। अत्यंत प्रसन्नता होती है ये जानकर कि हमारे एफएम पर प्रसारण को आप सभी सुन रहे हैं और आपको ये कार्यक्रम, ये प्रसारण गुणवत्तापूर्ण लग रहे हैं और पहले से और अधिक बढ़िया लग रहे हैं
0: जी।
1: श्रोताओं तक स्पष्ट और बेहतर प्रसारण पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है और आपकी प्रतिक्रिया हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा उत्साह है। आपने सदाबहार गीत माला जैसे कार्यक्रमों का सुझाव देकर कहीं न कहीं ये स्पष्ट किया है कि आप संगीत को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत चाहते हैं संगीत को सुनना। और सच कहें तो हमारे श्रोताओं की ये सुझाव ही हैं जो हमारे कार्यक्रमों को और अधिक जीवंत बनाते हैं। हम आपके सुझाव पर अवश्य गौर करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। आकाशवाणी केवल एक रेडियो स्टेशन नहीं है बल्कि अपने श्रोताओं के साथ भावनाओं का एक रिश्ता है और आप जिस स्नेह के साथ अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य हैं। आपका स्नेह, विश्वास और निरंतर साथ हमें बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो यही चाहेंगे कि आप इसी अपनत्व के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रसारण को। आज के इस पत्र के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बढ़ते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: अगला पत्र आया है प्रेमेंद्र जी, जलगांव जंक्शन से लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं डॉक्टर दिनेश काले। ये लिखते हैं, इन्होंने चयन कार्यक्रम की प्रशंसा के रूप में अपनी बात लिखी है। एक छोटे से शब्द पर सारगर्भित और प्रभावशाली कार्यक्रम प्रस्तुत करना आकाशवाणी अंबिकापुर के उद्घोषकों की विशेषता बन चुकी है। बुधवार को प्रसारित चयन कार्यक्रम के अंतर्गत शबनम खानम जी द्वारा प्रस्तुत साहित्य बोध, काव्य की गहराई, गीतों का चयन तथा उन पर किया गया विचारशील विश्लेषण मुझे अत्यंत पसंद आया। इसके लिए शबनम जी को हार्दिक धन्यवाद। साथ ही रैना जी, कल्पना सिन्हा, पोलोमी, पूनम, शक्ति और तरुण, ये सभी साहित्य सृजनशीलता और प्रस्तुति कला में निसंदेह अत्यंत अग्रसर प्रतीत होते हैं। आप सबसे जुड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। साथ ही 1 मई का दिन अनेक दृष्टियों से विशेष और पावन है। बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर, भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन, ज्ञान प्राप्ति एवं महा

0: परिनिर्माण दिवस, इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस तथा महाराष्ट्र दिवस एवं गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर आकाशवाणी अंबिकापुर के समस्त कर्मचारियों को हार्दिक मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं।
1: जी देखिए, डॉक्टर दिनेश काले जी को हम इस स्नेहपूर्ण पत्र के लिए आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे चयन कार्यक्रम को और चयन के अंतर्गत प्रस्तुत गीतों को और विचारपूर्ण विश्लेषण को जिस आत्मीयता के साथ सराहा है, सचमुच हमारे लिए बेहद प्रेरणादायक है। ये जानकर हमें बेहद प्रसन्नता होती है कि आकाशवाणी अंबिकापुर की प्रस्तुतियाँ आपको भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं और कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं।
0: जी,
1: आपने हमारे समस्त उद्घोषक साथियों को, कलाकार साथियों का उल्लेख किया है और आपके ये स्नेह भरे शब्द इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथियों तक पहुंच रहा है। श्रोताओं का अपनापन ही है जो हमारे प्रसारण को जीवंत बनाता है।
0: जी,
1: महत्वपूर्ण बनाता है। आपने बुद्ध पूर्णिमा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस जैसे अवसरों पर जो शुभकामनाएं भेजी हैं, जो जानकारियां भेजी है, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आप से यही चाहेंगे कि ये स्नेह और विश्वास इसी तरह बनाए रखिए, इसी आत्मीयता के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और अब बढ़ते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: अगला पत्र है धमतरी छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या माही, पूजा छुटकी और शरद कुमार डोंडवानी। ये लिखते हैं 3 मई को दोपहर 12 बजे प्रसारित कार्यक्रम मिश्रित गीत सबरंग कार्यक्रम का प्रसारण अत्यंत मधुर, भावपूर्ण और मन को छूने वाला रहा। कार्यक्रम में प्रस्तुत गीत, भजन, रचना और विचारों ने श्रोताओं के मन को गहराई से प्रभावित किया है। विशेष रूप से प्रस्तुत गीत कोई दीवार से लग के बैठा रहा। दिनांक 4 मई सुबह 10 बजे प्रसारित श्रोताओं की पसंद पर आधारित फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत अत्यंत रोचक, ऊर्जावान और मनोरंजक रहा। कार्यक्रम में तरुण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आत्मीय बातचीत, मधुर गीतों के माध्यम से इस कार्यक्रम ने यादगार बना दिया। आदरणीय श्री प्रमेंद्र कुमार यादव जी द्वारा अपनी सहज और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए विशेष रूप से वे बधाई के पात्र हैं। पूरे कार्यक्रम बहुत ही शानदार, मनोरंजक और दिल को सुकून देने वाले रहे, इसके लिए समस्त प्रस्तुति टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
1: जी, रामचंद माखीजा जी और आपके सभी परिजनों को हमारी ओर से, आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपके आत्मीय संदेश और कार्यक्रमों के प्रति इतनी बारीकी से व्यक्त की गई भावनाएं सुनकर सचमुच हम सभी का मन प्रसन्न हो जाता है।
0: जी,
1: सबरंग में गीत, भजन और शायरी की प्रस्तुति को आपने जिस अपनत्व से सराहा, हमारे लिए बेहद प्रेरणादायक है। इसी तरह आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम के बारे में आपने जो उत्साह व्यक्त किया, इससे महसूस होता है कि रेडियो आज भी दिलों को जोड़ने का सबसे आत्मीय माध्यम है। हमारे सभी कलाकार साथियों, पूरी टीम के लिए आपके जो अमूल्य शब्द हैं, ये हमारे लिए एक पुरस्कार जैसे हैं। आप सभी इसी स्नेह और निरंतरता से जुड़े रहिए, हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनते रहिए। आप जैसे श्रोता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं और अपने आप इसी अपनत्व के साथ हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और अपनी बातें हम तक लिखकर भेजते रहिए। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी को आज के इस पत्र के लिए और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों को सुनेंगे और अपनी बातें हम तक लिखकर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, अगला पत्र आया है हमारे पास पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा निर्मलकर और गीतिका की ओर से।
1: जी,
0: ये पत्र आया है करही भदर से।
1: जी,
0: ये लिखते हैं आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम अत्यंत प्रशंसनीय, ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक होते हैं। हम आपके केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित कार्यक्रमों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा नियमित रूप से ईमेल एवं पत्र भी प्रेषित करते रहते हैं, किंतु अत्यंत विनम्रता के साथ निवेदन है कि हमारे द्वारा भेजे गए ईमेल और पत्रों को कार्यक्रमों में समुचित स्थान नहीं मिल पा रहा है, विशेष रूप से ईमेल की गूंज कार्यक्रम हेतु। हम जनवरी, फरवरी एवं आधे मार्च तक लगातार ईमेल भेजते रहे, परंतु अभी तक हमारा एक भी ईमेल

0: शामिल नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि क्या ईमेल की गूंज कार्यक्रम हेतु कोई विशेष प्रक्रिया है, क्या इसके लिए कोई शुल्क जमा करना पड़ता है, अथवा केंद्र में व्यक्तिगत रूप से आना आवश्यक होता है। यदि ऐसी कोई जानकारी हो तो कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। हम आपके सभी कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, पूरे मन से सुनते हैं और समय पर निकालकर कार्यक्रमों की समीक्षा एवं फरमाइशें भी भेजते हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता कि हमारी मेहनत और समय व्यर्थ चला जाता है क्योंकि हमारे संदेशों को कार्यक्रम में स्थान नहीं मिल पाता। फिर भी आपके केंद्र के प्रति हमारा स्नेह और लगाव हमें निरंतर आपके कार्यक्रमों से सुनने के लिए प्रेरित करता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया ईमेल की गूंज कार्यक्रम का सही ईमेल आईडी बताने की कृपा करें और भविष्य में हमारी फरमाइशों और पत्रों को भी कार्यक्रम में स्थान दें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।
1: जी, थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं हमारे पुरुषोत्तम निर्वाणकर जी और श्रद्धा निर्वाणकर जी, गीतिका जी, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। ये पत्र जो है भावनाओं से भरा हुआ पत्र है और सबसे पहले हम आपके निरंतर स्नेह, विश्वास और हमारे कार्यक्रमों के प्रति आत्मीयता के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं
0: जी।
1: आपने जिस अपनत्व के साथ अपनी बात रखी है सचमुच दिल को छूने वाली है। आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं और अपनी फरमाइशों के माध्यम से जुड़ाव बनाए रखते हैं। ये हमारे श्रोताओं का जो प्रेम है आकाशवाणी की असली ताकत है। और जहाँ तक आपने आपके ईमेल की गूंज फरमाइश में आपकी फरमाइश को शामिल नहीं करने की बात है
0: जी,
1: तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपकी इस शिकायत पर जांच किया और देखा कि क्या वाकई में आपके फरमाइश हमें मिल रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी फरमाइश हमें पिछले कई दिनों से, कई महीनों से प्राप्त नहीं हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो भेजने का तरीका है उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न है
0: जी।
1: तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईमेल की गूंज कार्यक्रम के लिए आपको ईमेल करना नहीं होता, बल्कि हमने इसके लिए एक अलग व्यवस्था बना रखा है, एक गूगल फॉर्म बना रखा है जिसके माध्यम से हमारे श्रोता अपनी फरमाइश भेजते हैं। और ईमेल की गूंज में फरमाइश भेजने के लिए आपको करना यह है कि आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, आकाशवाणी अंबिकापुर का एक फेसबुक अकाउंट है उस पर जाएं, वहाँ प्रोफाइल में सबसे ऊपर एक पोस्ट है जो जिसे पिन करके रखा गया है, उस पोस्ट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही एक गूगल फॉर्म खुलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी फरमाइश हम तक आसानी से पहुँचा पाएंगे और आपके द्वारा भेजे गए फरमाइश को हम ईमेल की गूंज कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम किसी तरह की कोई शुल्क या कोई आकाशवाणी में आकर मिलने की आवश्यकता नहीं है कार्यक्रमों में आपके फरमाइश के लिए। ये फरमाइश सी कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल ही डिजिटल है और हमारे श्रोता जब भी नियमों के अनुरूप फरमाइश भेजते हैं तो हम उसे अवश्य शामिल करते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो लिंक है ये प्रतिदिन 10 से 12 बजे के बीच चालू रहता है और इसी बीच आपको अपनी फरमाइश भेजनी रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे से आप इस लिंक के माध्यम से हमें फरमाइश भेजेंगे तो हम अवश्य शामिल कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे जागरूक और आत्मीय श्रोता ही आकाशवाणी परिवार की पहचान है और यदि आप हमसे दूर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ये क्षति है। तो हम चाहेंगे कि आप नियमित रूप से हमसे जुड़े रहें, विश्वास बनाए रखें, स्नेह बनाए रखें और अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए और अब बढ़ते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: जी, अगला पत्र आया है सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम एवं मनोज कुमार यादव
1: जी।
0: ये लिखते हैं, चिट्ठी पत्री कार्यक्रम हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है और कार्यक्रम की हमेशा प्रस्तुति लाजवाब और आत्मीय लगती है। दिनांक 2 अप्रैल को प्रसारित आराधना, विचार बिंदु, नमस्कार सरगुजा, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में पेट संबंधी उपचार की जानकारी बातों बातों में तथा नए तराने कार्यक्रम अत्यंत अच्छे लगे। साथ ही गुंजन कार्यक्रम में गर्मी के दिनों में सावधानी, सत्यजीत रे पर जानकारी, जीवन बीमा, टूना दिवस, पंडवानी गायिका उषा बार्ले जी एवं अन्य विषयों पर दी गई रोचक जानकारी तथा मधुर गीतों का सुंदर समावेश मन को बहुत भाया। इन सभी कार्यक्रमों की शानदार और मनो

0: तुम्हारी प्रस्तुति हेतु प्रियंका को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 अप्रैल को प्रसारित परिक्रमा विविधा में आकाशवाणी अंबिकापुर के 85 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर पूर्व उद्घोषक से बातचीत सुनना अत्यंत अच्छा लगा। इसके लिए अंजनी जी को विशेष रूप से धन्यवाद। साथ ही गुंजन, आपकी बात आपके गीत एवं आपकी पसंद कार्यक्रम भी बहुत अच्छे लगे। उद्घोषकों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक सुझाव है कि महफिल एवं युवा पसंद जैसे कार्यक्रमों में कई बार केवल गीत ही सुनाए जाते हैं और श्रोताओं के पत्र या ईमेल नहीं पढ़े जाते। 3 अप्रैल के प्रसारण में भी ऐसा ही अनुभव हुआ
1: जी।
0: एक श्रोता के रूप में ऐसा महसूस होता कि या तो पत्र ईमेल पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं अथवा कार्यक्रम में उन्हें पढ़ने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। श्रोताओं के पत्रों और संदेशों को शामिल करने से कार्यक्रम और अधिक आत्मीय एवं जीवंत बनता है। हमारा विनम्र सुझाव कि श्रोताओं की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए ताकि आकाशवाणी अंबिकापुर से श्रोताओं का जुड़ाव और अधिक मजबूत हो सके।
1: जी तरुण, देखिए प्रेम नगर फुलकोना स्थित सत्यम क्लब से अरविंद कुमार यादव जी, आपके सभी मित्रगण, सभी परिजन, आपने बड़ा ही आत्मीय पत्र लिख भेजा है और आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद
0: जी।
1: आपने हमारे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे आराधना, विचार बिंदु, डॉक्टर की सलाह, बातों बातों में, नए तराने, गुंजन, परिक्रमा, इन सभी कार्यक्रमों को इतने ध्यान से सुना है और अपने सुंदर शब्दों में सराहा है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। विशेष रूप से हमारे प्रस्तोता साथियों, हमारे कलाकार साथियों के लिए जो स्नेह भरे शब्द, उत्साह बढ़ाने वाले शब्द आपने लिख भेजे हैं, वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और हम सभी का हौसला अफजाई करता है, उत्साहवर्धन करता है। साथ ही आपने जो महफिल और युवा पसंद कार्यक्रमों को लेकर सुझाव भेजा है
0: जी,
1: इसके लिए हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं और श्रोताओं के फरमाइशों को शामिल किया जाना आवश्यक है और हमारे इन कार्यक्रमों का जो प्रारूप है वो श्रोताओं के फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम ही है। ये दोनों कार्यक्रम, चाहे वो महफिल हो या युवा पसंद हो, कई दफ़े हमें पर्याप्त ईमेल या फरमाइश प्राप्त नहीं होते हैं इन कार्यक्रमों के लिए और वैसी स्थिति में हम सिर्फ गीतों को बजाते हैं
0: जी।
1: वैसे आज की स्थिति में अब हमें बहुत सारे फरमाइश मिलने लगे हैं इन कार्यक्रमों के लिए भी, और चूंकि अब हम ईमेल के माध्यम से भी इन कार्यक्रमों की फरमाइश लेते हैं तो अब आपको ऐसी शिकायत करने की मौका हम नहीं देंगे, क्योंकि अब हमारे पास ढेर सारे फरमाइश मिल रहे हैं और हम श्रोताओं के फरमाइश को अवश्य ही शामिल करेंगे। आपने बहुत ही आत्मीयता से भरे पत्र, सुझाव से भरे पत्र लिख भेजा हमें और अपनी भागीदारी आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आप नियमित रूप से निभाते हैं, हमारे एक सुधी श्रोता हैं, नियमित श्रोता हैं, और हम यही चाहेंगे कि इसी स्नेह और विश्वास के साथ आप जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रमों से और सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रसारण को, और सबसे महत्वपूर्ण है अपनी बातें हम तक लिखकर भेजते रहिए। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं और तरुण अब वक्त हो चला है कि छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लिया जाए और कुछ गीत संगीत अपने श्रोताओं को सुनाते चलें
0: जी। तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, सरफरोश फिल्म का ये गीत, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: जी हाँ श्रोताओ, जो हाल आपका हुआ है वही हाल हमारा भी हुआ है, क्योंकि आपके इतने अच्छे अच्छे पत्र हमें प्राप्त हुए हैं जिन्हें पढ़कर ही हमारा मन बहुत खुश हो गया है। तो प्रवेंद्र जी, कार्यक्रम में अगला पत्र लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगला पत्र आया है हमारे पास राजापुर जिला सूरजपुर से, और लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं खेलसाह मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा, लक्की, सीताराम, सितंबर, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूरसाह राजवाड़े, कविता मरकाम एवं आरती मरकाम जी की ओर से। ये लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम हमें बेहद अच्छे लगते हैं, विशेष रूप से नमस्कार सरगुजा और विचार बिंदु कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों से हमें नई नई जानकारियां और सकारात्मक विचार सुनने को मिलते हैं। इसके लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: साथ ही एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आपकी पसंद कार्यक्रम में हमारे द्वारा भेजे गए पोस्टकार्ड कई बार शामिल नहीं हो पाते, जिससे थोड़ी सी निराशा महसूस होती है। इसी प्रकार ईमेल की गूंज एवं इंस्टा फरमाइश कार्यक्रमों में हमारा पूरा नाम और पता भी नहीं पढ़ा जाता, जबकि हम बड़े प्रेम और उत्साह से अपने संदेश भेजते हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अगली बार हमारे पूरे नाम और पते को भी पढ़ने की कृपा करें। इससे हम जैसे श्रोताओं का उत्साह और भी बढ़ेगा, कार्यक्रम से आत्मीय जुड़ाव बना रहेगा।
1: बिल्कुल, आत्मीय जुड़ाव बनाए रखिए। राजापुर जिला सूरजपुर से खेलसा अमरकाम जी और आपके सभी मित्रगण, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। बड़ा ही आत्मीय संदेश लिख भेजा है आपने। सबसे पहले आपने हमारे कार्यक्रमों, विशेष रूप से आपकी पसंद, ईमेल की गूंज, इंस्टा फरमाइश के प्रति जो आपने प्रेम और जुड़ाव व्यक्त किया है, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने बड़ी सहजता और अपनत्व के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और जहां तक पोस्ट कार्ड शामिल नहीं करने की बात है, तो हम नियमित रूप से प्रयास करते हैं कि जितने भी पोस्ट कार्ड हमें मिले, उसमें हम सभी श्रोताओं को बारी बारी से जगह दें। कई दफ़े समय के सीमाओं के कारण, समय की बाध्यता की वजह से हम सभी श्रोताओं का नाम एक ही दिन में शामिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे सभी श्रोताओं को जगह देते हैं
0: जी।
1: और तरुण, देखिए, हमारे इन श्रोताओं ने एक और शिकायत लिख भेजी है कि नाम और पता पूरी तरह से नहीं पढ़े जाते कार्यक्रमों में
0: जी।
1: देखिए, कई बार क्या होता है कि श्रोता हमें नाम और पता के साथ साथ कुछ अन्य बातें भी लिख कर भेज देते हैं, और हमारी एक आकाशवाणी की पहचान है, हमारी जो विश्वसनीयता है
0: जी,
1: कि हम जो भी बातें प्रसारित करते हैं वो सटीक हो, सही हो। और कुछ श्रोता जो हैं पता में कुछ अन्य चीज़ें जोड़ देते हैं
0: जी,
1: जो शायद सत्य नहीं है, और इस बारे में हमें कई बार शिकायत भी मिलती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो सही पता हो उसे हम कार्यक्रमों में जगह दें, और हम अपने श्रोताओं से भी गुजारिश करेंगे कि आप सही पता लिखिए और सही नाम लिखिए, क्योंकि इससे हमारी विश्वसनीयता, हमारी सटीकता पे असर पड़ता है। और यदि आप सही पता और सही नाम लिखेंगे तो आकाशवाणी की विश्वसनीयता और आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी
0: जी।
1: और हमारे श्रोता इस मामले में सजग हैं
0: जी।
1: और वो इस तरह की बातों का ध्यान रखते हैं और भविष्य में ध्यान भी रखेंगे। तो हम यही गुजारिश करेंगे आपसे भी कि आप सही पता लिखिए, सही नाम लिखिए, सटीक जानकारी हमें लिख भेजिए। इससे हम सभी के लिए ये बातें लाभदायक होंगी और हमारी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा। बहरहाल, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, बहुत पुराने श्रोता हैं, और नियमित रूप से आप हमारे कार्यक्रमों में सहभागिता निभाते हैं। आप जैसे आत्मीय श्रोता आकाशवाणी परिवार की असली ताकत हैं, और आपका प्यार, अपनापन हमें हमेशा प्रेरित करता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप इसी स्नेह के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर का प्रसारण। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए, और अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर
0: जी। अगला पत्र आया है चिरमिरी कुरासिया कालरी से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, राम नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे एवं कालिंद्री लहरे की ओर से
1: जी।
0: ये लिखते हैं, 3 मई को प्रसारित कानून की बात कार्यक्रम अत्यंत अच्छा लगा। इतनी महत्वपूर्ण और जागरूकता से भरी जानकारी सुनाने हेतु आपके केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े ही सजगता के साथ और बड़े ही प्यार से कार्यक्रमों को सुनते हैं, और उतने ही प्यार से आप उस कार्यक्रम की समीक्षा लिख भेजते हैं, और आपकी समीक्षा में कार्यक्रमों के कुछ अंश, उसमें बताई गई जानकारी के कुछ अंश भी लिखा होता है, और ये हमें अत्यंत प्रेरणादायक लगता है। समाज में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और इस विषय पर जागरूकता जैसे विषय को आपने सराहा, ये कहीं ना कहीं आपके गंभीरता को, आपके समझ को दर्शाता है। और हमारा उद्देश्य है कि हम सभी श्रोताओं को इन विषयों पर जागरूक बनाएं। आपको ये लाभदायक लगा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और यही चाहेंगे कि आप जैसे स्नेही और जागरूक श्रोता हमारे आकाशवाणी से जुड़े रहें और सुनते रहें हमारे कार्यक्रमों को, लाभान्वित होते रहें हमारे कार्यक्रमों से
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी बातें हम तक लिखकर भेजते रहें
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और तरुण, अब अगला पत्र लेते हैं।
0: अगला पत्र आया है हमारे पास सारसताल सोनग्रह से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार।

0: राम खिलावन सिंह पैकरा, राजकुमार निवानी, नैनदास दीवान, ये लिखते हैं चिट्ठी पत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी सम्मानित श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें बेहद अच्छे लगते हैं। दिनांक 30 अप्रैल को प्रसारित चिट्ठी पत्री कार्यक्रम अत्यंत शानदार और मनोरंजक रहा। इसके लिए पोलोमी एवं प्रमेंद्र जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 4 मई को प्रसारित आपकी बात आपकी गीत कार्यक्रम भी बहुत शानदार लगा। इस बेहतरीन प्रस्तुति हेतु तरुण कुमार जी को हार्दिक बधाई। इसी दिन प्रसारित इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा। इसके लिए कल्पना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में एक मधुर गीत ये सुनना चाहते हैं तो हम समय पर उन्हें सुनवाएंगे।
1: जी, सुपर स्टार रेडियो श्रोता संघ सोनगरा जिला सूरजपुर से प्रेम साय राजवाड़े जी, आपके सभी मित्रगण, सभी परिजन, आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार। बड़ा ही आत्मीय संदेश और सचमुच मन प्रसन्न करने वाली बातें, अच्छा लगता है जानकर कि हमारे कार्यक्रमों को आप नियमित रूप से सुनते हैं और हर प्रस्तुति को इतने अपनत्व के साथ सराहते हैं। आपने चिट्ठी पत्री को सुना, सराहा, आपकी शुभकामनाएं हम तक पहुंची, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बात आपके गीत, इंस्टा फरमाइश, इन तमाम कार्यक्रमों के लिए हमारे कलाकार साथियों, हमारे उद्घोषक साथियों की आपने प्रशंसा लिख भेजी है और आपका ये स्नेह निश्चित रूप से उन्हें और भी बेहतर करने का प्रेरणा देगा। आपकी फरमाइश जो मिली है, तरुण जी ने बता दिया है कि वो इसे समय आगे आने वाले समय में उसे पूरी करेंगे। बहरहाल, आपने पत्र लिखा, बड़ा ही आत्मीयता भरे शब्द लिखकर हमें भेजे और हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा लिख भेजी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और बस यही चाहेंगे कि इसी प्यार और विश्वास के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रसारण को। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला पत्र आया है सारसताल सोनगुड़ा जिला सूरजपुर से, माफ कीजिएगा, अगला पत्र आया है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रोशन लाल दिवांगन, ये लिखते हैं, मैं आकाशवाणी अंबिकापुर का नियमित श्रोता हूँ। आपके केंद्र से प्रसारित आपकी पसंद जैसे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मैं प्रतिदिन सुनता हूँ। मेरा भेजा हुआ पत्र समय समय पर शामिल भी होता रहा है। कुछ समय पहले आपके केंद्र से सोशल मीडिया आधारित कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम हुआ, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। हम भी नियमित रूप से अपनी फरमाइश भेजने लगे। फरमाइश भेजने का समय शाम 5 बजे से निर्धारित है, लेकिन हम तो फेसबुक पर लिंक आते ही तुरंत अपना संदेश भेज देते हैं। फिर भी कई बार हमारा संदेश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाता, जिससे मन में थोड़ी निराशा होती है। इसी कारण हमने इंस्टा फरमाइश सुनना भी कम कर दिया है। जब हम निर्धारित समय के भीतर अपनी फरमाइश भेज रहे हैं तो हमारा संदेश भी शामिल होना बिल्कुल चाहिए, इससे हमें बहुत खुशी होगी। रेडियो से हमारा रिश्ता एक माँ और एक बच्चे जैसा आत्मीय है, यही अपनापन हमें लगातार आपके कार्यक्रमों से हमें जोड़े रखता है। एक बात और कहना चाहूँगा कि ईमेल की गूंज कार्यक्रम में भी हम सही समय पर संदेश भेजते हैं, लेकिन कई बार हमारा संदेश पीछे चला जाता है जबकि बाद में भेजे गए संदेश पहले पढ़े जाते हैं। इस बात भी को सोचने योग्य है। इसी प्रकार इंद्रधनुष कड़ी क्रमांक 69 में मैंने रविवार की ही सुबह उत्तर भेज दिया था, लेकिन वह भी शामिल नहीं हो पाया। समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे आत्मीय श्रोता रोशन लाल देवांगन जी, आपको हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपने जिस खुले मन और आत्मीयता के साथ अपनी भावनाएं साझा की हैं, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जानकर अच्छा लगा कि आप हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद, इंस्टा फरमाइश, ईमेल की गूंज, इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रमों में को नियमित रूप से सुनते हैं और पूरे मन से उसमें भाग लेते हैं। आपकी यह भावना है कि बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब समय पर संदेश भेजे जाने के बाद भी प्रसारण में शामिल न हो पाएं तो थोड़ी निराशा होती है
0: जी,
1: लेकिन विश्वास रखिए यह किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में संदेश और फरमाइशें प्राप्त होती हैं और समय की सीमाओं के कारण कई बार सभी संदेशों को शामिल कर पाना संभव नहीं हो पाता है। हम कोशिश करते हैं कि जो श्रोता पिछले दिनों में शामिल नहीं हो पाए उन्हें हम आने वाले दिनों में शामिल करें और इस तरह से अंतराल के बाद श्रोताओं को हम जगह देने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। आप कभी भी कमेंट करिए उसमें।

0: में कोई दिक्कत नहीं है, आपके सभी कमेंट को हम देखते हैं, सभी कमेंट को हम ध्यान रखते हैं, वो चाहे सामने हो या पीछे हो, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। आपका आपके ये जो संदेश होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप रेडियो को सुनते रहिए। और आपने लिखा है कि रेडियो के साथ जो आपका रिश्ता है वो माँ और बच्चे के संबंध जैसा है
1: जी।
0: और ये अत्यंत भावुक और अनमोल बात है
1: जी।
0: और आपके इस भावना का हम सम्मान करते हैं और हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है आपकी ये बातें। हम अवश्य कोशिश करेंगे कि आप चाहे वो इंस्टा फरमाइश हो, ईमेल की गूंज हो, इंद्रधनुष हो, तमाम कार्यक्रमों में समय की बाध्यता की वजह से सभी फरमाइशों को हम नहीं ले पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अंतराल के बाद श्रोताओं को जगह दें, सभी श्रोताओं को जगह दें। तो नियमित रूप से आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें, आपकी फरमाइश को हम अवश्य शामिल करेंगे। और यही कहेंगे कि इसी आत्मीयता के साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र एवं रौनक सेन। ये लिखते हैं, मौसम चाहे बरसात का हो, ठंड का हो या फिर चहचहाती गर्मी का, जब इंसान अपने काम को लगन, विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ करता है, तब समय और मौसम का एहसास ही नहीं होता। जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी सकारात्मक भावना के साथ हमने 1 तारीख को सुबह 11:05 पर आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित चिट्ठी पत्री कार्यक्रम सुना, जिसे प्रमेंद्र जी और प्लोमी जी ने प्रस्तुत किया। बेहतरीन अंदाज, मनमोहक आवाज और शानदार प्रस्तुति से इस कार्यक्रम ने हमें एक यादगार पल दिए। कार्यक्रम में अधिक से अधिक ईमेल और पत्र का समावेश सुनकर दिल गदगद हो गया। इस क्रम में हमने आपकी पसंद, ईमेल की गूंज, आपकी बात, आपके गीत एवं गांव कर गीत कार्यक्रमों को सुनने का आनंद लिया। सभी उद्घोषक साथियों ने अपनी मधुर आवाज, आत्मीय शैली और बेहतरीन प्रस्तुति से कार्यक्रमों को अत्यंत शानदार बनाया। सचमुच ये प्रस्तुति काबिले तारीफ रही। ऐसी सुंदर, मनभावन, शानदार और जानदार प्रस्तुति के लिए प्रमेंद्र कुमार जी और समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। जिन उद्घोषक साथियों के नाम उल्लेख नहीं किए गए हैं, वे सभी हमारे धन्यवाद के सहर्ष स्वीकार करें
0: जी। बड़ा ही आत्मीयता से भरा संदेश और सुनकर सचमुच मन प्रसन्न हो गया तरुण जी
1: जी। और एक सुझाव उन्होंने दिया है
0: जी
1: कि इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम का लिंक किस माध्यम से और किस समय उपलब्ध कराया जाता है, कृपया जानकारी दें
0: जी। जी तो चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन जी, आपके सभी मित्रगण, साथीगण, परिजन, आप सभी को हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपने जीवन में विश्वास, लगन और समय के महत्व को जिस सुंदर भाव से जोड़ा और फिर हमारे कार्यक्रमों के साथ अपने जुड़ाव को साझा किया, दिल को छूने वाला है। कार्यक्रम चिट्ठी पत्री, आपकी पसंद, ईमेल की गूंज, आपकी बात, आपके गीत, गांव कर गीत जैसे कार्यक्रमों को आप इतने ध्यान और प्रेम से सुनते हैं और इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं
1: जी।
0: आपने हम सभी साथियों के लिए, हम सभी कलाकार साथियों के लिए जो स्नेह भरे शब्द भेजे हैं, वे निश्चित ही पूरी टीम का उत्साह बढ़ाएंगे। श्रोताओं का यही अपनापन है जो हमारे प्रसारण की असली ताकत है। इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम की बात जो आपने लिखी भी है, तो वो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिदिन इसका लिंक साझा किया जाता है। इसके लिए एक पोस्ट डाला जाता है जो 10 बजे के करीब प्रतिदिन हम डालते हैं। आप उस पोस्ट पर अपनी फरमाइश, अपना नाम, अपना पता, तमाम बातें लिखकर कमेंट करिए और उसे हम अपने कार्यक्रम में जगह देते हैं। तो यही चाहेंगे कि आप इसी स्नेह और विश्वास के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम को और अपनी बातें, कार्यक्रमों की समीक्षा, सुझाव, तमाम बातें लिखकर ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और तरुण जी, अब बढ़ते हैं आज के अगले पत्र।
1: अगला पत्र आया है अड़ार नानघाट से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा। ये लिखते हैं, 2 मई को डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम अत्यंत पसंद आया। इसी प्रकार 4 मई को 10 बजे प्रसारित आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम श्रोताओं से आत्मीय बातचीत करते हुए उनकी पसंद के सुंदर सुंदर गीत सुनवाए गए, जो बेहद अच्छे लगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति अत्यंत मनोरंजक और शानदार रही। इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए तरुण जी को और प्रस्तुतकर्ता प्रेमेंद्र जी को।

0: और समस्त आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद बधाई।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अड़ारनंद घाट से हमारे आत्मीय श्रोता माखन वर्मा जी, आपके सभी मित्रगण परिजन, आप सभी को हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। बड़ा ही अपनापन से भरा संदेश आपने लिख भेजा है और 2 मई को प्रसारित डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम को आपने ध्यान से सुना है और इससे आप लाभान्वित हुए, यह जानकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। साथ ही साथ आपने 4 मई को प्रसारित आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम के बारे में जो आत्मीय शब्द लिख भेजे हैं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने हम सभी का हौसला अफजाई किया, हमारे कार्यक्रमों के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया, शुभकामनाएं लिख भेजी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और यही कहेंगे कि आप जैसे सजग और प्रेमपूर्ण श्रोता ही आकाशवाणी परिवार की असली पहचान है। तो इसी स्नेह और विश्वास के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को और अपनी बातें लिखकर भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए।
0: जी अगला पत्र आया है संतोष खड़से और विनोद खड़से की ओर से।
1: जी
0: ये लिखते हैं, काफी समय बाद हम चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में अपनी समीक्षा भेज रहे हैं। आवश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण हमें समीक्षा भेजने के लिए एक पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हालांकि आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने का सिलसिला लगातार जारी है, जब जब समय मिलेगा तब हम अवश्य अपनी समीक्षा भेजेंगे, यह आपसे हमारा पक्का वादा है। गुरुवार 7 मई को प्रसारित बैठक कार्यक्रम में सरगुजा के पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल जी से प्रमेंद्र कुमार जी की भेंटवार्ता हमें बहुत अच्छी लगी। पुलिस अधीक्षक बनने तक के उनके संघर्ष, सरगुजा में जनता की सेवा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उनके अनुभव पर विस्तार से चर्चा की गई। यह भेंटवार्ता अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रही। सुंदर प्रस्तुति हेतु प्रमेंद्र जी को हार्दिक बधाई। इसी प्रकार मंगलवार 5 मई को प्रसारित फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत, जिसे तरुण जी ने प्रस्तुत किया था, वो बहुत पसंद आया। इन दिनों सोशल मीडिया पर आकाशवाणी अंबिकापुर के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अपडेट मिलने लगे हैं, जिससे हम श्रोताओं को कार्यक्रम सुनने और फरमाइश भेजने में काफ़ी सुविधा होने लगी है। यह वास्तव में अत्यंत सराहनीय पहल है। इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में भी तेजी से लोकप्रियता प्राप्त हो रही है, इसका श्रेय प्रमेंद्र कुमार जी को जाता है। अंत में उन्होंने धन्यवाद दिया है।
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हमारे प्रिय श्रोता संतोष खड़से जी और विनोद खड़से जी, आप दोनों को हमारी ओर से नमस्कार, जय जोहार। बड़ा ही आत्मीय और अपनत्व से भरा संदेश आपने लिख भेजा है। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि समीक्षा भेजने में यदि कभी अंतराल हो जाए तो उसके लिए क्षमा मांगने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और आकाशवाणी अंबिकापुर को अपना स्नेह लिख भेजते हैं, यही रिश्ता हमारे लिए सबसे अनमोल है। आपने 7 मई के बैठक कार्यक्रम को सुना, जिसमें हमारे सरगुजा जिला के पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल जी हमारे स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपने अनुभव, अपने संस्मरण, अपने विचार कार्यक्रम के माध्यम से हमसे साझा किया था और आप इस कार्यक्रम को सुने, इसकी प्रशंसा लिख भेजी आपने, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम और तमाम हमारे कार्यक्रमों के लिए जो आपने स्नेह भरे शब्द लिख भेजी है वो पूरी टीम के लिए उत्साहवर्धन करने वाली बात है और हम सभी का हौसला अफजाई करती है। सोशल मीडिया और इंस्टा फरमाइश को लेकर आपने जो सराहना की है वो हमारे लिए विशेष प्रेरणा की बात है। आप जैसे आत्मीय श्रोता ही आकाशवाणी अंबिकापुर की असली पहचान है और हम यही कहेंगे कि आप भी इसी प्रेम और विश्वास के साथ जुड़े रहिए और हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, समय मिले तो समीक्षा लिखकर भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और तरुण जी अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: अगला पत्र आया है देवीगंज रोड अंबिकापुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं राजकुमार निवानी, आकाश, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी एवं यशी और परिवार के सभी सदस्य। 4 मई को प्रसारित आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम से श्रोताओं से की गई आत्मीय बातचीत बेहद पसंद आई। कार्यक्रम में अपनापन, सहजता और मधुर गीतों का सुंदर समावेश सुनने को मिला, इसके लिए तरुण जी को शुभकामनाएं।

इसी प्रकार 5 मई को प्रसारित आपकी पसंद कार्यक्रम में मृदुल गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत श्रोताओं की पसंद के गीत सचमुच बहुत अच्छे लगे। उन गीतों से मन को प्रसन्नता और सुकून मिला। साथ ही विचार बिंदु कार्यक्रम में विचार शीर्षक पर विजय जी के विचार अत्यंत प्रभावशाली, प्रेरणादायक और नई दिशा देने वाले लगे। 7 मई को प्रसारित बैठक कार्यक्रम में सरगुजा पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल जी से प्रमेंद्र कुमार जी की बातचीत बेहद प्रेरणादायक लगी। पूरी चर्चा ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ समाज के लिए सकारात्मक संदेश देने वाली रही। एक छोटा सा

0: राजेश अग्रवाल जी से परमेंद्र कुमार जी की बातचीत बेहद प्रेरणादायक लगी। पूरी चर्चा ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ समाज के लिए सकारात्मक संदेश देने वाली रही। एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि कार्यक्रमों के बीच में उद्घोषक की आवाज के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है उसका स्तर थोड़ा धीमा रखा जाए ताकि उनकी आवाज और अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। कई बार संगीत थोड़ा ऊंचा होने के कारण आवाज सुनने में थोड़ा सा व्यवधान महसूस होता है। यदि उसका लेवल थोड़ा कम रखा जाए तो कार्यक्रम सुनने में और आनंद बढ़ जाएगा।
1: जी प्रिय श्रोता, राजकुमार निबवानी जी और आपके सभी मित्रगण, सभी परिजन, आप सभी को हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपका जो ये संदेश है और संदेश में कार्यक्रमों के प्रति आपका गहरा जुड़ाव जो झलक रहा है, ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। आपने 4 मई को प्रसारित आपकी बात, आपके गीत कार्यक्रम को सुना है और हमारे तरुण जी के लिए प्रशंसा भरे शब्द लिख भेजे हैं
0: जी।
1: आपको ये कार्यक्रम पसंद आई, ये हमारे लिए खुशी की बात है। इसी तरह 5 मई को प्रसारित आपकी पसंद कार्यक्रम में मृदुल गुप्ता जी के लिए जो आपने शब्द लिख भेजे हैं और ये जानकर हमें अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम भी आप पसंद किया है आपने। विचार बिंदु बैठक तमाम कार्यक्रमों को आपने सुना है और सराहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने बैकग्राउंड म्यूजिक के स्तर को लेकर जो सुझाव दिया है
0: जी,
1: अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और श्रोताओं की सुविधा और बेहतर श्रवण अनुभव ही हमारे लिए सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है और आपके सुझाव पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। अंत में यही कहेंगे कि आपका यह स्नेह, विश्वास, सजग सहभागिता ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है, हम सभी को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी अपनत्व के साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रसारण को। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए और अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: अगला पत्र आया है जे लोड रायगढ़ से, लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नरेंद्र कुमार तिवारी और महेंद्र कुमार तिवारी। ये लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर केंद्र के सबसे प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद कार्यक्रमों में बैठक का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिसका प्रमुख श्रेय परमेंद्र जी को जाता है। 7 मई को गुरुवार को प्रसारित बैठक कार्यक्रम में सरगुजा जिले के IPS अधिकारी राजेश अग्रवाल जी से परमेंद्र सर जी की बातचीत अत्यंत प्रेरणादायक लगी। पुलिस विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियों से लेकर समाज, परिवार और जमीनी स्तर की जानकारी सुनना बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार तिवारी जी को, आपने बड़ा ही आत्मीय शब्द लिख भेजे हैं हमारे इस कार्यक्रम के लिए और हम यही कहेंगे कि आप इसी लगन के साथ, इसी प्रेम से सुनते रहिए और अपनी बातें हम तक लिखकर भेजते रहिए। आज के इस पत्र के लिए धन्यवाद और समय का अभाव है इसलिए हम बहुत विस्तार से आपके इस पत्र पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल धन्यवाद देते हैं और तरुण जी अब समय हो चला है कि हम अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम का पता और ईमेल एड्रेस बता दें।
0: जी हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी पत्री द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, आकाशवाणी अंबिकापुर छत्तीसगढ़, पिन है 497001।
1: और इसी के साथ PH अंबिकापुर एयर पर भी आप अपनी बातें हम तक लिख भेज सकते हैं। तो श्रोताओं, आज के चिट्ठी पत्री के इस अंक से मुझे यानी परमेंद्र कुमार को
0: और तरुण को
1: दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। और जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में करीब 125 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2,300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। सभी जोड़े अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करेंगे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये आयोजन सामाजिक समानता, सम्मान और

0: एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनी है। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रुपए की सहायता दी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग ने समारोह के लिए सभी जिलों में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के दौरान कई छात्रों के अंकों में 20 से 40 तक की बढ़ोतरी सामने आई। इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए मंडल ने जांच के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की है। मंडल ने संबंधित शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की भी अनुशंसा की है। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में गड़बड़ी उजागर हुई है। जिले के 3 धान खरीदी केंद्रों कीरित, कड़ारी और बिर्रा में करीब 4,700 क्विंटल धान का गबन किया गया है, जिसकी कीमत 1,29,00,000 रुपए बताई जाती है। मामले के सामने आने के बाद 3 थानों नवागढ़, बिर्रा और बाराद्वार में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल शामिल हैं। ये सभी 7 आरोपी फरार बताए जाते हैं। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वनमंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी। जांच समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए। वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित शासकीय मेडिकल कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कर रहे हैं, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हो रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। सक्ती जिले के नंदेली गांव के बस स्टैंड के पास कल देर रात 2 वाहनों में भिड़ंत होने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं आमाकोनी गांव के सरपंच ओमकार चंद्रा सहित 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई और जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में करीब 1,25,000,000 रुपए की गड़बड़ी के मामले में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण रायपुर केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध

0: सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
0: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
0: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
0: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
0: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
0: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
0: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है। और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं है ना रोचक बात, यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी।
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
0: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
0: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
0: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे

0: थान का नाम बताइए।
1: 8800044559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात

0: ಬಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಜಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉತ್ತಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೇ ತವ ಶುಭಯಾಶಿಷ ಮಾಗೇ ಕಾಹೇ ತವ ಜಯ ಗಾಥಾ ಜನಗಣ ಮಂಗಲ ದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ.
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत

0: समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी।

0: अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार

0: अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चयन कार्यक्रम। नमस्कार वंदन अभिनंदन साथियों, हृदय की गहराइयों से आप सभी का इस मधुर सुकून से भरे पल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण। साथियों, आज की इस खूबसूरत बेला को नमन करते हुए मन में एक सुंदर सी शांति और मिठास महसूस हो रही है, जैसे प्रकृति खुद कोई मीठी धुन गुनगुना रही हो। और इसी मधुर एहसास के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम चयन। साथियों, आज चयन में मेरा चुनाव एक ऐसे शब्द पर आकर ठहरा है जिसके बिना ना रात की कहानी पूरी होती है, ना ही बचपन की वो प्यारी प्यारी लोरी।

एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में जैसे दूधिया चांदनी उतर आती है और दिल एक अजीब सी ठंडक, एक सुकून से भर जाता है। अब जरा आप भी सोचिए, महसूस कीजिए उस एहसास को और अंदाज़ा लगाइए आखिर वो शब्द कौन सा हो सकता है। और अगर अभी तक आप उस शब्द तक नहीं पहुंच पाए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब समय है एक ऐसे गीत का जो शायद आपको उस शब्द तक बहुत ही खूबसूरती से पहुंचा दे। तो तैयार हो जाइए इस मधुर सफ़र के लिए, जहां गीत भी होंगे, एहसास भी होंगे और शब्दों की वो मिठास भी जो दिल को छू जाए।

तो साथियों, अब समय है आप सबको उस सुंदर शब्द से परिचय कराने का। आज हम बात कर रहे हैं चांद की, वो चांद जो आसमान का गहना भी है और हमारे एहसासों का आईना भी। दोस्तों, आज के सफर में हम चांद को सिर्फ एक खगोलीय पिंड या एक उपग्रह नहीं समझेंगे, बल्कि एक ऐसे साथी के रूप में महसूस करेंगे जो हर रात हमारे साथ चलता है, हमारी खामोशियों को समझता है। तो चलिए चांद के इस अनोखे सफर को कुछ दिलचस्प वैज्ञानिक सच्चाइयों के साथ आगे बढ़ते हैं। चांद हमें सिखाता है खामोशी की ताकत। विज्ञान कहता है कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती। अगर आप वहां चिल्लाएंगे भी तो पास खड़ा व्यक्ति आपको सुन नहीं पाएगा, वहां सन्नाटा ही संगीत है। लेकिन जरा सोचिए, इतनी खामोशी के बावजूद भी चांद पूरी दुनिया से संवाद करता है बिना कुछ कहे। वो अपनी चांदनी से हर दिल तक पहुंच जाता है, हर एहसास को छू जाता है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो खामोश रहकर भी सबसे ज़्यादा सुना जाता है, सबसे ज़्यादा महसूस किया जाता है। तो आज रात को आप अपने घर की छत पर जाएं, तो एक पल के लिए उस सफ़ेद चमकते हुए चांद को गौर से देखिए। वो हमें सिखाता है कि अंधेरों के बीच में भी अपनी चमक कैसे बनाए रखनी है। वो हमें सिखाता है कि भले ही हम हर दिन एक जैसे न दिखें, पर हमारा वजूद हमेशा रोशन होना चाहिए चांद की तरह।

0: जी हाँ दोस्तों, मेरा भी एक ख्वाब है कि अपनी बातों से आप सबका दिल हमेशा जीतता रहूं, उस चांद की तरह जो अपनी रोशनी से सबको प्रकाशित करता रहता है।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
0: विज्ञान की एक बड़ी दिलचस्प बात, अगर आप चांद पर कदम रखें तो आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। वहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत कम है, यानी अगर यहाँ आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर आप खुद को सिर्फ 10 किलो का महसूस करेंगे। वहाँ चलना नहीं बल्कि उछलना होगा। यहाँ भारहीनता हमें याद दिलाती है कि जब मन खुश होता है और चिंताएं कम होती हैं, तब हम भी हवाओं में तैरते हुए से अपने आप को महसूस करते हैं। चांद हमें हल्का रखना सिखाता है, इसी हल्केपन को हम वहाँ महसूस करते हैं। चांद की चर्चा हो और इंतजार का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? चांद सिर्फ आसमान का एक मुसाफिर नहीं है, ये वो गवाह है उन अनगिनत आँखों का जो सारी सारी रात छत पर जागकर किसी की राह तकती हैं। गुलजार साहब जी की वो लाइनें याद आती हैं, रात पश्मीनी की, रात भर हाथ आती रही, चांद के माथे पर यादों की जो पट्टी बांधी थी वो खुलती रही। वाकई चांद कभी यादों का दरिया बन जाता है तो कभी उम्मीद की एक पतली सी लकीर। हमारे देश की संस्कृति में चांद सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, पूजने की भी है। करवा चौथ का वो छलनी से देखे जाने वाला चांद या ईद का वो बारीक सा चांद, ये चांद ही है जो रिश्तों में प्यार की मिठास और दिलों में इबादत का नूर भरता है। कभी ये सब्र का प्रतीक है तो कभी खुशियों के पैगाम का। चैन कार्यक्रम में आज इस मंच में बस यही कहूँगा, अपनी शख्सियत को भी उस चांद की तरह बनाइए। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो दूसरों से रोशनी लेता है, लेकिन दुनिया को रोशनी देने में कभी पीछे नहीं रहता।

हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, जहां हम खुशियां कहीं से भी बटोरें पर उन्हें बांटने में कभी भी कंजूसी न करें। दाग चांद पर भी है और दाग जिंदगी में भी, पर खूबसूरती इस बात में है कि आप उन दागों के बावजूद कितना जगमगाते हैं और अपनी बातों से कितना लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खरखर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब
1: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।

0: उद्धू एंटीना नहीं अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
1: मतलब?
0: मतलब अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
1: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
0: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
1: अच्छा तो अभी ट्यून करता हूँ
3: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।

श्रोताओं, जैन में आज एक दिलचस्प जानकारी भी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हम जमीन से चांद का हमेशा एक ही चेहरा देख पाते हैं, उसका दूसरा हिस्सा हमेशा हमसे ओझल रहता है, ठीक हमारी जिंदगी की तरह। हम भी दुनिया को अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं, जबकि एक हिस्सा यादों के अंधेरे में कहीं छुपा होता है। पर चांद की खूबसूरती यही है कि वो अधूरा होकर भी सुंदर है और दागदार होकर भी बेमिसाल है। तो चलिए चांद के इस हसीन सफर को एक और खूबसूरत नगमे के साथ आगे बढ़ाते हैं। आप बस महसूस कीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर, जहां जैन कार्यक्रम के शब्दों के चुनाव में छुपा हुआ है चांद।

0: चयन कार्यक्रम में आज श्रोताओं के लिए एक छोटा सा संदेश। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ऊपर देखना भूल गए हैं। आज रात जब काम से लौटें तो 5 मिनट के लिए मोबाइल की स्क्रीन बंद करके आसमान की ओर देखिएगा। वो चांद वहाँ हजारों सालों से है, बिल्कुल शांत। ये याद दिलाने के लिए कि खामोश रहकर भी रोशनी फैलाई जा सकती है। तो आप भी अपनी बातों से, अपनी मुस्कुराहट से रोशनी फैलाते रहिए, किसी को अपना बनाते रहिए उस चांद की तरह।
1: बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
2: बेबी को बेस पसंद है।
3: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:15 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
2: बेबी को बेस पसंद है।
0: आज चयन कार्यक्रम में बस इतना ही। आज इस कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों के गीत शामिल किए इस प्रकार हैं, लव मैरिज, यश बॉस, जख्म और सपने। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने

0: बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी हिंदी समाचार आप दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। मीडियो वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय है जैविक कीट नियंत्रण।
2: किसान भाइयों और बहनों, आज की खेती की एक बहुत बड़ी समस्या है कीट और रोग, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है हमारे समाधान का तरीका। आज हम कीट का जवाब रासायनिक दवा से लेने लगे हैं, पर क्या आपने कभी गौर किया है, हर साल दवा की मात्रा बढ़ रही है, लागत लगातार बढ़ रही है और फिर भी कीट खत्म नहीं हो रहे। इसका मतलब साफ है, हम समस्या को नहीं सिर्फ लक्षण को दबा रहे हैं। अब समय है खेती को प्राकृतिक संतुलन की ओर ले जाने का। इसलिए कीट दुश्मन नहीं है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें एक सोच बदलनी होगी। हर कीट नुकसानदेह नहीं होता, कुछ कीट फायदेमंद भी होते हैं जो दूसरे कीटों को खाते हैं। अगर हम हर कीट को खत्म कर देंगे तो प्राकृतिक संतुलन टूट जाएगा और समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए कीट नियंत्रण, ना कि पूर्ण नाश। प्रमुख जैविक उपाय कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि नीम आधारित समाधान, जिसे प्राकृतिक रक्षा कवच कह सकते हैं। नीम को यूं ही प्राकृतिक कीटनाशक नहीं कहा जाता, यह कीटों के अंडे देने की क्षमता को कम करता है, खाने की प्रक्रिया को बाधित करता है और उनके जीवन चक्र को तोड़ देता है। इसके उपयोग का तरीका बड़ा आसान है। 5 मिलीलीटर नीम तेल, उसमें 1 लीटर पानी मिलाइए, हल्का साबुन मिलाकर छिड़काव करें। हर 7 से 10 दिन में एक छिड़काव बहुत प्रभावकारी होता है।

0: दूसरा उपाय है लहसुन मिर्च अदरक घोल, ये तीखा सुरक्षा तंत्र कहलाएगा। यह घोल कीटों के लिए बहुत तीव्र होता है लेकिन फसल के लिए सुरक्षित रहता है। इसकी तैयारी की जा सकती है, लहसुन हरी मिर्च और अदरक को एक साथ मिलाकर पीसें, पानी में मिलाकर 24 घंटे रखें, छान कर छिड़काव करें, यह रस चूसने वाले कीटों पर असर करता है। तीसरा उपाय है छाछ यानी मठा और गौमूत्र। छाछ फफूंद रोगों को रोकता है, गौमूत्र पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसलिए 1 लीटर छाछ में 10 लीटर पानी मिलाइए या 1 लीटर गौमूत्र में 10 लीटर पानी मिलाइए। नियमित छिड़काव से पौधे मजबूत होते हैं और रोग कम लगते हैं। जैविक घोल जीवामृत या दशपर्णी अर्क से भी हम समाधान कर सकते हैं। ये सिर्फ कीटनाशक नहीं बल्कि मिट्टी और पौधे दोनों को मजबूत करने वाले घोल हैं। दशपर्णी अर्क बनाने के लिए 10 पत्तियों से बना हुआ अर्क बनाया जाता है। जीवामृत गौमूत्र गोबर गुड़ बेसन से तैयार किया जाता है। ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं जिससे कीटों का असर अपने आप कम हो जाता है। पांचवी तकनीक है ट्रैप तकनीक यानी कीटों को फंसाने से। इसमें जो तकनीक उपयोग में लाई जाती है, पहला है पीले स्टिकी ट्रैप, सफ़ेद मक्खी माहू को पकड़ते हैं। दूसरा उपाय है फेरोमोन ट्रैप, नर कीटों को आकर्षित कर प्रजनन रोकते हैं। इससे कीटों की संख्या शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित हो जाती है। छठवां उपाय है मिश्रित खेती और सह फसल। एक ही फसल एक ही तरह का कीट का हमला, ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर हम मक्का और दाल या कपास और मूंग जैसी मिश्रित खेती करते हैं तो कीट भ्रमित होते हैं और फैलाव कम होता है। इसके अलावा एक और उपाय है लाभदायक कीटों का संरक्षण। लेडी बर्ड बीटल ट्राइकोग्रामा, ये कीट हानिकारक कीटों को खाते हैं। रासायनिक दवा इनको भी मार देती है, इसलिए जैविक खेती में इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। किसान भाइयों और बहनों, हर 2 से 3 दिन में खेत का निरीक्षण करें। अगर कीट शुरू में ही दिख जाए तो हल्के उपाय से नियंत्रण हो जाता है। देर होने पर ही महंगी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा नाइट्रोजन देने से कीट ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा पानी से भी रोग बढ़ते हैं, इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय था जैविक कीट नियंत्रण। मीडियो और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

हमर घर गोसाई सुने वाला जम्मो भैया बहनी सयान लइका छौआ जम्मो संगवारी मन ला लाली बहन के रहले राम राम जय जोहार। और बहनी हो का काम बूता करत हा? देखी कि भाई बहनी मन आजकल काम बूता ला उसराए के आओ बैठे रहते हैं बढ़िया, और हमर कार्यक्रम ला भी सुनते हैं और हमन ला भाई लिख के भी मेल भी भेजता है, बहुत बढ़िया लगता है हमर कार्यक्रम से जुड़ता है। आओ देखी हमन यही कथी कि हमर जो मौसम है बदलत है, अभी देखी कि कहीं कहीं पानी भी आता है तो थोड़ा सा गर्मी से राहत भी हमन ला मिली से, लेकिन देखी ये मौसम में सयान और नान नान जो शिशु मन है उमन कर तीहा जतन जरूर करी, और लेका मनला अभी घाम में आमा तरफ जाए लथे एकदम आमा थोड़े थोड़े गिरेल जहाँ हवा ही नहीं कि लेका मन बदबदाए के वही कदे कुदत कुदत चल जाही, तो मनला समझाना है घर में रहना है। देखी बहनी हो हमर ज़्यादा से ज़्यादा लेका मन माँ के साथ ही रहते हैं और हमर

जैसे हमन पहले से सुनत आता ही कि माँ हर ना अपन लइका मन के पहला गुरु है, तो हमन ला छोटे से ही अगर हमन लइका मन में अच्छा संस्कार डालब तो आगे आए वाला समय में हमर लइका जरूर हमर नाम रोशन करी, हमर परिवार कर, हमर देश कर नाम गलोला रोशन करी। और का बेटा और का बेटी, अब तो बेटी मन भी बहुत आगू बढ़त हैं। और देखिए हमर गांव गाँव में भी बहनी मन जागरूक होइन हैं और बेटी मन ला भी पढ़ाता हैं, हर क्षेत्र में आगू जाता हैं लइका मन। तो देखिए लइका मन कर परवरिश करी बढ़िया प्यार से प्रेम से समझाए बुझाए के हमन अगर मन ला बढ़िया शिक्षा देहता ही तो घर से ही लइका मन अच्छा संस्कार ला सीखी। भले भाई कही कि हमन लइका मन अगर कमजोर हैं पढ़ाई लिखाई में तो भले कम पढ़े लिखे, लेकिन अगर हमन उमन के संस्कार देहब तो मन जरूर अपन जिंदगी में कुछ न कुछ करके आगू बढ़ जाही। और देखिए माँ कर पहला ही काम यही है कि भाई उमन ला प्रेम से समझाए बुझाए के। आजकल हमन देखती कि जो हमार किशोरावस्था के लइका मन हैं, कहीं कहीं सुने में हमन ला आते कि कोई बहनी मन कथे कि हमन ला बात ला नहीं मानेल, हमार दाई ददाऊ मन ला हमार मुँह जोरी करते, हमन ला जवाब देते चाहे बात ला नहीं मानता है, तो गाड़ी चलाए बर जिदा करता है चाहे मोबाइल देखे बर जिदा करता है। तो ये सब चीज़ से हमन उमन कर परवरिश अगर अच्छा से करब तो बहुत सारा चीज़ हमार लइका मन सीखे। जो भी हमार लइका अगर किशोरावस्था में है तो उमन कर दोस्त जैसे बन के हमन उमन ला अगर सिखाब तो हमार बात ला जरूर मानी और अच्छा रास्ता में जाही। और सबसे बड़ा चीज़ है कि लइका मन ला छोटे उम्र से मोबाइल और ये सब चीज़ है आजकल जो मीडिया कर वो सब चीज़ से दूर रखना, कहे कि कम अवस्था में उमन बहुत सारा ऐसा चीज़ ला भी जानते जिला समझे बुझे कर तो उमन कर कुछ भाई विचार चाहे उमन कर बौद्धिक विकास नहीं हो से तो गलत रास्ता में भी चल जाते हैं। तो ये सब चीज़ में हमन ला अपन लइका मन के जासूस जैसे भी बन के रहना है, दोस्त जैसे तो रहना ही लेकिन ये भी देखना है कि ओकर संगति कैसा है, कैसे मन के संगे रहता है, स्कूल बढ़िया से जाता है कि नहीं जाता है। और भाई सब चीज़ ला ध्यान भी देना है और प्रेम से समझाब तो हमार लइका में जरूर हमन ला समझी। और सबसे दूसरा जरूरी बात है कि अगर हमन लइका मन ला हमन जैसे चाहती कि हमार लइका बढ़िया और सुघर होए तो पहले हमन ला खुद बनना पड़ी। हमार लइका जितना पढ़ लिख के नहीं सीखी उतना हमन ला देख के सीखेल, नान से ही हमार लइका मन हमन ला देख के जैसे सीखते हैं तो हमन खुद अच्छा भाई व्यवहार करता ही घर में अच्छा व्यवहार अच्छा बातचीत करी गाली गलौज झेन करी कुछ भी चीज़ नशा पत्ती ला अपन घर परिवार से दूर रखब तो हमार लइका मन भी जानी कि ये हमार गलत चीज़ हवे तो जरूर मन आगे चल के अच्छा बनही। नान नान लइका मन ला हमन हमेशा कहत रहती कि भाई कहानी के माध्यम से भी हमन नैतिक शिक्षा उमन के दिमाग में भर सकता ही, खेल के माध्यम से भी हमन उमन ला और उमन कर पोषण का ध्यान दे। बहन आजकल लिघे लिघे आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र है, उमन ला शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखी और बौद्धिक रूप से भी उमन ला बढ़िया रखी। तो देखी कि हमन अगर अपन लइका मन ला समझ बूझ के प्यार से प्रेम से संस्कारी बराब तो बहुत सारा समाज कर बुराई हमार ऐसे ही खत्म हो जाही और हमार लइका मन भी सुघर और सुंदर बनी और आगे बढ़ी। और आज 8 मई के रेड क्रॉस दिवस भी एक खास दिवस है जो कि हमार ऐसा संस्था है जो कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हमार देश में जो भी परेशानी होएल चाहे कुछ भी युद्ध होता है चाहे प्राकृतिक आपदा आएगी से चाहे बाढ़ आई से कहीं चाहे कहीं महामारी आए से कहीं कुछ ऐसे माने मुश्किल के समय में ये संस्था है वो निष्पक्ष रूप से कार्य करेल और सहायता करेल। एकरे बर एकर जागरूकता बढ़ाए बर और जो रेड क्रॉस से जुड़ल हमार सदस्य मन हैं उमन कर कार्य ला देख के उमन कर प्रति सम्मान जगाए बर ये दिन ला हमन आज के दिन ला मना थी। और एकर सबसे पहले रेड क्रॉस दिवस के संस्थापक और शांति के पहला नोबल पुरस्कार जो मिलिस जीन हेनरी ड्यूनेट उनकर जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमन मना थी। ये दुनिया कर सबसे बड़ा स्वतंत्र और भलाई कह सकता ही चाहे निष्पक्ष रूप से भलाई करे पर तत्पर सेवा करे पर तत्पर हमारा ऐसा संस्था है जो कि बुरा समय में हमार देश कर सहायता करे पर हमेशा इस संस्था के मन तैयार रहते हैं पूरा विश्व में है। एकर सदस्य हमन भी बन सकता ही इमें जुड़ सकता ही। देखिए मुश्किल समय में ही इंसानियत कर सबले बड़ा पहचान होते और हमार दू

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हाँ तो संदेश ला भी सुनें और हमार छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला लाने रहन ममता चंद्राकर और संगतामन कर गाल ओला भी सुनें। अब देखिए आज शुक्रवार है और हमार धरोहर में हमन खास जानकारी रा लेकर आन थी, तो आज में जो लाने हो हमार क्षेत्र के हमार सरगुजा क्षेत्र के नृत्य जो भी कला है नृत्य कला हमार ओकर बारे में जानकारी। देखिए हमार जो क्षेत्र है जो सरगुजा क्षेत्र है वो पहले से ही बहुत ही यहाँ के प्राचीन जो हमर सांस्कृतिक जो नृत्य है कला है ओहर पहले से ही बहुत समृद्ध है और बहुत सुघर है और देश में ही नहीं बल्कि विदेश में ही अब एकर नाम होता है और जगह जगह बड़ा बड़ा जब महोत्सव होता है तो हमर क्षेत्र के भी जो नाच है नृत्य है वहाँ पूरा जाके वो प्रदर्शन करता है और बहुत बढ़िया हमर क्षेत्र के नाम हर रोशन होता है, तो एकर बारे में हमनला जानना भी चाहिए और लड़का मनला भी हमनला जरूर सिखाना चाहिए। और अगर हमर क्षेत्र में ऐसा चीज़ नहीं होता है तो आसपास के क्षेत्र में अगर हमनला होता है पता चलिस तो हमन जाके देख के और हमन ओकर बारे में भी देख सकता ही जान सकता ही कि हमन कैसे है हमर क्षेत्र के चीज। तो देखिए यही में जो हमर सरगुजा क्षेत्र के जो ये नृत्य कला है बहुत ही सुंदर और लोक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करल जाए और यहाँ के नृत्य मुख्य रूप से कृषि और हमर प्रकृति और कई ठन त्यौहार पर्व उत्सव से जुड़ल रहते और कई ठन भाई नृत्य है एकर जैसे कि प्रकार ला अगर हमन कहब तो देखी कर्मा नृत्य होते जो कि हमर क्षेत्र का सबसे प्रमुख नृत्य है और ये हमार मानल जाते कि कर्मदेव जो हमार भाग्य ला लिखते हैं हमार भाग्य के देवता होते हैं उनके प्रसन्न करे बर ये नृत्य ला करल जाते और फसल कटाई और विशेष पर्व के अवसर पर भी मन से मन महिला मन बहनी मन भैया मन सामूहिक रूप से मिलजुल के और ये कर्मा नृत्य ला करते बहुत ही बढ़िया लागते बढ़िया ढोल झांझ मांदर बाजत रहेल और बहनी मन सिकरी जोराए के वो पारंपरिक सुघर सुघर मधुर मधुर आवाज से गीत भी गाते हैं हमर पारंपरिक और भैया बहनी मन मिल के और कर्मा नृत्य ला करते हैं और कर्म देवता कर्म डाल गाड़ के पूजा भी होते ओला और नृत्य भी करल जाते और बहुत ही सुंदर लगते प्रदर्शन ला देखे बर। और दूसर है हमर शैला नृत्य, ये नृत्य मुख्य रूप से भाई जो भैया मन है उमन के द्वारा फसल कटाई के बाद अगहन मास में करल जाते और एकर मुख्य है कि जैसे डंडा के माध्यम से कर उपयोग करते हैं डंडा के द्वारा डंडा ला दो डंडा दोनों हाथ में पकड़ के बड़ा रंग बिरंगा सुघर वाला सजाए रहते हैं वो खुद भी भैया मन बड़ा बढ़िया पारंपरिक जो वेशभूषा है ना बड़ा सुंदर है रंग बिरंगा धोती पहने रही और कलगी मारे रही और ओकर बाद बढ़िया कुर्ता पहने रही रंग बिरंगा इतना सुघर और इतना बढ़िया डंडा ला बजाए बजाए के डंडा नाच करते ना ऐसा नृत्य तो वो बहुत ही बढ़िया लगते देख के मन हर बिल्कुल प्रसन्न हो जाते इतना मनोरम और इतना बढ़िया लगते कि लगेल कि देखत रही हमन और बहुत ही बढ़िया वाद्य यंत्र भी रहते भाई मांदर रहेल ढोल रहेल डिमकी रहेल घुंघरू रहेल उमन कर आवाज़ और ये मन कर डंडा कर सैला कर नाच इतना बढ़िया लगते कि देखे में ही बहुत अच्छा लगते और एक कई ठन प्रकार भी है बैठकी सैला रहते थरथरी सैला रहते और शिकारी सैला तीन प्रकार कर रहते जो कि प्रस्तुति में थोड़ा थोड़ा सा अलग रहते बस। और फिर अगला जो है वो सरहुल नृत्य रहते ये मुख्य रूप से हमर क्षेत्र कर जब साल वृक्ष जो सरई पेड़ रहते ना ओकर फूल जब आए लगते चैत पूर्णिमा के आसपास कर समय होते शायद वो समय जब सरई कर फूल मन खिलही वही समय इला समूह रूप से करल जाते यह भी नृत्य भाई बसंत ऋतु और प्रकृति के पूजा बर के रूप में बड़ा ही उल्लास ला अपन खुशी ला प्रस्तुत करे बर ये नृत्य ला करल जाते ये में भी बहुत बढ़िया लगते देख के। और होते सुआ नृत्य मुख्य रूप से हमार नान नान लड़की मन बहनी मन के द्वारा लगभग दिवाली के समय सुआ नृत्य ला करल जाते सुआ के मतलब

सब होते कि तोता, और जो कि ओ तोता जो होते हम जानती कि भाई देखी प्रकृति से जुड़ल है, पशु पक्षी से जुड़ल है, पर्व से जुड़ल है, हर माध्यम से हमार नृत्य कला भी, हमार क्षेत्र का नृत्य कला भी हमन ला कहीं ना कहीं प्रकृति से जोड़े बर सिखाते, उकर सम्मान करे बर, ताकि हमन उमन ला हानि न पहुँचाई। तो यही में काट के जो तोता बनाल रहते हैं सुआ, वो बड़ा बढ़िया सजाए रहते हैं ओला, और मुड़ी में डोए के और नाची, और छोटे छोटे नान नान लड़की मन बड़ा सुघर सुघर साड़ी पहन के तैयार हो के, बहनी मन बड़ा सुघर सुघर इतना बढ़िया नाची एला और गाना गाही पारंपरिक, इतना बढ़िया लगते कि का कहिया। ओकर बाद जगह जगह जाके उमन ला भाई गांव में जब नाच के उमन निकल ही लड़की लड़की मन बहनी मन छोटे छोटे हमारे बहन बेटी मन, तो उमन ला कुछ कुछ उमन देते भी खुशी से, फिर उमन एकर ला जो भी मिलेल ओकर से उमन थोड़ा पिकनिक मनाए, जैसे थोड़ा अपन खुशी ला जाहिर करही, बनाही खाही खुशी मनाही, सांझ के दिन भर नाच नाच के बड़ा खुश होही सुगर ले नाची। और एक ठन रथे दमकच, ये मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर, शादी के अवसर पर ये नाच ला करल जाते हमर क्षेत्र में, और विशेष रूप से बारात के जाए के बाद और विदाई के समय बहनी मन ये नाच ला करते, बहुत ही बढ़िया रहते। मांदर झांझ टिमकी ढोल घुंघरू इतना बढ़िया वाद्य यंत्र मन बाजत रही और नाचत रही, पूरा आभूषण से खुश हो के, और हर प्रकार के नृत्य कोई न कोई प्रकार से हमार खुशी ला जाहिर करता है, प्रकृति से जोड़ता है, हमार समाज ला कर पारंपरिक हमार जन जीवन ला बताता है। तो बहुत ही सुगर हमार क्षेत्र कर नृत्य है, ये हमार धरोहर है। चलिए अब हमन एक ठन भोजपुरी लोकगीत ला सुनी, राम ललू पांडे और संगता मन कर गाल।

हाँ तो सुघर एकन भोजपुरी गीत लासुन एन रामलल्लू पांडे और संगता मनकर गाल रहीस। बहनी हो देखी हमर बहनी मन ला घर के काम के साथ साथ फूल पौधा बहुत बढ़िया लागते हो। हमर बहनी मन बहुत सुघर अपन घर आंगन ला सजाइन भी हैं। तो सही बात हवे, अगर हमन अपन घर में छोटा सा बगीचा बनाब उमें तुलसी लगाती पुदीना लगाता ही छोटा छोटा पौधा भी लगाता ही तो हमर स्वास्थ्य पर भी अच्छा है, हमर प्रकृति पर भी अच्छा है और देखी हमर लइका मन भी बहुत अच्छा आदत ला सीखी। एक तो सुंदरता भी बढ़ेल और देखी कि ओकर साथ साथ में हमन एकर लाभ ला लेके स्वस्थ भी रह सकती। तुलसी बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक भी हमन अगर लगाए सकता ही अपन घर आंगन में तो बहुत ही स्वास्थ्य पर भी अच्छा है, यहाँ तक कि कैंसर जैसा रोग से भी हमन ला दूर रखते। और नीम भी देखी हमर बहुत सारा दवाई बर बहुत बढ़िया होते हैं और हमारे अंगना में अगर नीम कर छाए और नीम कर हवा है तो कथें कि हमर सयान मन की हमर घर से रोग हर दूर रही। तो ऐसे ही हमन अपन गृह वाटिका ला अपन घर के बाग बगीचा ला सजाए के लाभ भी प्राप्त कर सकता ही और स्वस्थ भी रह सकता ही। चलिए अब एक ठन सरगुजिया लोकगीत ला सुनी इंद्रमणि दास और संगता मनकर गाल।

हाउ तो इंद्रमणि दास और संगता मन कर गाल ए ही सुघर एकन सरगुजिया लोकगीत के साथ अब एकदम विदा लेह के भी बेरा होगीस। तो फिर भेटा हूँ लाली बहिन ला दे विदा। स्वस्थ रही, खुश रही, खुशियाँ बाँटत रही। राम राम, जय जोहार।

अभी ग्रामीण महिलाओं के लिए घर गोसाइन कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए ईमेल की गूंज कार्यक्रम।

नमस्ते, आदाब और आप सभी को छत्तीसगढ़िया जय जोहार। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण और लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम ईमेल की गूंज। दोस्तों, वक्त बदला, अंदाज बदला और रेडियो की चिट्ठियों के पते भी बदल गए। पहले जो जज्बात कागज़ की खुशबू में सिमटे होते थे, आज वो डिजिटल स्क्रीन पर आपके नाम के शब्दों की गूंज बनकर हम तक पहुँचते हैं। लेकिन यकीन मानिए, उन शब्दों में छिपी हुई भावनाएं आज भी उतनी ही सच्ची और उतनी ही गहरी है, क्योंकि इन शब्दों के रूप में लिखा होता है आपका नाम, आपका वो निस्वार्थ प्यार, आपका वो स्नेह जो भर भर कर आप हम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस कार्यक्रम से संबंधी एक सूचना दे दूं। श्रोताओं के ईमेल की गूंज में अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, वहां प्रोफाइल में सबसे ऊपर पिन किए गए पोस्ट को देखें, उस पोस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। गूगल फॉर्म खुल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी फरमाइश हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए फरमाइश को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए जरूर प्रस्तुत करेंगे। कृपया ध्यान रखें कि लिंक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक

चालू रहता है और इसी दौरान आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और जानते हैं कि हमारे कौन कौन से श्रोता आज पहले गीत के रूप में शामिल हैं। तो सबसे पहला ईमेल आया है ग्राम सोगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां अमरावती से हैं साधना रानी और किशोर गुप्ता, संबलपुर कांकेर से हैं फग्गूराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, अकोला से नकुल भाटिया, सविता भाटिया, गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, और ये ईमेल आया है दरियापुर भावली महाराष्ट्र से। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति, डिकेश साहू, कर्मा चौक लोहारेडी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से हैं अशोक कुमार साहू, लिल्लेश्वरी, खुशांत साहू और निशांत साहू। आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का ये गीत।

कहते हैं कि जो बातें शब्दों से नहीं कही जा सकती वो संगीत कह देता है, और आज आपकी ईमेल्स में भावनाओं का ऐसा ही समंदर उमड़ रहा है। तो आइए अगले गाने में कौन कौन से हमारे श्रोता इस गीत में शामिल हैं जानते हैं। बक्सर से हैं असलम अंसारी, शकील अंसारी और राज एस टी डी अंसारी। डोंडी लोहारा से हैं राधिका जाधव और डोली जाधव। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी और उमा तिवारी। पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश।

राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, देवीगंज रोड अंबिकापुर से ही राजकुमार निबवानी, आकाश कुमार निबवानी, संगीता, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य इस गीत में शामिल हैं। बघेरा दुर्ग से हैं संतोष कुमार नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। साबरगांव महाराष्ट्र से हैं रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे। ये ईमेल आया है परभणी महाराष्ट्र से, लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रूपेश, संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रितेश और पूरा संघाई परिवार। कुरावली से हैं राशिद हुसैन, नसरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। नाईवाला ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिठा, अलका मिठा। रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। रायगढ़ से हैं रोहित, जयलक्ष्मी। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है जोशीला, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आइए श्रोताओं बढ़ते हैं अगले नामों की ओर। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा, जमानिया गाजीपुर से

आइए श्रोताओं बढ़ते हैं अगले नामों की ओर। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा। जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति। खमरिया जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपक साहू। इन्होंने अपने क्षेत्र का पता नहीं लिखा और एक और ईमेल आया जिसमें उन्होंने भी पता नहीं लिखा है और ये हमारे श्रोता साथी हैं नबी हसन अब्बासी, नावेद हसन, सुहेल, याशप अब्बासी, शहनाज अब्बासी, रसीद अब्बासी, शहनाज अब्बासी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा। ग्राम पंचायत खोदला उदयपुर सरगुजा से हैं जीवनधन सिंह पैकरा, धुरनी पैकरा, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा। ये ईमेल आया है नवापारा बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान ताइडे, वसंत राव भोजनी और निर्वृत्ति आडोकार। पलारी से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन। बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता पलक और यश मंसूरी। डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। शास्त्री नगर बीट शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल। अनारकली बाजार जगरांव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। पुराना तालाब डुमराव से हैं वलीउल्ला अंसारी, आसमा नाज अंसारी और बक्सर से हैं शरफुद्दीन अंसारी और इनके साथ हैं मोहम्मद सुल्तान अंसारी। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं चोर पुलिस फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत है आरडी बर्मन का।

आप सबकी ईमेल पढ़कर भी ऐसा ही लगता है कि हम आपसे जुड़ गए हैं। ईमेल में लिखा आपका नाम हम प्यार से पढ़ते हैं ताकि वही प्यार आपकी पसंद का गीत सुनाकर आप तक हम लौटा सकें। कार्यक्रम में अगली पसंद आप सभी श्रोताओं की है। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, असलाम माफ़ कीजिएगा अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल अरहान और मोहम्मद हसनैन पवार। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णो आनंद, सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से हैं शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम और शिवम कोलाम। बोड़सरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू। सेक्टर कुरुक्षेत्र से हैं दीपक डिंगरा, अनुश्री प्रमीला और देवश्री डिंगरा। सहारनपुर से हैं सुरेश डोम और आशु डोम। सारसताल सोनगराज जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। वैष्णव कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीतर राहुल, मन्नत गुरशबाद सिंह राहुल। ये ईमेल आया है मलकापुर से। पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल, नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से नारायण इंगले, आशीष जी का। आइए आप सबको सुनवाते हैं कस्मे वादे फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

जी हाँ दोस्तों, हम भी कुछ कुछ वादे ऐसे ही निभाते हैं ताकि आपके हर ईमेल इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएं आपके नाम के साथ, आपकी पसंद के गीत के साथ। कभी कभी हम दूर होते हैं शहरों से, लेकिन पास होते हैं आपके नाम से, आपकी पसंद से और आपके भेजे हुए हर उस ईमेल से जिसमें अपनापन बिना लिखे ही झलक जाता है, प्यार के साथ आपकी पसंद के गीत के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं रामजद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा बेबी, स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी और पूरा माखीजा परिवार इस गीत में शामिल हैं। ग्राम तारकेश्वरपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल, दक्ष, कुंती, मंगलराम एवं रिद्धि सिद्धि।

दी प्रजापति, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविंद्र और रौनक सेन, इंदिरा चौक तखतपुर से हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, देवरी भाटापारा से हैं की आर साहू आकाश कमलेश गन्नूलाल रजक और मुरली छत्रिय, धनोरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबू, चंदर नगर सहारनपुर से हैं आशा नारंग सोनाली सुरेश नारंग, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर अजय देव, डोली बेबी पूजा तामुरिया राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर, बेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर सुनीता करमकर हार्दिक और प्राची तनु करमकर, कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, जनकपुरी से हैं पिंटू दीवाना रजिंदर सिंह ओबराय। आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं अग्नि परीक्षा फिल्म का ये गीत। आवाज लता मंगेशकर की है, संगीत है सलील चौधरी का, गीत योगेश ने लिखा है।

0: जिन श्रोताओं के नाम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं वो रात का कीजिए इंतजार, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार

0: 16 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के

0: मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
1: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
3: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
3: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
5: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
6: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
3: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक

एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गीत गंधा कार्यक्रम। सुरों की महक, एहसासों की मिठास और गीतों की सुगंध लिए आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम गीत गंधा। इस महकती हुई संगीत भरी महफिल में आप सभी श्रोताओं का दिल से, प्यार से और पूरे अपनेपन के साथ स्वागत है। आज फिर कुछ ऐसे ही गीत गजल सजेंगे जो कभी मुस्कान बनेंगे तो कभी यादों की हल्की सी बारिश। और आज की शुरुआत एक प्यारी सी शायरी के साथ करते हैं। हर गीत में कोई सपना छुपा होता है, हर सुर में कोई अपना छुपा होता है। यूं ही नहीं महक उठती है ये महफिल, गीत गंधा में दिल का रिश्ता छुपा होता है। तो आइए सुरों और एहसासों के इस खूबसूरत सफर में कुछ पल दुनिया से दूर होकर सिर्फ दिल की आवाज सुनते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आप सभी के साथ तरुण। सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली गजल। आवाज जगजीत सिंह की है।

जब भी तेरा खत हाथों में आता है, दिल पुरानी गलियों में लौट जाता है। कुछ लफ्ज मुस्कुरा देते हैं चुपचाप, और कुछ पढ़कर मन भीग जाता है। आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में महक एल्बम से ये गजल। कलाम है नुसरत बद्र का, संगीत है भावदीप उदास का।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हर दिन हमें कुछ एक नया गीत सुनाती है, कभी खुशियों की धुन बनकर तो कभी यादों की हल्की सी सरगम बनकर। और शायद इसी का नाम जीवन है, जहां हर पल को महसूस करना, हर रिश्ते को सहेजना और छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुरा लेना। गीत गंधा भी कुछ ऐसा ही सफर है, जहां गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि दिल में उतर कर एक मीठी सी खुशबू छोड़ जाते हैं। तो आइए कुछ पल अपने लिए चुरा लेते हैं, दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर सिर्फ सुरों और एहसासों के साथ बहते हैं। कार्यक्रम गीत गंधा में

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नैना तो सी लागे जैसे चांदनी रात उतर आई, सोनी सी धड़कनों में कोई सरगम समा गई। आइए सुनते हैं आशा भोसले और गुलाम अली की

0: 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नैना तो सी लागे जैसे चांदनी रात उतर आई, सोनी सी धड़कनों में कोई सरगम समा गई। आइए सुनते हैं आशा भोसले और गुलाम अली की आवाजों में ये गजल।

आशा भोसले और गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ ही गीत गंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए अब आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज की तीसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होती है शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी आप सुनेंगे। इसमें आज आप सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स क्रम। शाम 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गोदली। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम माधुरी। शाम 7:05 पर आनंद लीजिएगा। सुगम संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा का किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। इसमें आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, आजकल लोकगीत, स्मार्ट कृषि, श्री अन्न समृद्ध अन्न पर चर्चा होगी। साथ ही सुनेंगे मंडी भाव, मौसम कर जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। रात्रि 9:15 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग प्रधान। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम मन भावन। ये तो थी श्रोताओं हमारे केंद्र से आज की तीसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

सब संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.02 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर का प्रसारण जारी रहेगा। मिडवे 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.02 मेगाहर्ट्ज पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:03 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, महावीरगंज, कनकपुर, रामपुर, प्रेमनगर, कोटराही, नवापारा, रेवतपुर, कुंदी कला, जामदोहर, अखोरा, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये बंसीपुर, ढोढ़ा गांव, घासीडी, बोड़ा झरिया, दाती ढाप, कंडराजा, चोर की पानी, डांड केसरा, परपटिया, लोटा ढोढ़ी, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, फड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 94 है। ये आम गांव, पोटिया, चैनपुर, रुपुंगा, बनहर, औरानारा, कुड़ुम केला, डोंगा भवना, गलीमार, सारस मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये लबेद और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, नवागांव, चक्रधरपुर, सामारूमा, छर्रा, टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खमहार पाली, पथरी पाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर, डडई पानी, बोतलधारा, खोला पारा, जिडार, सिंहार, छिंदौला, पायली खंड, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये जारंडी, बोडापाला, बेगरपाला

0: हरदी बाय पंडरीपानी नगरार ओड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोड़।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं तृप्ति शाक्या की आवाज़ में गणेश वंदना।

अभी आपने सुना तृप्ति शाक्या का गाया ये गणेश वंदना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में लीजिए सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सुमित टोप्पो के युगल स्वर में ये शिव भजन। लिखा है शेखर अस्तित्व ने और संगीत दिया है मयूरेश पाल ने।

बेला शिंदे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जोधा अकबर फिल्म का ये भक्ति गीत। लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी ए आर रहमान ने। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए सुमंगल अरोरा की आवाज में ये भक्ति गीत।

सुमंगल अरोरा के गाए इस कृष्ण भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 होने को हैं। लीजिए, वक्त हो चला है युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियम और आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम हेलो फ्रेंड्स में और करते हैं आप लोगों से कुछ प्यारी प्यारी बातें और सुनते हैं आपकी फरमाइशों पर कुछ प्यारे प्यारे गीत। हेलो फ्रेंड
1: हेलो फ्रेंड
0: हेलो फ्रेंड्स,

0: स्वागत है दोस्तों आपका क्रम हेलो फ्रेंड्स में। और आइए दोस्तों देखते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। हेलो फ्रेंड्स जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते जी, कौन और कहाँ से
1: बोल रहे हैं? मैं मुन्नालाल पटले बोल रहा हूँ, डोंगरिया मलाजखंड जिला बालाघाट मध्य प्रदेश।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मस्त हैं, आप कैसे हैं?
0: भी अच्छी हूँ जी। मौसम कैसा है अभी उधर का?
1: मौसम उतार चढ़ाव है, कभी बारिश हो जाती है, कभी फिर तूफान चल जाता है, फिर धूप निकल जाती है, सभी मौसम एक साथ चल रहे हैं अभी तो।
0: जी जी जी, और क्या करते हैं आप?
1: जी अभी शादी आए हुए हैं जी, शादी घूम रहे हैं अभी, मित्रों के यहाँ है।
0: जी किसकी शादी है वैसे?
1: एक मित्र की शादी है, यहाँ छत्तीसगढ़ में छह अभी हम लोग।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: जी, अभी तो शादी का मौसम ही चल रहा है जी। आज जी, जी, कौन से गीत की फरमाइश लेके आए हैं आप?
1: आप सुना दीजिए अपनी पसंद में, फिर विवाह से रिलेटेड सुना दीजिए।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हेलो फ्रेंड
3: जी, नमस्कार
2: जी, पूनम जी बात कर रही हैं।
3: जी मैडम जी,
2: जी पूनम जी,
3: मौसम मैडम जी उधर का?
2: मौसम तो गर्मी भी है, बरसात भी है, अब मिला जुला हाँ, मौसम है।
3: इधर भी वैसे ही है मैडम जी, दिन भर गर्मी रहती है, शाम को बारिश होती है आंधी तूफान के साथ।
2: जी जी सेम, यहाँ भी वैसा ही है, दिन में बहुत तेज धूप, फिर अचानक से रात को बारिश।
3: जी मैडम जी, ये सबसे जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं मैडम जी, क्या कर सकते हैं।
2: जी सही कहा आपने, आज के जलवायु परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा हाथ हम इंसान का ही।
3: प्राकृतिक संतुलन हो गया है मैडम जी, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे कट गए हैं।
2: जी
3: और हमारे इधर की बात है तो मैडम जी, हमारे इधर पेड़ वेड़ नहीं कटते मैडम जी, बारह महीना हरियाली रहती है और ठंडक बनी हुई रहती है मैडम जी, इधर पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं लोग।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: जी जी
2: जी पूनम जी, तो आज कौन से गीत की फरमाइश लेके आई हैं आप?
3: हाँ कोई सा भी गीत सुनवा दीजिएगा मैडम जी, उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी का नया गीत, कोई भी आप अपनी मर्जी से।
2: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो फ्रेंड्स, कौन और कहाँ बोल रहे हैं आप?
2: योगेश जांगरे सिरवा बांधवे में तरह से।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है आपसे।
1: और आज पहली बार आपने हमारे कार्यक्रम में कॉल लगाया है?
2: नहीं है, 10 साल से जुड़े हैं।
1: अच्छा जी, और क्या करते हैं आप?
2: खेती बाड़ी का काम।
1: कौन से गीत की फरमाइश लेके आए हैं आप?
2: फिल्म डॉन से सुनवा देंगे।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन।
1: हाँ हेलो फ्रेंड्स जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं नानघाट कातल बोर्ड से बोल रहा हूँ दीदी, भाग से राजपुर
1: जी। कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है दीदी
1: जी। और क्या कर?
2: खेती किसानी का काम करता हूँ दीदी मैं।
1: हाल समाचार कैसे हैं आप?
2: सब ठीक है दीदी।
1: आप हमारे आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम सुनते हैं?
2: फोन इन वाला ज्यादा सुनता हूँ दीदी, क्या है इधर ढंग से नहीं चल पाता। यूट्यूब एक माध्यम से सुनता हूँ, मोबाइल ऐप के माध्यम से
1: जी। अब तो हम FM पे भी अवेलेबल है, तो आप हमें वहाँ से भी सुन सकते
2: हैं। हाँ दीदी
1: जी जी जी जी। कौन से गीत की फरमाइश लेके आए हैं आप?
2: फिल्म गिरफ्तार का सुनवा दीजिएगा, धूप निकला करो रूप की रानी वाला गीत सुनवा दीजिएगा दीदी।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जी हेलो फ्रेंड्स जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं सुपर स्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सुनकर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम रजवाड़ी बात कर रहा हूँ।
0: जी प्रेम साहब जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, गर्मी का बस आनंद पड़ रहा है इधर कहा जाए तो ज्यादातर। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी कहीं भी धूप से बच के रहना चाहिए, और जैसे कहीं भी आना जाना होता है तो अपने साथ पानी बोतल रखना चाहिए और तरबूज खीरा ये सभी का खाते रहना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, खुद को जितना ज्यादा हम हाइड्रेट रखेंगे उतना ही हमें गर्मी से बचाव के लिए अच्छा रहेगा।
1: जी जी जी,
0: जी प्रेम साहब जी, आज कौन से गीत की फरमाइश लेके आए हैं आप?
1: जी कुमार सानू अलके अग्नि की आवाज में आप अपनी पसंद से कोई भी गीत बजा दीजिएगा।
0: अपने दोस्त या परिवार में से किसी का नाम शामिल करना चाहेंगे?
1: जी हमारे दोस्त हैं अरविंद कुमार यादव, विजन सिंह मराबी, राजकुमार नेभवानी, कुलेश्वर राजवाड़ी, मानिक राम प्रजापति खेल, सह सिंह मरकाम और आकाशवाणी अंबिकापुर के समस्त श्रोतागण है।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, अगर आप भी हमें अपने पसंद के गीतों की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक गुरुवार दोपहर 3:30 से 4 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा फोन नंबर है 231-917-231-918। और जो हमारे बाहर के साथी हैं और हमें मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं वो यहाँ का STD कोड लगाना ना भूलें और हमारा STD कोड है 07774। दोस्तों, इसी के साथ क्रम हेलो फ्रेंड्स बस यहीं तक। दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का आज की यूवाणी से। इजाजत दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार।

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं।

0: अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: कार्यक्रम विचार बिंदु में मन ही बंधन विषय पर विचार। वाचन स्वर है अक्षय का।
1: जीवन को यदि थोड़ा ठहर कर और ध्यान से देखा जाए तो एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है कि हमारी अधिकांश समस्याएं बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से उत्पन्न होती हैं। परिस्थितियां अक्सर वैसी ही रहती हैं पर उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता रहता है। यही दृष्टिकोण कभी जीवन को कठिन बना देता है और कभी उसी जीवन को सहज बना देता है। इसलिए कहा गया है मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। दैनिक जीवन में कई बार ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अशांत रहता है। कोई विशेष कारण नहीं होता फिर भी भीतर एक अनकही बेचैनी बनी रहती है। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि मन के भीतर चलने वाली विचारों की निरंतर धारा होती है। कभी बीते हुए समय की स्मृतियां मन को घेर लेती हैं तो कभी भविष्य की अनिश्चितताएं चिंता का कारण बन जाती हैं। इसके साथ ही दूसरों से तुलना करने की आदत भी मन को असंतोष की ओर ले जाती है। यही विचार धीरे धीरे एक जाल का रूप ले लेते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं ही उलझता चला जाता है। मन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी चंचलता है। यह एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। यदि एक समस्या समाप्त होती है तो मन तुरंत दूसरी समस्या खोज लेता है। इस कारण व्यक्ति को कभी पूर्ण संतोष का अनुभव नहीं हो पाता। हमें हमेशा यह लगता है कि कुछ न कुछ अधूरा छूट गया है और कुछ प्राप्त करना आवश्यक है। यही अधूरापन और निरंतर चाह ही बंधन का कारण बन जाती है। बंधनों का यह स्वरूप बहुत सूक्ष्म होता है। यह किसी भौतिक वस्तु की तरह दिखाई नहीं देता पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जैसे किसी व्यक्ति की कही हुई बात को बार बार मन में दोहराना, किसी घटना को भूल ना पाना या किसी अपेक्षा के टूटने पर लंबे समय तक दुखी रहना, ये सभी मन के बंधन हैं। व्यक्ति बाहर से स्वतंत्र दिखाई देता है परंतु भीतर से वह इन विचारों और भावनाओं से बंधा हुआ होता है। इसी सत्य को इस सरल श्लोक में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, मन एव मनुष्याणा कारणा बंध मोक्षयो। अर्थात मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। यह श्लोक इस विचार को अत्यंत स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है कि जीवन की वास्तविक स्थिति मन की अवस्था पर निर्भर करती है। परंतु यही मन जब समझा जाने लगता है तो वही मुक्ति का माध्यम भी बन जाता है। जब व्यक्ति यह देखना आरंभ करता है कि हर विचार आवश्यक नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती, तब उसके भीतर एक दूरी बनने लगती है। वह अपने विचारों को केवल देखना सीखता है, उनसे चिपकना नहीं। यही समझ धीरे धीरे उसे भीतर से हल्का करने लगती है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या शेष न रहे। समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, परंतु जब मन उन समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता तब एक प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं पर आकाश उनसे बंधा नहीं होता, वैसे ही यदि मन विचारों और भावनाओं को आने जाने दे तो वह उनसे बंधता नहीं है। मन की दिशा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि ध्यान निरंतर कमी, असफलता या नकारात्मकता पर केंद्रित रहे तो वही अनुभव प्रबल हो जाता है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु में मन ही बंधन और मुक्ति विषय पर विचार। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है।

0: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन की हुई बिहाव। देश भर के संग छत्तीसगढ़ में काली 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन, ये दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के हो ही निपटारा। और प्रदेश में काली एक दो जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सबो जिला में सामूहिक विवाह के आयोजन करेगी। ये प्रदेश व्यापी आयोजन में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन उनकर अपन अपन धर्म रीति रिवाज ले बिहा होइस। एमा हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध और विशेष पिछड़ा जनजाति के जोड़ा घलो शामिल रहीन। वे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शक्ति जिला में 70 और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में 72 जोड़ा के बिहाव कराएगी। बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कार्यक्रम में विशेष रूप ले 4 बैगा आदिवासी परिवार के 2 जोड़ा आकर्षण के केंद्र रहीन। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी अमित सिन्हा बतैन कि विभाग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ला बढ़ावा दे के संग जिला ला बाल विवाह मुक्त बनाए के दिशा में सरलक कार्य करत है। आकाशवाणी है राष्ट्र के प्रति अपन विशेष सेवा के 90 बछर पूरे के मौका में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन के आयोजन करीस। करीबन 3.5 किलोमीटर मैराथन के शुरुआत आकाशवाणी भवन ले हुईस। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले गुजरात आकाशवाणी भवन में सिराइस। मैराथन पूरा करैया सबो प्रतिभागी मल्ला पदक प्रदान करेगीस। उन्हें पुरुष और महिला दोनों वर्ग में ऊपर के 3 प्रतिभागी मल्ला ट्रॉफी प्रदान करेगीस। बता दें कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन है ये मैराथन ला रवाना करीन। ये मौका में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन है बताइन कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के देश के सेवा में करे गए योगदान ला दर्शाते। देश भर के संग छत्तीसगढ़ में काली 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हो ही। ये दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के आपसी सहमति ले निपटारा करे जाही। उन्हें 21 ले 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में घलो विशेष लोक अदालत में लंबित मामला मन के सुनवाई होही। पक्षकार मन ला अपन लंबित मामला ला विशेष लोक अदालत में शामिल करे बर जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट में 21 मई तक गूगल फॉर्म में देना होही। ज्यादा जानकारी बर बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ले संपर्क करे जा सकत है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड हा अपन अधिकारी कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता में केंद्र सरकार जैसन 2% बढ़ोतरी के ऐलान करे है। मुख्य अभियंता के आदेश ले अब कर्मचारी मन ला 60% डीए दे जाही। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 ले प्रभावी माने जाही। उन्हें मई के वेतन ले कर्मचारी मल्ला नवा दर ले भुगतान करे जाही। जांजगीर चांपा जिला में धान खरीदी में बड़े गड़बड़ी उजागर हुए है। जिला के 3 धान खरीदी केंद्र किरीत कड़ारी और बिर्रा में करीबन 4700 कुंटल धान गबन करेगीस, जेखर कीमत 1,29,00,000 रुपये बताए जावत है। मामला अगुवाए के बाद नवागढ़ बिर्रा और बाराद्वार थाना में 7 कर्मचारी मन के खिलाफ केस दर्ज करे गए है। एमा संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल घलो शामिल हैं। ये सबो आरोपी मन हा मामला अगुवाए के बाद फरार बताए जावत हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2025 के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतैया 30 शिक्षक मन के खिलाफ बड़े कार्यवाही करे है। मंडल के आदेश में एखर ले जुड़े शिक्षक मन ला अवैया 3 बर आने आने कारज ले ब्लैकलिस्ट कर देगी से। जानकारी ले उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के बेरा कतकोन छात्र मन के अंक ला 20 ले 40 तक बढ़ाए गए रही से, जिला गंभीर लापरवाही मानत मंडल हा जांच के बाद शिक्षक मन ऊपर कार्यवाही करीस। मंडल हा लापरवाह शिक्षक मन के एक वेतन वृद्धि संचय प्रभावी ले रोके की घलो अनुशंसा करे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारे यूट्यूब चैनल

0: छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बारथन बांचे समाचार गोती। कोरबा जिला के बांगो थाना इलाका मा चोटिया गांव के तीर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 मा सड़क हादसा होगे, जेमा SECL गेवरा के पूर्व महाप्रबंधक अरुण कुमार त्यागी के निधन होगीस। जानकारी ले अरुण कुमार त्यागी के हाल ही मा डायरेक्टर टेक्निकल के पद मा पदोन्नति हो रही से ओमन इही नवा जिम्मेदारी ल संभाले बर कार ले सिंगरौली जावत रहिन हे। इही बेरा चोटिया गांव के तीर उखर कार ह एक ठन आने गाड़ी ले टकरा गीस। वे जांजगीर चांपा जिला के बलौदा इलाका में घलो हरदी बाजार रद्दा में कोयला भरे ट्रक पलट गए। एक चपेट में आयले फटफटी सवार दू जन के मौका में ही मौत हो गए। ये घटना के बाद ट्रक चलैया मौका ले फरार बताए जावत है। ओती शक्ति जिला के नंदनी गांव में बस स्टैंड के तीर दू ठन गाड़ी टकरा गई। हादसा में कार सवार एक मनखे के मौत हो गई। ये हादसा में आमाकोनी गांव के सरपंच के संग चार लोगन घायल हो गई। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़का लापरवाही आगू आए है। वन विभाग के शुरुआती जांच में पता चले है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के ले बाहर जाके 8,000 ले ज्यादा पेड़ काटे गए है। मामला की गंभीरता ले लेवत विभाग है दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दे है। बछर 2017 में ये परियोजना पर बालोद कांकेर कोंडागांव और बस्तर जिला के 402 हेक्टेयर ले ज्यादा वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे गई रही से। केसकाल वन मंडल में 10,731 पेड़ काटे के मंजूरी मिले रहीस, जेमा जांच समिति है पाईस कि 8,000 ले ज्यादा पेड़ स्वीकृत क्षेत्र ले बाहर काटे गए है। वन विभाग है जिम्मेदार मल्ला तत्कालीन अधिकारी कर्मचारी मन के खिलाफ कार्यवाही के प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय ला भेज दे गए है। जसपुर जिला में कुनकुरी तपकरा लवाकेरा रद्दा के श्री नदी में बड़का पुलिया और पहुंच मार्ग निर्माण पर राज्य सरकार है करीबन 9,45,00,000 रुपये के स्वीकृति दे है। ये पुलिया छत्तीसगढ़ झारखंड और ओडिशा ला जोड़िया रद्दा में बनाए जाही। पुलिया बने ले तीन राज्य के बीच अवई जवई ज्यादा सुरक्षित और सरल हो जाही। हाल बेरा संकरा पुलिया होए के सेती बरसात के दिन में परेशानी होत रहीस, एखर सेती लंबा बेरा ले क्षेत्रवासी मन पुलिया के मांग करत रहिन। वन मंत्री केदार कश्यप आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और IVRS आधारित सूचना और संवाद तंत्र के शुभारंभ करीन। संग्राहक मल्ला जानकारी ले बर टोल फ्री नंबर 9811125813 मा मिस कॉल करना होही। मिस कॉल के बाद 911 ले शुरू हुआ नंबर ले उपयोगकर्ता मल्ला कॉल बैक आही। फोन उठावत ही संग्राहक मन अपन स्थानीय बोली हल्बी और गोंडी में घलो जानकारी सुन सकी। अब जानव मौसम के हाल। प्रदेश में काली एक दू जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। मौसम विभाग के अनुसार एक ठन द्रोणिका दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश ले अंदरूनी ओडिशा और छत्तीसगढ़ ले होवत गुजर ही। एकर प्रभाव ले प्रदेश में काली कुछ एक जगह गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना है। महासमुंद पुलिस एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और कोमा खान पुलिस संयुक्त रूप ले कार्यवाही करत एक ठन एम्बुलेंस ले 75 किलो गांजा जब्त करे है। आरोपी मन ओडिशा ले गांजा लेके महाराष्ट्र जावत रहीन। ये मामला में महाराष्ट्र के 5 जन तस्कर मल्ला गिरफ्तार करे गए है और उखर तीर ले गाड़ी और 5 ठन मोबाइल जब्त करे गीस। कर्मचारी राज्य बीमा निगम डहर ले काली राजधानी रायपुर के ESIC अस्पताल रामाभाठा में निःशुल्क जांच शिविर के आयोजन करेगी। यह 40 बछर ले ज्यादा उम्र के बीमा होए अब्बड़ जन श्रमिक मन स्वास्थ्य जांच कराइन। और आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश में 2300 ले ज्यादा जोड़ा मन के होइस बिहाव। देश भर के संग काली छत्तीसगढ़ में 9 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन। ये दौरान कोर्ट में लंबित मामला मन के हो ही निपटारा। और प्रदेश में काली एक दू जगह गरज चमक के संग हवा गरेर और गाज गिरे के चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सादरी लोकगीत अमृत मिंज और साथियों की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी।

अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार के संयुक्त स्वर में। गीत लिखा था कुमार ने, धुन बनाई थी अमाल मलिक ने। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा के युगल स्वर में टू स्टेट्स फिल्म का गीत। बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के और धुन शंकर एहसान लॉय का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी, मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई। देश भर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। इस प्रदेशव्यापी आयोजन में 2300 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सभी जोड़ों का अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़े भी शामिल हैं। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सक्ती जिले में 70 और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में 72 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के कार्यक्रम में विशेष रूप से 4 बैगा आदिवासी परिवारों के जोड़े आकर्षण का केंद्र रहे। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी अमित सिन्हा ने बताया कि विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के साथ ही जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है।
7: सभी जिलों में आज के दिन सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 72 जोड़े ने अपना पंजीयन कराया है। इन 72 जोड़ों में से 2 जोड़े जो हैं वो बैगा समुदाय से हैं। और हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि बाल विवाह पे रोक लगाने के साथ साथ हम बच्चियों के विवाह पर भी जो शासन

0: योजना उनका लाभ उनको पूरी तरीके से दिला रहे हैं।
1: राज्य सरकार ने बीते 6 मई को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल का आदेश जारी किया था। इसमें संशोधन करते हुए वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी रुक्तिमा यादव को कोरिया जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले जारी आदेश में रुक्तिमा यादव को उच्च शिक्षा के आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया था। वहीं आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह आईएएस अधिकारी रीता यादव को उच्च शिक्षा के आयुक्त के पर पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों को अगले 3 वर्षों के लिए मंडल के विभिन्न कार्यों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के दौरान कई छात्रों के अंकों में 20 से 40 तक की बढ़ोतरी सामने आई। इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए मंडल ने जांच के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की है। मंडल ने संबंधित शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की भी अनुशंसा की है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज लोकभवन में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष राज्यपाल रमन डेका से भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ शाखा के चेयरमैन तोमन साहू और अन्य पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान पदाधिकारियों ने राज्यपाल को रेडक्रॉस का बैज पहनाकर अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस की शुभकामनाएं दी। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। अधिक जानकारी के लिए बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि ये आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के चौड़ीकरण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्वीकृत अलाइनमेंट के बाहर जाकर 8,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2017 में इस परियोजना के लिए बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिलों की 402 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी। केशकाल वन मंडल में 10,731 पेड़ काटने की मंजूरी मिली थी। जांच समिति ने पाया कि 8,000 से अधिक पेड़ स्वीकृत क्षेत्र से बाहर काटे गए। वन विभाग ने जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। कोरबा जिले में बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर बांगो थाना क्षेत्र के चोटिया के पास हुए सड़क हादसे में एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक अरुण कुमार त्यागी का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अरुण कुमार त्यागी को हाल ही में डायरेक्टर टेक्निकल के महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत किया गया था। वो अपनी इस नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए कार द्वारा गेवरा से सिंगरौली जा रहे थे। इसी दौरान चोटिया के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक पार्सल वाहन से टकरा गई। इस दुर्घटना में श्री त्यागी रूप से घायल हो गए। बाद में उपचार के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बलौदा के हरदी बाजार रोड में आज कोयले से भरे ट्रेलर के पलटने से मोटरसाइकिल सवार पुरुष और महिला इसकी चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं सख्ती

जिले के नंदेली गांव के बस स्टैंड के पास कल देर रात दो वाहनों में भिड़ंत होने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे में अमाकोनी गांव के सरपंच ओमकार चंद्रा सहित चार लोग घायल हुए हैं। जांजगीर चांपा जिले में तीन धान खरीदी केन्द्रों कीरित, कराड़ी और बिर्रा में करीब 4,700 क्विंटल धान का गबन किया गया है, जिसकी कीमत 1,29,00,000 रुपए बताई जाती है। मामले के सामने आने के बाद तीन थानों नवागढ़, बिर्रा और बाराद्वार में सात कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल शामिल हैं। सभी

मामले के सामने आने के बाद तीन थानों नवागढ़, बिर्रा और बाराद्वार में 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें संस्था प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर और हमाल शामिल हैं। सभी आरोपी फरार बताए जाते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ वनोपज संरक्षण वाणी और IVRS आधारित सूचना और संवाद तंत्र का शुभारंभ किया। वनोपज संग्राहकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 9811258813 पर एक मिस्ड कॉल करना होगा। मिस्ड कॉल के बाद 911 से शुरू होने वाले नंबर से उपयोगकर्ता को कॉल बैक आएगा। कॉल रिसीव करते ही संग्राहक अपनी स्थानीय बोली जैसे हल्बी और गोंडी में महत्वपूर्ण जानकारियां सुन सकेंगे। जानकारी सुनने के साथ ही उपयोगकर्ता अपनी राय, अनुभव और सुझाव भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। महासमुंद पुलिस, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और कोमाखान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज एक एम्बुलेंस से 77 किलो गांजा जब्त किया है। ये गांजा ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इस मामले में महाराष्ट्र के 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गांजा परिवहन में प्रयुक्त एम्बुलेंस, पायलटिंग कार और 5 मोबाइल फोन समेत कुल 50,45,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हवा की गति तेज रहने के आसार हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सोशल मीडिया पर रिश्वत के लेन देन का वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने पटवारी लोकेश्वर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सही दवा आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार अभियान के तहत रायपुर जिले में औषधि प्रकोष्ठ की टीमों ने 6 और 7 मई को राजधानी के विभिन्न थोक और फुटकर दवा दुकानों पर सघन छापेमारी की और रायपुर जिले के धरसीवां विकासखंड के ग्राम पंचायत गोढ़ी में पक्षियों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक विवाह का समारोह आयोजित किए गए। हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 30 शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं, आइए अब हम आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करा दें।

नजर डालते हैं कल यानी 9 मई 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। प्रातः 6:05 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर होगा विचार बिंदु। गोस्वामी तुलसीकृत श्री रामचरित मानस का गायन हम आपको सुनवाएंगे 6:35 पर। इसमें गायन स्वर होगा रविंद्र साठे का और संगीत संयोजक होंगे सतीश भाटिया। लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल आप सुन सकेंगे 7:00 और 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। नमस्कार सरगुजा जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनिएगा 7:30 पर। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर। और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे 1:40 पर। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सबरंग 12:00 और 12:30 पर होगा कव्वाली। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे 1:10 पर और गीत गंधा आप सुनिएगा 2:30 पर। शाम 5:00 रोजी की तरह आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ और 5:05 पर भजन संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर और 6:20 पर हम प्रस्तुत करेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। इसमें कल आप सुनिएगा रामलल्लू पांडे और पीआर साय की आवाज़ में भोजपुरी और सरगुजिहा लोकगीत। फिल्म संगीत आप सुनिएगा कार्यक्रम माधुरी में शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:05 पर। रात्रि 8:00 आप सुनिएगा सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती हम आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:30 पर रिले करेंगे। रात्रि 10:00 होगा आकाशवाणी दिल्ली से ही अनुप्रसारित संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। सुबह 9:00 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कार्यक्रम बातों बातों में और डॉक्टर की सलाह 8:30 पर आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किया जाएगा।

अब से कुछ ही पलों में शाम 7:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। 7:20 पर होगा ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 8:00। 8:45 पर हम समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। रात्रि 9:15 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रागों पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर और 10:30 पर होगा मन भावन। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं। आइए अब एक

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

अभी आपने सुना उस्ताद मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन की आवाज़ में गज़ल, लिखा था वली यासी ने और संगीत था अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है और अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की युगल स्वर में गजल। गीतकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह, संगीत भी है जगजीत सिंह का।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाए इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल।

शंकर संता गोट्टा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत और धर्मो भैया कर राम राम। देखी आज फिर कहब ना कि बादल तो छाए रहीस, कटिक बूंदाबांदी भी होइस और अजय भी देखत ही कि कटिक कटिक बादल छाइस है और काहे दोपहरिया में जो ढेरे घाम लागत रहीस ना वो थोड़ा सा तापमान में कमी होइस है। बाकी का है कि आगे आए वाला जो है कल कटिक कटिक है बादल कहों कहों छाई से, बाकी ओकर बाद मौसम साफ बताता है। कार्यक्रम में देखी राउंड नंबर गीत संगीत तो होबेज करी, काबर के धर्म भैया हैं तो गीत संगीत तो होबेज करेल। संगे संगे का है कि हमार उद्यान अधीक्षक महोदय आए रहीन तो उनकर जग में गुड बात करे हूँ कि कैसे कैसे हमार फल वृक्ष मन कर देखभाल करल जाए और कैसे तैयारी करल जाए, एक गोट बात ला भी सुनबो। संगे संग मंडी भाव मौसम कर जानकारी हो ही और शुरुआत में हमन का है देखी कोनो ना कोनो विषय पे गोट बात करती। आज बहुत ही देखब के प्रमुख विषय हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, हर गरीब ला पक्का घर। देखी हमर यहाँ अभी देखिए आए वाला खरीफ कर समय जो है ना पानी बूंदी जब गिरे, आज ले देखब कि 15-20 बच्छर पहले कर अगर बात करी तो ओतेक पक्का घर मन नहीं रहें, कहों कहों छानी रहे, खपरा रहे, कच्चा घर मन रहे। तो जब ढेर पानी बूंदी गिरे ना तो हमेशा डर लगे रहे कि का जाने कौन घर घर धसक जाए। कहों कहों से समाचार भी ऐसे सुने में आए देखे में आए कि कहों तो कच्चा घर गिर गिस, दीवाल हर गिर गिस और कहों छानी खपरा मन फूट गिन और चूहता है। तो एक बस विचार हुई सरकार कर कि नहीं हर मनसे ला हर गरीब मनसे मन बर कम से कम पक्का घर होना चाहिए, अपन पक्का घर हो देश में हर परिवार के पास। यही लक्ष्य ला लेके जो है ना भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जिला हमन PMAY कथी एकर शुरुआत करल गईस और ये योजना हर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र पर जो दोनों क्षेत्र में जो भी कमजोर हैं आर्थिक रूप से और कहब कि मध्यम वर्ग मन पर आवास बनाए पर ये सुविधा देहल गई। शुरू शुरू में जब एकर शुरुआत हो रही तो 2022 तक ही एकर लागू करे गए हैं, बाकी का है कि अब तो संपूर्ण जो है लागू करल कैसे जे जो कि जरूरतमंद जो परिवार हैं ला अपन फायदा उठा सके। और मैं कहा तो करोड़ों घर मन तो अभी देखिए कि बन चुकी से और कुछ लोग अभी भी जो है वंचित हैं, उनकर पर जैसे ही उनकर अपन नाव आही उनकर जो क्रम आही तो ओकर अनुसार जो है उनकर भी घर बन जाही। अब प्रधानमंत्री आवास योजना देखी कि दो प्रमुख भाग में बांटल गई से, पहला तो का है PMAYG जिला हम कह कि ग्रामीण और PMAU जो शहरी क्षेत्र पर है जिन उनकर पर देहल जाए जिनकर पास कोई अपन जो है पक्का मकान नहीं हो। एकर अलावा कहब कि मैदानी इलाका में रहे वाला पात्र लाभार्थी मनला 1,20,000 रुपया तक कर सहायता देहल जाए, जबकि पहाड़ी या फिर दुर्गम क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना ओमन ला राशि जो है कटिक बढ़ाए के 10,000 1,30,000 तक जो है देहल जाए। अब ये कहा है कि सीधे लाभार्थी जो भी बनवाना चाहते हैं मकान ओमन कर सीधे बैंक खाता में जाए और किस्त कर रूप में जाए, काबर की देखिए शुरुआती जब रवरेमन चालू करती तो कटिक कटिक जब कुछ ओकर निर्धारित रहल कि इतना उड़ जाही हत्ता नियर और कुछ निर्माण हो जाही ओकर बाद दूसर किस्त आही। तो एकर ए बार करल गई से कि बीच में का है कि कोनो एकस मत हो कि भाई पैसा कर दुरुपयोग हो जाए, तो एक बार जो है घर जरूरी हवे न पैसा डूबिया इते उते अगर हो गई तो ए बार जो है किस्त कर रूप में ओला देहल जाए। अब जैसे कि का है एकर पर दस्तावेज जो है कागज पत्र जो चाहिए तो सबसे पहला तो है कहे कि पहचान कर प्रमाण होना चाहिए। तो पहचान कर प्रमाण पर जैसे रौरेमन जग आधार कार्ड रहल वो है कोनो भी एक ठन चीज़ जैसे आधार कार्ड होगीस या वोटर आईडी होगीस जिला वोट डाली जाती जो जो पहचान पत्र रहल ना ओला वोटर आईडी कहते हैं। ओकर अलावा कहब कि जेकर जग पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी चलही, पासपोर्ट है तो वह चलही, ड्राइविंग लाइसेंस है वह चलही, कोनो भी एक दस्तावेज पहचान पर होना चाहिए। और वैसने कहब कि जैसे पता कि कहाँ कर पता भाई कौन सा जगह में कौन निवास करती तो ओकर बर आधार कार्ड

कार्ड रहे या भाई अपन निवास प्रमाण पत्र भी तो रहे बनवाए रहते, नहीं है तो आधार कार्ड हवे, पासपोर्ट हवे, वोटर आईडी हवे, बिजली या पानी कर बिल हवे, ओकर अलावा जैसे किराए के घर में रहते हैं तो किरायेनामा ओकर में बना के देना पड़ेल, या फिर जैसे मैं कहन के निवास प्रमाण पत्र कोई भी मान्यता प्राप्त जो सरकारी, जैसे हमारे यहाँ तो कहे कि तहसीले से बनेल, तो ओकर अलावा कह कि आय प्रमाण पत्र जेकर आय के आधार पे ये तय होल ना कि कौन कौन कौन श्रेणी में है, मतलब EWS में है, मतलब ज़्यादा गरीब हैं, ओकर अलावा LIG में है या MIG में है, सो श्रेणी के आधार पे जो है ओला देहल जाए। ओकर अलावा कह कि जैसे अगर वेतन भोगी हमें मतलब जो नौकरी करते हैं मतलब वेतन भोगी कहते हैं तो ओमन ला कम से कम पिछला जो है 2-3 महीना कर जो है ना उनकर तनख्वाह कर जो है स्लिप ला ओला देना पड़ी, या कोनो जैसे आयकर रिटर्न वाला है तो मतलब पिछला जो भी वित्तीय वर्ष रही वो कर देना पड़ी, और आय प्रमाण पत्र जो है सरकारी प्राधिकरण द्वारा जो जारी आय प्रमाण पत्र देना रहल, फिर ओकर अलावा और मिला बैंक खाता कर विवरण देना पड़ी, तो का है कि ये योजना के तहत जो भी मिले वाला सब्सिडी या छूट जला कहती है ना या आर्थिक सहायता सीधे रउर मनकर बैंक कर खाता में ट्रांसफ़र कर दिल जाए, और पासबुक जो है बैंक कर पासबुक ओकर जो है IFSC कोड रहल ओकर नाव है ओकर साथ जो है ना उला फोटोकॉपी हमला जमा करना पड़ेल। तो भाई देखी इतना बढ़िया सुविधा हवे, बढ़िया सरकार सोचत है, और ये हमला आए वाला जो समय है ना एकर फायदा जो है अभी तो कई करोड़ों लोग उठा चुके हैं, जिमन नहीं उठाई ने ओहू मन जरूर से जरूर उठाएं भाई, प्राकृतिक आपदा ला कोनो नहीं जाने कि कब का हो जाए, बाकी पक्का रही तो कम से कम जी कभी कभार देख कि बढ़िया तेज आंधी पानी आ जाए कारा उरा मन गिर जाते हैं तो ओकर से कम जान माल कर जो है रक्षा है। अब देखिए कि दरखास्त आवेदन कहाँ करना है, तो कहा है कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन, और अपन जो भी जरूरी जो दस्तावेज में बताए ना ओकर अनुसार जो है अपन फार्म भरना रहल, एकर अलावा जो है एक ऐप हवे उमंग ओकर जरिए भी आवेदन कर सकते हैं, और मान लो जकर जगह से इंटरनेट कर सुविधा नहीं है तो अपन नज़दीकी कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर ग्राम पंचायत या नगर निकाय कर कार्यालय में जाके ऑफलाइन भी आवेदन कर सकता है, तो बिल्कुल हमन ला एकर लाभ लेना चाहिए, करोड़ों लोग तो लाभ ले चुके हैं, कोनो भी एकर से अगर जैसे वंचित है जिनकर पक्का मकान नहीं है तो मन जरूर से जरूर अपन घर ला पक्का मकान बनाए डारें ताकि आए वाला जो है ना लड़का छुआ मन है उनकर और अपन घर कर जो है ना जो जान माल सुरक्षित रह सके। गोट बात तो देखी होते च रही, बाकी मैं तो कहता हूँ कि गीत के साथ साथ मनोरंजन करल जाए, तो गाते हैं गुलाब सिंह पैकरा और उनका संग तहरे सुनल जाए सुघा रकन छत्तीसगढ़ी गीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ भाई, देखिए संदेश ला सुने और एक पहले बड़ा सुखर अकन गीत सुने गात्रन गुलाब सिंह पैकरा उनकर संगता हरे। देखिए पर्यावरण कर हमन बात कर थी तो पर्यावरण मतलब हमार आस पास कर चारों तरफ कर वातावरण लही हमन कथी पर्यावरण, और एकर बगड़ल दशा जो है दिनों दिन देखे में आता है कि अभी देखब कि गर्म घनी अचानक ले ढेरे गर्म होल, बरखा घनी देखब खंड खंड बरखा होता है, कहों जग बरखा होता है कहों जग नहीं होता है, बरखा कहों बदक के इते ले उते चल जात रहल। तो ये संकट जो है एकर से हमला आज हमन अगर लापरवाही ढेर करब ना तो कल बहुत ज़्यादा संकट हो जाही। तो ये समय जो है ना पर्यावरण बचाए कर समय हवे, और समय तो बहुत पहले से है, जागरूकता धीरे धीरे आता है। बाकी का है कि सब झन ला चेतना पढ़ी, सब झन ला चेतना पढ़ी ताकि हमला आए वाला जो है संकट जो है पर्यावरण से हमला छुटकारा मिल सके। देखब कि

हमन एकर में का का कर सकत ही। सबसे पहला चीज तो हमार जो गांव घर कर रहुया हमें किसान हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सकता है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और एक बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पेड़ जो है ना हमार जो धरती हवे प्रकृति हवे यहर अभी देखब कि जब बरखा ही ना तो अपने अपन लाखों करोड़ों पेड़ मतलब अपने जन्मायल देखब पेड़ के आसपास जो है बहुत सारा पौधा मन उगते हैं अपने अपन, तो कम से कम ओकर हमला तिहा करना जरूरी हवे। अगर हमन तिहा कर लेती तो बहुत ही कहब कि पर्यावरण के प्रति हमन जो है योगदान दे सकती। और एक बात आऊ हवे कि अभी जो गर्म कर समय कभी कभी जो है जंगल हर आगी उगी धर लेल तो एला हमन कोशिश करी कि आगी झिन झोंके सके। जो का है देखती हमन जैसे अभी कुछ दिन पहले महुआ बिनाई होत रहीस वो घनी का है कि जैसे महुआ बीने घनी ओला पेड़ कर तरी तरीला जो जराए देते हैं तो जब जरात रहते हैं तो वो घनी हमला ध्यान रखना पड़ेल कि और कहीं इते उते झिन झोंके। बहुत सारा चीज़ हवे जल कर हमला संरक्षण करना जरूरी हवे। प्लास्टिक कर जो है उपयोग है ओला बहुत कम करना हवे। और मैं तो कथों कोशिश करें कि झीने करें हम नानन रहें तो ठोंगल में लानत रहें हम वह रहे कागज कर तो वो काहे पर्यावरण के प्रति बहुत ही बढ़िया चीज़ हवे। वो काहे कि कागज में जो है वो तो नष्ट हो जाही ना, बाकी ये प्लास्टिक हर कभों नहीं सिराए कभों नष्ट नहीं हो। जहाँ जब प्लास्टिक हर अगर जैसे खेत हो गए बारी हो गई ओकर में अगर तरी चले गई तो वो जग कहीं उपजी नहीं कहीं जन्म नहीं ले पाई। तो हमला ध्यान करना है ये सब छोटे छोटे बात हवे। तो हमला सबसे पहला चीज़ हवे कि जागरूक रहना हवे। एक देखब कि हमार पशु पक्षी पेड़ पौधा ये सब से मिल के ना हमार पर्यावरण हवे। आज के युग में जो है ना आधुनिक युग का हब कि औद्योगिकरण है शहरीकरण जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है ना बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर जो है विपरीत प्रभाव गंभीर प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण भूमि प्रदूषण कईन प्रकार कर समस्या देखे में आता है। एकर कारण है कि देखिए कि अभी मन से मतलब नवा नवा किस्म कर बीमारी कहब ना कि कुछ बच्चर पहले कहाँ एकस देखे में आएगी। आजकल तो जगह जगह शुगर तो मधुमेह जिलकथी या डेंगू एकस एकस पहले हमार पुरखा मन ओतेक बड़ बीमारी मला नहीं होए काबर की बढ़िया शुद्ध वातावरण रहीस पर्यावरण बढ़िया रहीस और जांगरला भी उमन ढेर चलाएँ खेती पाती से लेके तो आराम से उस समय चिकित्सा कर भी उतना सुविधा नहीं रही समर्थन मतलब कहब कि दवा कर तभी भी हमार जो पुरखा मन अच्छा जिए 100 बछरला टेकाएँ बढ़िया स्वस्थ जीवन जिए ओकर कारण रहीस कि पर्यावरण जो है बहुत बढ़िया रहीस आसपास का जो वातावरण रहीस शुद्ध चीज खाए बर मिलत रहीस ये सब जो है कीटनाशक वगैरह कर भी ओमन उपयोग नहीं करत रहे। प्राकृतिक खेती अभी देखिए कि प्राकृतिक खेती की तरफ हम रुझान फिर से हुई सर तो प्राकृतिक खेती करें बढ़िया सुगर रहें और जांगरला ढेर चलाएं। हमार नियर नहीं कि अभी देखे बात लिखरी लिखरी बात में काहे गाड़ी मोटर ला हेरते हैं कटिक कटिक दूरियाँ जाए बर एकर में काहे के मन से मन कोढ़िया हो जाता है और नवा नवा बीमारी झोंकता है। तो ध्यान रखें पर्यावरण के प्रति भी सचेत रहें। जो गाड़ी मोटर से एक तो काहे कि विषैला धुआं भी निकले औद्योगिकरण के कारण जो है विषैला धुआं निकलत है। तो कोशिश हमला ये करना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाई हरियाली ला बनाए रखी और कोनो भी ऐसा काम नहीं करना है जेकर से हमर जो है वातावरण पर्यावरण हर दूषित हो। धीरे धीरे हम ही मन बिगाड़े ही तो हम ही मन ला बनाबो। देखिए गंगाराम सिंह उद्यान अधीक्षक महोदय जग मोर भेंट हो रहीस तो मैं कहन कि ये समय जो हमन यहाँ देखब कि फल आता है ना आमा मन हमें लीची मन हमें पपीता मन हमें तो मैं कहन एक बारे में इनकर से गोड़ बात करल जाए रौरे मन भी सुनी

0: आज मुलाकात हुई से गंगाराम सिंह जी से, जो कि अधीक्षक हमें शासकीय उद्यान अंबिकापुर में पदस्थ हैं, समय समय पर आत रहते हैं और हमारे किसान भाई मल्ला बड़ा सुघर सुघर जानकारी देते हैं। तो मैं कहना आज भेटाई है तो इनकर से जानल जाए कि अभी कर समय में कौन कौन सा फल वृक्ष लगी से और कौन कौन कौन सा रोग आता है और कर का उपाय है नियंत्रण कर। बहुत बहुत स्वागत है गंगाराम जी।
1: आप मन के भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मन मुला आमंत्रण करथन ते करवा। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन ला।
0: गंगाराम जी
1: जी हाँ।
0: अभी हमर यहाँ ये समय कौन कौन सा फल लगी से और ओकर में कौन कौन सा मतलब रोग देखे में आता है?
1: अपने यहाँ भी सरगुजा जिले के लगभग जो है आम में लगे हैं, लीची में लगे हैं, अमरूद में भी लगे हैं, नींबू में भी लगे हैं और लगभग जो है ये सब प्रजातियों में जो है भी फल लग चुके हैं लगभग।
0: हाँ हाँ दिक्कत तो है
1: जी बाजार में आना भी शुरू होगी से।
0: हाँ हाँ
1: जी
0: तो वही मैं पूछत रहे कि एकर में फल के अनुसार जैसे कौन सा रोग देखे में आता है? वैसे तो आने आने फल में आने आने रोग लागत हुई।
1: हाँ लगेल। हाँ तो जैसे आम है, आम में अभी फल के जो है जहाँ पे डंठल रहते
0: हाँ
1: वो डंठल में एकदम भूरा भूरा टाइप के जो है फफूंद लगे रहते, तो ओकर वजह से क्या है बहुत से फल झड़ भी जाए, तो ओकर नियंत्रण के लिए पहले जो है दवा छिड़कना चाहिए, जैसे कि क्लोरोफेरीफास है, इमिडाक्लोरोपीट है, ये सब दवा ला जो है जैसे ओकर लक्षण दिखत है तो समय एक बार पहले मार दें और यदि लग चुकी से तो फफूंद नाशक दवा करें।
0: अच्छा। हाँ जैसे कि अभी फर लाग चुकी से
1: है जी,
0: है ना
1: जी
0: हाँ।
1: तो ओकर लिए फफूंद नाशक दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो है मान के चली फफूंद नाशक में जो है बाउस्टीन है, कार्बेंडाजिम है, साफ हैं, इन दवा का जो है उपयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में जो है 2.5 ग्राम दवा मिला के ओकर छिड़काव कर सकते हैं।
0: तो जैसे फल लगी से तो कैसे ओकर लक्षण दिखी?
1: ओकर लक्षण ये दिखी कि मैं एकदम डंठल में भूरा भूरा हो जाई और ओकर ज़्यादा प्रभावित रही तो ओकर फल है जो है अनसाइजेज रही, कड़ाहा टाइप के दिखी।
0: हाँ।
1: एक तरफ फिर दबल रही तो एक तरफ फिर ऊंचा रही, ये टाइप के दिखी।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: और कन्हा रही तो फिर वो तो ना चाहिए ना खाए में ही
1: मीठा ही। हाँ
0: तो ये तो इस आम कर बात। और फल कौन कौन सा लगी से अभी?
1: और लीची में भी लगी से अभी फल। लीची में लगभग 10 से 15 दिन के बाद जो है वो धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएगी, वो तो उमे तो ज़्यादा बीमारी लगने की संभावना नहीं रहे, काहे कि वो ज़्यादा लंबा समय दिन का फसल भी नहीं है। एक रोकथाम फल आने के पहले करना पड़ते हैं।
0: अच्छा।
1: एक बार कीटनाशक दवा की स्प्रे करेंगे तो कदूसर बार जो है फिर फफूंद वाला, एक बार जो है हारमोन्स का 3 स्प्रे अनिवार्य रहता है इसके लिए
0: लीची में।
1: लीची में एक बाद ये बीमारी बाद में नहीं आ सकते हैं, एकर पहले जो है।
0: तो जैसे कीटनाशक कर छिड़काव का है तो पहला कब करना पड़ी हमला?
1: जैसे कि फल आने की स्थिति में है।
0: अच्छा। फूल दिखत रही
1: है। फूल दिखत रही तब। हाँ। कि अब फूल बनने वाला है वो स्थिति में जो है एक बार कीटनाशक दवा की स्प्रे करना चाहिए। बहुत से जाली कीड़ा मकोड़ा वहाँ बना के रखते हैं तो प्रभावित कर देते हैं उनके, तो वो नष्ट हो जाते हैं, तो ये समस्या नहीं आएगी फिर।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: फिर दूसरी बार?
1: हाँ दूसरी बार फफूंद नाशक जो उन्हें भूरा माहो या कीड़ा का प्रकोप जाली नामा बनात रहते हैं, चाहे धब्बापन रहे, वो कर लिए स्प्रे जो है कर दें, ये साफ कर दें, चाहे कार्बेंडाजिम चाहे बाउस्टीन का।
0: अच्छा।
1: हाँ तो ये फफूंद जो लगे वाला है तो ये फफूंद भी हमें बिल्कुल नहीं आई।
0: और एक अलावा हमारे यहाँ तो पपीता भी अभी देखे में आता है।
1: हाँ आते वह आते। और एक लीची में एक थे और हारमोन्स का थे।
0: हाँ
1: तो हारमोन्स डाले से ये हो कि जो फल है झड़ जा।
0: हाँ
1: और समय खोने के कारण जो है वो झड़ गिर जाए तो उमें हारमोन्स की दवा स्प्रे करना पड़ते हैं।
0: अच्छा। जब फर नहीं झोंकत रही
1: हाँ हाँ
0: है ना,
1: मल्टीप्लेक्स या प्लानोफिक्स करके है तो कर जो है प्रति लीटर पानी में 2.5 ml दवा मिला के छिड़काव कर।
0: अच्छा।
1: तो कंट्रोल हो जाए, कुछ झड़ना है थोड़ा रुक जाइए।
0: ये लीची बर
1: है। ये लीची बर।
0: हाँ पपीता के बारे में मैं कहता
1: हूँ।
0: हाँ पपीता तो अच्छा लोभलोभान पपीता मन आई है
1: जी जी
0: बाजार में
1: जी, तो एक लिए बहुत ही मतलब पपीता में वायरल लगे सबसे ज़्यादा यहाँ जो है सरगुजा में वायरल। जैसे मान के चली फल फूल आना रहते या पत्ती में जो है जैसे प्रोग्रेसिव होत रहते हैं, बड़का बढ़त रहते हैं, वो समय में उनमें एकदम सफ़ेद भूरा टाइप का मतलब पत्ती है सुकड़ना शुरू हो जाए तो मुड़ना शुरू हो जाए, तो एकर लिए जो है एक सामयिक सिंचाई ला व्यवस्थित करें, मतलब थाला सिस्टम से अभी गर्मी दिन है वो बना के रखें, और दूसर जो है उसमें उस प्रकार के लक्षण दिखते तो वो लक्षण

0: के देख करके ओमें जो है कार्बेंडाजिम या तो बावस्टीन ये साफ ये फफूंद से संबंधित हैं।
1: अच्छा,
0: तो एकर छिड़काव जो है ये बीच बीच में करते रहें ताकि वो वायरल टाइप के जो आते हैं वह बिल्कुल नहीं है।
1: अच्छा
0: जी,
1: ये तो हो गई इस पपीता कर बात। और अलावा अभी कौन कौन सा फल लागिन है?
0: ओकर अलावा जो है नींबू में है। नींबू में आज के समय में बहुत ही एक उपयोगी फल है, मेडिसिन प्लांट के अंतर्गत आते हैं। अब एक रख रखाव करना बहुत ही अति आवश्यक है और अभी रेट भी सही मिले होकर। तो एकर लिए सबसे पहले तो एकदम नीचे थाला बना के नियमित सिंचाई करें।
1: अच्छा,
0: यदि नियमित सिंचाई नहीं करें तो ये बारहमासी जो बोलते हैं ना कि नींबू बारहमासी पौधा जो है, तो हमें कहा है कि वो फल लगते रहते और साइज बनते रहते और फूल भी आते रहते।
1: हाँ,
0: तो ये समस्या जो है झड़े के बिल्कुल नहीं रही यदि थाला सिस्टम बना के पानी ले सिंचाई करते रहें और उसमें बीच बीच में हार्मोन्स का दवा का स्प्रे करें, जो कर मैं अभी बताए रहें।
1: अच्छा,
0: कि प्लानोफिक्स या मल्टीप्लेक्स ये दवा जो है बीच बीच में स्प्रे करें, जो फूल के जड़न है वो ब्रेक हो जाएगी और फल भी अच्छा लगी और रेट भी सही मिली।
1: एक बात और पूछना चाहता रहा मैं अधीक्षक महोदय
0: जी,
1: हमारे जो कभी कभी किसान भाई मन कहते हैं कि नींबू लगाए ही काबर तो फर नहीं आता है,
0: जी
1: ओकर का कारण रहल?
0: ये बहुत बड़ा प्रश्न आते और हमन भी फील्ड में जाथन।
1: हाँ,
0: ये समस्या मिलते
1: हाँ
0: कि साहब ढेरे साल होगी सिला लगाए लेकिन फल
1: हाँ,
0: नहीं आते,
1: काबर तो
0: बढ़बे नहीं करते और फल ही नहीं आते।
1: हाँ, हाँ,
0: ये शिकायत
1: हाँ,
0: अक्सर मिलते।
1: हाँ,
0: सबसे तो मैं ये कहूँ कि जब नींबू पौधा का प्लानिंग करें लगाए बा
1: हाँ,
0: तो कर गहराई गड्ढा के बढ़िया से बना लें।
1: अच्छा,
0: और गड्ढा बना के अभी ये उचित समय है, ये गर्मी है,
1: हाँ,
0: मई में जून में उचित समय है, तो गड्ढा लाकार प्रकार बढ़िया से बना लें।
1: करीब करीब कितना मतलब
0: जी
1: गड्ढा करना है मतलब?
0: लगभग 1 मीटर लंबा चौड़ा गहरा होना चाहिए
1: अच्छा
0: और फीट में कहब तो ही 3 फीट लंबा चौड़ा गहरा होना चाहिए।
1: अच्छा
0: तो ये गड्ढा की साइज है।
1: हाँ,
0: और गड्ढा के साइज अगर किसान मतलब हमें सुझाव देते हैं तो ये बोलते हैं कि साहब यार तो पौधा डूब जाए किसे लगा
1: हाँ,
0: गड्ढा है ही।
1: मोरो मन में बात
0: हाँ,
1: हो,
0: तो गड्ढा में अगर पौधा ले लिया जाकर अब तो 3 फीट में पौधा ही डूब जाए तो फिर लगा किसे।
1: हाँ,
0: तो गड्ढा एक कर बनाते हैं कि गड्ढा बनाए में पूरा जो है मिट्टी भूरा हो जाए, नीचे की मिट्टी कठोर रहे और लगा देते हैं तो नीचे की मिट्टी कठोर रहे तो कोई जड़ का विकास बिल्कुल ब्रेक हो जाए धीरे धीरे करे तो पौधा बाढ़े ना समय पे फल दे। मेन तो यहीं पे मतलब मिस्टेक हो जाए कि हम जल्दीबाजी में पौधा कहीं जगह से खरीद के लान थी और जल्दीबाजी में चारों दिशा में चार फौड़ा लगाए अवला लगा दें।
1: हाँ,
0: तो वो कठोर मिट्टी जो नीचे रहते तेज है जड़ लग वो बढ़े नहीं दे बढ़िया से। ये कर बार सही गड्ढा का कार प्रकार बना लें तो मैं कहता हूँ निश्चित समय पे फल और फूला ही और मतलब निश्चित लाभ मिले।
1: हाँ, मतलब पूरा गड्ढा
0: जी
1: में
0: जी
1: वाला
0: जी
1: डुबाना नहीं है, कटिक माटी ला भर देना
0: जी
1: है ना?
0: जैसे गड्ढा करने के बाद उमल मतलब नहीं समझ में आते रहते कि इला गड्ढा में नहीं लगाना है ऐसे कि नहीं है। ओला खाद जैसे सड़ा हुआ गोबर की खाद दो तगाड़ी, एक बार DAP मिला दे 50 ग्राम, एक बार पूरा गड्ढा लेबलिंग कर देना है। लेबलिंग करे के बाद में जो है गड्ढा जो है तो कर बीचों बीच में उतना ही गड्ढा बनाना चाहिए जितना कि मान के चलिए थैली के अंदर वाला हिस्सा जमीन के अंदर घुसे और बाहर वाला थैली के बाहर रहे, बस इतना ही जमीन के अंदर लगाना है।
1: लगाना है
0: जी
1: और बाकी है जो है भुरभुरा रहे तो
0: भुरभुरा रहे चारों तरफ ताकि वो जड़ जल्दी फैले और पौधा हमें समय अनुसार बढ़े और उसमें फूल और फल लगे।
1: बिल्कुल, अभी राहुल का जो बात ला सुनी तो बिल्कुल उनका जो समस्या का समाधान
0: जी बिल्कुल
1: हो जाए। जाति जवाति कहीं कहना चाहब कि ये समय जो है फल वृक्ष बनकर सावधानी या कहीं बताना चाहब?
0: जी, तो एक लिए मैं आप सभी किसानों से यही निवेदन करता हूँ कि देखिए अभी किसानी का समय एकदम खरीब आने वाला है और जो पौधा लग चुकी से होकर नियमित रूप से आप मन थाला सिस्टम से बना के अगर फलदार पौधा लगाए हैं तो या आप स्वभावन पौधा लगाए हैं तो होकर थाला सिस्टम बना करके बढ़िया से नियमित सिंचाई करी। कहे कि गर्मी बहुत टेम्परेचर हाई होगी से अभी 2-3 दिन हो इसके बादल जरूर है लेकिन ज़्यादा दिन रही नहीं। तो ऐसे स्थिति में आप मन के यही सुझाव मोर है कि आप मन थाला बना करके पानी ला सिंचाई करब तो मैं नीचे तक पानी नमी रही तो थोड़ा लंबा समय तक वो नमी बनाए रखी पौधा जीवित रखी। और दूसरी चीज़ कि ये गर्मी सीजन में जो है पौधा बहुत अगर सिंचाई नहीं करब तो पौधा मुरझाए पुनः क्योंकि ग्रोथ सही पे नहीं हो ही और उधर बाढ़ ही नहीं तो सही समय पे वो फल फूल देना भी सुरू नहीं कर पाई, ये कर्म आप मला मोर ही सुझाव है कि आप

0: मन वाला तालाब बना के बढ़िया से नियमित सिंचाई करी। सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन सिंचाई अनिवार्य है। और जब भी सिंचाई करो आप, तो सिंचाई के समय ला भी ध्यान में रखी कि एकदम सवेरे करी या तो शाम के करी सिंचाई। एकदम धूप में नहीं करना है, धूप में करा टेम्परेचर हाई हो जाए रहल तो गर्म पानी मिलते होला, ठंडा पानी पौधा ला नहीं मिले। तो आप सभी मतलब यही निवेदन है कि एकदम सिंचाई व्यवस्थित रखी, सुव्यवस्थित करी और थाला सिस्टम से करी।
1: गंगाराम जी, राउर से बड़ा सुघर अकन जानकारी मिलिस। राउर कर सलाह से किसान भाई जो हैं अपन फल वृक्ष का देखभाल करी और निश्चित रूप से अपन लाभ ला दुगुना तिगुना करी। राउर के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भाई देखिए ये संदेश ला सुने ना और एक पहले गंगाराम सिंह जी हमार उद्यान अधीक्षक महोदय बड़ा सुगर अकन जानकारी दहीन कि फल वृक्ष कैसे कैसे लगा सकत हैं और कैसे ओकर देखभाल कर सकत हैं। देखिए हल्दी हो गईस, आदि हो गईस, ये जो है हमार कंद वाला जो है फसल और बिल्कुल औषधीय गुण वाला फसल। पहले तो मैं हल्दी कर गुण ला बतात हूँ कि कायरमन जानती मसाला के रूप में उपयोग होल, भूख ला बढ़ाएल, टॉनिक बनाए में उपयोग होल, खून साफ करेल, जो जैसे चोट है आंतरिक चोट वाला ठीक करते हैं, चमड़ा कर इन्फेक्शन ला ठीक करेल, मतलब एंटीसेप्टिक रूप में एक उपयोग होल। एकर अलावा प्रसाधन सामग्री कुमकुम में भी उपयोग होल, खांसी में एला जो है उपयोग करते हैं। ओकर अलावा कहब कि दूध के साथ हल्दी कर जो है उपयोग करे से चोट के कारण जो सूजन मन रहते वो कम होल, पेट कर कीड़ा भी मरेल, दर्द सूजन में हल्दी और चूना कर लेप लगाते हैं आराम होल। कितना गुणकारी चीज़ है। ओकर अलावा देखब अदरक पाचन क्रिया ला बढ़ाएल, बलगमला दूर करेल, खून कर जो नली कर फैले के कारण खून के बहाव ला ठीक करेल, मोटापा दूर करेल, पेट में गैस है ओकर दूर करेल। तो देखिए दोनों बहुत ही ज़्यादा जो है औषधीय गुण वाला जो है कंद हवे। एकर हमला खेती करके लाभ ले सकत ही बिल्कुल का है ना कि समय जो है कथे कि एकर अभी कहब कि वैसे तो कहे कि लगभग 8 महीना में तैयार होल, बाकी अगर सिंचाई के सुविधा है तो ये समय हमन ला जो है ना मध्य मई कथे। आज तो देखिए 8 तारीख होगी ना, मई मतलब 15 तारीख तक एकर बुआई हमन ला कर देना चाहिए। तो उन्नत किस्म कर चुनाव करी बढ़िया कहब कि हल्दी कर जो है पटना नाम से जाने वाला जो है किस्म बिहार और बंगाल में भी प्रचलित हवे एला लगाते हैं। ओकर अलावा कहब कि चयनित किस्म जो है मीनापुर हवे एला लगा सकत ही। एकर अलावा और किस्म हरदी में देखब कृष्णा हवे, कस्तूरी हवे, सुगंधम, रोमा, सुरोभा, सुदर्शना, रंगा, रश्मि ये किस्म ला लगा सकत हैं और चुनाव करके बिल्कुल लगाई। बीजोपचार कर ली पहले, बीज कर चुनाव जो है सावधानी पूर्वक करी, स्वस्थ और रोग रहित जो है ना प्रकंद कर चुनाव करी। लंबा गांठ जमे 3-4 स्वस्थ कली हो वो बीज के लिए बढ़िया उपयुक्त मानल जाए। बड़ा प्रकंद ला काट के भी ओला लगा सकत हैं और एकर जो है बीजोपचार में बताएं करना जो है जरूरी रहल। तो का है बढ़िया से रौरेमन बीजोपचार करके और लगाई और बढ़िया खेती करिए। और बाकी कुछ अगर रौरमन ला कोनो भी परेशानी है तो हेलो किसान माड़ी तो हमार होते च रहल। देखिए मंडी भाव बताए कर बेरा हवे, आज अंबिकापुर कर मंडी में मकई रहीस 2400 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूँ रहीस 2430 रुपया प्रति क्विंटल, बंगाल चना रहीस 6000 रुपया प्रति क्विंटल,

महुआ बीज रहीस 2800 रुपया प्रति क्विंटल, हरा मटर रहीस 3000 रुपया प्रति क्विंटल। मौसम कर बात हवे, तापमान कर बात करी तो आज कर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। काल कर बारे में अनुमान है अधिकतम रही 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 21 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए एतेक बेरा तो है कि जाति जवाति सुघर अकन गीत सुनल जाए, गाता हैं केदार यादव और साधना यादव।

वाह बड़ा सुघर अकन गीत है भाई, लगत कि सुनते च रहो बकी का है कि बेरा बिता लहे कर होए चली सै जरूर अपन लग ध्यान करब, लड़का छुआ मन कर सियान मन कर ध्यान करब, और यही संदेश के साथ धर्म भैया कर राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में। आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो सखी शक्ति। श्रोताओं, कार्यक्रम के पहले गीत को सुनने की फरमाइश करने वाले हमारे ये श्रोता हैं, राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, सुपरस्टार रेडियो जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से रितिका मिस्कीन, वानी

भारव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी सोनी, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का, राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल सैमर काम, नयन प्रकाश, शारदा, लकी, सीताराम, सितंबर, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, पांडे राम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, कविता आरती मरकाम, भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर पुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह, जयपाल यादव, विनोदपुरी, केतका जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संजय सिंधराम, टेकराम सिंधराम, विवेक कुमार, उमेश कुमार, अर्जुन सिंह टेकाम, अरविंद सिंह टेकाम, अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया, पैराडाइज कॉलोनी से मोहम्मद शाहिद, अशिफा परवीन, अल्फिया सद्दाफ, सुफियान फातिमा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी, जेल रोड बक्सर से राजेश डी अंसारी और फातिमा राज अंसारी, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई, उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंगड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, ज्योति, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, लखनपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से मुनेश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु, गुलाबिया, संजय, अनिल, अंजलि और राजा, कोरबा से ओम प्रकाश यादव, संतोष तारा, सरोज, संध्या, साक्षी, गया प्रसाद यादव, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह गोवेराय, गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा और सीता, दतरेंगी भाटापारा से हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा और नोकीलाल वर्मा, सोनगरा से प्राची, सोमल और कार्तिक, यवतमाल विदर्भ से संतोष खडसे और विनोद खडसे, खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा सोमारसाय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा, इन समस्त श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म कन्यादान का ये गीत, लिखा है गोपाल दास ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आपने सुना कन्यादान फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं घरौंदा फिल्म से। आवाजें हैं भूपिंदर सिंह और रूना लायला की। गीतकार हैं गुलजार, संगीत निर्देशक हैं जयदेव। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज की। बाजार खंडवा से हमारे श्रोता साथी हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमाज बानो, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से सुनने वाले हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता मित्र हैं महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांडी। अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे। जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू। इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता मित्र बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। भागलपुर से हैं प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना कुमार।

0: दीप, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। हमीरपुर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। गांव अलगीडाड़, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल, श्रीमती फूलजी यादव। मिट्ठू मुड़ा, दुर्गा चौक, रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई। नेपानगर, मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। हयात कॉलोनी, अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। कुंभार गली, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और कृष्णा दले। पुनावले, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने। अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल। नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। गुजरात पाटन से धीरज वी मरावी। तारकेश्वरपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल दक्ष, कुंती मंगल राम और रिद्धि सिद्धि प्रजापति। बोहड़ागाछी, पश्चिम बंगाल से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बागपत, उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं का पसंद किया हुआ ये प्यारा सा गीत।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में,

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म इज्जत से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से नाना जी, लाम से मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस न्हावकर, निर्मला और विशाल न्हावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला और आशीष मुरहेकर, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तान्या नारंग, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहन लाल साहू, रुक्मणी साहू, तेजेश्वर और कुशाल साहू, यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, मवन मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफान मोहम्मद, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, झज्जर से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिखा और शेफाली।

कार्यक्रम के अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है दरियापुल बाबली से गजानन येले नवदीप विश्वदीप और अशोक येले की। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा विशु खेड़ा विशाल खेड़ा लाली और शालनी खेड़ा टिवानशी खेड़ा वाणी आरबी और जीवन सिंह बुक की। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक की। चुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से हमारे श्रोता हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर सावित्री देवी ठाकुर माला ठाकुर कमल सिंह ईश्वर सिंह मानू शानू बबन मुन्नू कान्हा और हरिप्रिया ठाकुर। हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। लक्ष्मीपुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से तीजन सिंह मरावी सुषमा सिंह मरावी देवलाल मरावी। घोघरा पारा से लालू प्रसाद उइके। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव गरिमा और हर्ष आहूजा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन सिंह जोशी हरमिंदर चावला जी शिवकुमार शर्मा लोकेश जोशी बेबी वैदेही जोशी बेबी हंसिका जोशी कुमारी अंकिता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती कैवर जी। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक नामदेव समर्थ और शौर्य नामदेव की। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में शक्ति फिल्म का गीत। गीतकार हैं सलीम जावेद और संगीत निर्देशन है आरडी बर्मन का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर का प्रसारण। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश अपनी रेडियो साथी शक्ति के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में फिल्म इंतकाम का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है राजेंद्र कृष्णा, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी सौरव और शाइना शर्मा। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अजरार और नरगिस खातून, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा।

कार्यक्रम के अंतिम गीत को सुनना चाहा है श्री गंगापुर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने, बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन, जगमोहन, सुधीर, नूतन, भुवनेश्वरी देवी, पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशान देवांगन ने, यवतमाल महाराष्ट्र से पंजाब रामटेके और यशोधरा रामटेके ने, मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता मित्र हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक और चेतन नाहटा। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं की पसंद पर प्रेम रोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल हैं संतोष आनंद के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: प्रेम रोग फिल्म के इस गीत के साथ ही अब अपनी रेडियो साथी शक्ति को कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश से दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और

0: अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा

0: जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार

0: एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद

0: इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकाली हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।
2: राजना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए और 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए फिल्म मेरा साया से। आवाज है आशा भोसले की, बोल राजा मेहंदी अली खान के हैं और संगीत है मदन मोहन का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए पूर्णिमा फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीतकार हैं गुलजार, संगीत निर्देशक हैं कल्याण जी, आनंद जी।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज़ में मंजिल फिल्म का गीत। संगीत निर्देशन है SD बर्मन का, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

स्वागत है साथियों, आप सभी का कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी शक्ति। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म जीत से, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, बोल समीर के हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान, सौरव, शाइना और मैंडी शर्मा। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। एकता कॉलोनी रेहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। लसूड़िया पता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल का गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, बोल समीर के हैं और धुन आनंद मिलिंद का। इस गीत को सुनना चाहा है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर और कुशल शाह ने, दिल्ली से रेशमा अंसारी, निशा और सोनाली जटोलिया ने, जलालाबाद वेस्ट से हमारे श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, प्रकाश मरकाम, शारदा लकी, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, हीरा लाल, प्रजापति पांडे, राम राजवाड़े, नूरसाह राजवाड़े, कविता मरकाम और आरती मरकाम, अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, पंजाब से सुभाष गोदा

गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम, सुभाष, चंदन और एकनाथ जाधव। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, सोनल जाधव। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुहरानुद्दीन। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग। सहेली रेडियो श्रोता संघ से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर, आयशा खत्री। जिलाधार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा खत्री और जाकिर खत्री।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इजरार की, वटिंग खेड़ा पंजाब से पिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता की, राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं मानिकराम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडेराम राजवाड़े, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा और सुजाता पोहरकार, मंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी वैष्णवी और हर्षल रंभाड़े, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, पुरानी भिलाई 3 पदुमनगर चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम, हमीदून सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं की पसंद पर कारवां फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत निर्देशक हैं आरडी बर्मन।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं जंजीर फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में। गुलशन बावरा गीतकार हैं, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। इस गीत को पसंद किया है खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नशीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन और पायल जोशी। लोरमी ग्राम चचेड़ी से हमारे श्रोता मित्र हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंदेश कुमार चंदकला और शशिकांता प्रजापति। चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघात परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान,

और अबान अब्बासी, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कार जहां, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी, कबीरनगर वाराणसी से देव जाधव और शंकर जाधव, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी, महादेवपारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े, पटना बिहार से वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून, सिद्मा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, कापसेड़ा दिल्ली से फिरोज खान अहमद, मोगा इकबाल मोगा, जालंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव, गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा डोमिन, डुमराव से असमान सारी, आमना परवीन, टुक टुक अंसारी, लड्डू अंसारी और वलीउल्लाह अंसारी, बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और अंजनी ज्योति प्रहलाद वर्मा।

मन्ना डे के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल की गूंज से अब दीजिए अपनी रेडियो साथी शक्ति को आज्ञा। नमस्कार। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग प्रधान। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं यमन कल्याण पर आधारित ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का गीत प्रबोध चंद्र और मन्ना डे के युगल स्वर में। गीतकार थे हरिदास, संगीत निर्देशन था SN त्रिपाठी का। यह गीत फिल्माया गया था राग यमन कल्याण में। राग यमन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कल्याण थाट से संबंधित एक प्रमुख शाम का राग है। इसकी पारिभाषित विशेषता तीव्र मध्यम का उपयोग है। आइए अब सुनते हैं मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज़ में।

मेरे हुजूर फिल्म का यह गीत फिल्माया गया था राग दरबारी कानड़ा पर। यह एक अत्यंत लोकप्रिय राग है। इस राग में अनेक फिल्मी गीतों का स्वरबद्ध किया गया है, अतः इस राग से श्रोता परिचित हैं। इसका गायन समय मध्यरात्रि है। इसका वादी स्वर ऋषभ तथा संवादी स्वर पंचम मानते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बात एक रात की से। गाया है मन्ना डे ने, गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने। यह गीत आधारित है राग पीलू में। इस राग का प्रयोग शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लोक शैली में अधिक पाया जाता है। चैती, कजरी और ठुमरी शैली में ये राग अधिक प्रयोग में आता रहा है। इसमें सभी शुद्ध तथा कोमल स्वर अर्थात 12 स्वर संगति से माधुर्य युक्त राग है।

अरे किसने चिलमन से मारा, हाय किसने

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं परिचय फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और भूपेंद्र ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। यह गीत आधारित है मारू विहाग पर। ये विहाग अंग का राग है। वैसे तो इसकी सभी विशेषताएं विहाग से मिलती हैं, किंतु विहाग और मारू विहाग में मुख्य अंतर ये है कि विहाग में तीव्र मध्यम का प्रयोग यदा कदा होता है, किंतु मारू विहाग में तीव्र मध्यम मुख्य स्वर होता है और शुद्ध मध्यम का प्रयोग यदा कदा होता है।

आइए अब सुनते हैं संत तुलसीदास फिल्म का गीत। पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में गीतकार हैं भागवत मिश्रा, संगीत है राम कदम का। यह गीत आधारित है राग जौनपुरी पे। राग जौनपुरी एक उत्तरांगवादी राग है। इस राग में ग, ध और नी कोमल है। आरोह में ग वर्जित है, पर अवरोह में सातों स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। असावरी थाट से उत्पन्न इस राग को दिन के किसी भी प्रहर में गाया जा सकता है। आइए सुनते हैं इसी राग जौनपुरी पर आधारित ये गीत।

श्रोताओं, रात हो या दिन, किसी भी प्रहर में जो राग आनंद से गाया जाता है वो राग है, राग भैरवी। यूं तो शास्त्रों में इसका स्थान गायन समय भोर का संधिकाल है, पर इस राग की मधुरता के कारण इसे किसी भी समय गाया जाने लगा। इस राग की विशेषता है कि इसमें सा, म और प को छोड़कर सभी स्वर कोमल हैं। रे, ग, ध, नी कोमल मध्यमवादी हैं। आइए इस प्रचलित राग पर आधारित गीत सुनते हैं फिल्म दिल ही तो है से। गाया है मन्ना डे ने, गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है रोशन ने।

फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम राग प्रधान यही संपन्न हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी शक्ति। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन में। सबसे पहले लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आरजू का गीत। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का। इस गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश रुक्मणी, जयप्रकाश प्रीति, सिद्धांत सौर्य और कुमारी सानवी ने। इस्लामपुरा सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़, बेबी मंतशा, मोहम्मद शताब खत्री। भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय कुमार। सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बीबी अनीशा, सिद्ध बाबा भाटापारा से संतोष कुमार वैष्णव और संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा शिवम वैष्णव। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर।

अभी आपने सुना आरजू फिल्म का गीत, गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीत निर्देशन था शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम कहानी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश।

नी भाटापारा दतिरंगी से हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और छाविंद्र कुमार वर्मा। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

लीजिए अब सुनिए मेरी पसंद का गीत फिल्म साथी से मुकेश और सुमन कल्याणपुरी की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं नौशाद। इस गीत को हमारे कुछ श्रोताओं ने भी पसंद किया है। श्रोताओं के नाम हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीप कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता और दिशा, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित ध्वनि गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रवीणीता गवाणकर, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंथले और आरती जौंथले।

0: अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है बेड़ी से राजेश रोसोनी, कंचन, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे की। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी की। पुराना तालाब ढुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और असमानाज अंसारी की। चंचल चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा की। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी की। संगीता रोड इंदौर से हमारे श्रोता मित्र हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनय, मनन और तान्या। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक। आइए सुनते हैं इन समस्त श्रोताओं की पसंद पर फिल्म सच्चा झूठा का गीत। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत है आनंद जी बिरजी शाह का और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: यूं ही तुम मुझसे

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत निर्देशन है रविशंकर शर्मा का। फिल्म का नाम है दो कलियां। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम प्रेनिका, प्रोनालिका, उत्कर्ष नेताम की, धरसीमा छत्तीसगढ़ से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा अल्पना, आस्था यादव और इकबाल कुरैशी, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हमारे श्रोता हैं छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता यादव, अनुराग, अभिषेक, अभिनव, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू और सी एल यादव। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला और गायत्री धनजे।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मन भवन से अपने रेडियो साथी शक्ति को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है।